सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 9वीं तिथि, तदनुसार 30 जून वर्ष 2026। प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण मीडियम वेव और FM दोनों मीटर्स पर एक साथ आरंभ हो रहे हैं।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने

0: पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

करुणा, मर्यादा और धर्म का जो संदेश संसार को देता है, आइए प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान इस अमर भजन के साथ सुनते हैं।

संकट हरे सुख बरसाए, पवन सुत बलवान, जय जय श्री हनुमान, करो सबका कल्याण।

जिसकी रहमत से हर दिल को सुकून और उजाला मिलता है, आइए उसी परवरदिगार की हम्द-ओ-सना में ये खूबसूरत नात सुनते हैं।

0: भक्ति, शक्ति और सेवा का अनुपम है जिनका नाम, जिनका मान। आइए करें वंदना, जय श्री हनुमान।
1: सकल गुण निधान रुद्रावतार श्री हनुमान जी से केवल श्री रामचंद्र जी ही प्रभावित नहीं हुए, अपितु राक्षसेंद्र विभीषण भी मंत्रमुग्ध हुए बिना न रह सके। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाई थी, श्री हनुमान जी ने लंकाधिपति के हृदय को ही जीत लिया। विभीषण ने श्री हनुमान जी की जो स्तुति की थी वो हनुमद वडवानल स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है।
2: अथ श्री

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे श्री वाणी जयराम, सुरेंद्र वडेकर, यूसुफ आज़ाद, सुरवीत सिंह और अनूप जलोटा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: संसार में सर्वत्र परस्पर आदान प्रदान चल रहा है। कोई किसी को देता है, कोई किसी से लेता है। छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े राजे महाराजे और ऋषि महर्षि तक सभी जन कुछ अपने पास से देते हैं और कुछ दूसरे के पास से लेते हैं। क्या तुमने कभी यह भी सोचा कि ये लेने देने वाला कौन है और वो किसे देता है या किससे लेता है? वेद में एक मंत्र आता है, को दात कस्मा अदात कामो अदात कामायाद दात कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामई तत्ते। वस्तुतः काम ही देता है, काम ही लेता है, काम ही दाता है, काम ही प्रतिग्रहीता है। जब मैं किसी को कोई वस्तु देता हूं तब कामना के वश होकर देता हूं, और जब कोई किसी वस्तु को लेता है वो भी कामना के वश होकर लेता है। मेरे पास कितनी ही भौतिक संपत्ति भरी पड़ी हो और मैं कितने ही ज्ञान विज्ञान का धनी हो, जब तक काम की प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक मेरे अंदर किसी को देने की आंतरिक अभिलाषा उत्पन्न नहीं हो सकती। परिणामतः तब तक मैं दाता नहीं बन सकता। इसी प्रकार कोई कितना ही निर्धन और अज्ञानी व्यक्ति हो, जब तक उसकी धन या ज्ञान को ग्रहण करने की कामना नहीं होगी तब तक वो ग्रहण करने में प्रवृत्त नहीं होता। इस प्रकार दाता और प्रतिग्रहीता कोई व्यक्ति विशेष नहीं होते, अपितु काम ही दाता और प्रतिग्रहीता दोनों होता है। इस काम से प्रेरित होकर ही भिक्षु जन भिक्षा पात्र लेकर भिक्षावृत्ति के लिए निकलते हैं, और इस काम से प्रेरित होकर ही दाता जन देय द्रव्य की ढेरी लगाकर दान लेने वाले की प्रतीक्षा करते हैं। काम के अधीन होकर ही शिष्य आचार्य के पास विद्या ग्रहण के लिए जाता है, और काम के अधीन होकर ही आचार्य शिष्य को विद्या का दान करता है। इस काम की पकड़ से कोई मुक्त नहीं हुआ है। एक अकिंचन मनुष्य भी काम की डोर से बंधा हुआ है, और एक चक्रवर्ती सम्राट भी काम से ग्रस्त है। काम का इतना व्यापक प्रभाव है कि उसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। परमात्मा भी काम के वशीभूत होकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। इस काम को हम कामना, अभिलाषा, अभीप्सा, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, महत्वाकांक्षा आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। हमारा सारा जीवन इस काम के आधार पर ही चल रहा है। कामनाहीनता जड़ता है और कामना जीवन है। कोई योगी निष्काम कर्म भी तभी करता है जब वैसी कामना उसके अंदर होती है। हे काम, क्योंकि तुम ही दाता हो और तुम ही प्रतिग्रहीता हो, अतः अपने दान या आदान को हम तुम्हें ही समर्पित करते हैं। तुम्हें जैसा हमें चाहिए वैसा हमसे दान कराओ और प्रतिग्रहण कराओ।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य संदेश में असीम सक्सेना की जानकारी, जिसका विषय है दवा सेवन में सावधानियां।
2: श्रोताओं, किसी भी बीमारी, सर्जरी या अन्य शारीरिक मानसिक तकलीफ की स्थिति में दवाइयों से हमें राहत मिल जाती है। चाहे किसी भी पैथी का इलाज हम अपना रहे हों, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं और बताते हैं दवाई कैसे लेनी है। मसलन सुबह खाली पेट खानी है, खाने के बाद खानी है, दिन में 3 बार खानी है, ये सब बातें। कई बार वो दवा के सामने मात्रा के साथ साथ बाकी सावधानियां भी लिख देते हैं, लेकिन हम कभी डॉक्टर से ये नहीं पूछते कि दवाई को किस चीज़ के साथ खाना है, बाद में तो नहीं खाना है, पहले तो नहीं खाना है, हमें दवाओं का सेवन किस विधि से करना है, सादे पानी से दवा खानी है, दूध के साथ लेनी है या फिर गुनगुने पानी से। अपने डॉक्टर से इस बात को हमें क्लियर करना चाहिए, क्योंकि दवाइयों के साथ हर चीज़ का कॉम्बिनेशन सही बैठे ये ज़रूरी नहीं, गलत कॉम्बिनेशन हमारी जान को खतरे में डाल सकता है। हर दवाई का अपना एक गुण होता है, एक तासीर होती है। एलोपैथी की दवाइयाँ केमिकल्स से बनी होती हैं, इन केमिकल्स का किसी बिल्कुल अलग केमिकल से मिलना रिएक्शन दे सकता है। इसी तरह से आयुर्वेद या जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाएं या फिर होम्योपैथिक फार्मूले हों, किसी भी गलत चीज़ से मिलाकर दवा का सेवन करना शरीर के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसलिए डॉक्टर ने अगर किसी दवाई को लेकर कोई सावधानी बरतने को कहा है तो हमें उस पर ध्यान देना है, खासकर जब पहली बार कोई दवा ले रहे हों या एक साथ ज़्यादा दवाइयां ले रहे हों तब। इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार खट्टे फल अक्सर दवाई के असर पर प्रभाव डालते हैं। आयुर्वेद में तो बाकायदा जब तक दवा चले खट्टी चीज़ों से परहेज करने की सलाह दी जाती है, इसमें मौजूद एसिड दवाइयों के असर को प्रभावित करता है। पेट की कुछ कोशिकाएं दवाइयों के शरीर पर पड़ने वाले असर को कमज़ोर बना सकती हैं। ये तो किसी भी पैथी में इलाज करने वाले डॉक्टर आपको दवाई के साथ किन खाद्य पदार्थों को नहीं खाना है इसकी जानकारी देते हैं। अगर वो ऐसा ना कर पाए तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या परहेज रखना है। डॉक्टर कई बार दूध के साथ दवा लेने की सलाह देते हैं, ऐसा इसलिए ताकि पेट दवाई के हैवी डोज के लिए तैयार रहे, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। डेयरी प्रोडक्ट में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स और केसिन जैसे प्रोटीन शरीर के लिए एंटीबायोटिक्स के प्रोसेस को मुश्किल बना देते हैं, ऐसे में दवाएं पूरा असर नहीं दिखा पाती। सामान्य स्थिति में सप्लीमेंट्स का सेवन शरीर को फायदा पहुंचाता है, लेकिन कुछ दवाइयों के साथ सप्लीमेंट्स भी नुकसानदायक होते हैं। अगर हम थायराइड की समस्या से ग्रसित हैं, साथ में किसी प्रकार के सप्लीमेंट को भी ले रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर से पूछना बहुत ज़रूरी है। कई बार मल्टीविटामिन गोलियों में भी आयरन की मात्रा होती है, डॉक्टर से इसका विकल्प पूछना भी बेहतर है। ये तो चॉकलेट, खासकर डार्क चॉकलेट, शरीर के साथ साथ मन को भी खुशी पहुंचाने वाले खाद्य पदार्थों में से एक है, लेकिन कई बार चॉकलेट्स दवाइयों के साथ मिलकर स्थिति को असंतुलित कर देती है। दवाई सेवन के कितनी देर बाद चाय या कॉफ़ी लेनी है, इस बात को भी डॉक्टर से पूछना ज़रूरी है। अल्कोहल की लत सामान्य स्थितियों में भी शरीर के अंदरूनी अंगों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, लीवर पर इसका बुरा असर पड़ता है, इसलिए अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो दवाई प्रिस्क्राइब करते समय डॉक्टर को ज़रूर बताएं। डॉक्टर से कुछ न छुपाएं और कुछ भी पूछने में संकोच न करें। दवाई सेवन में सावधानी बेहद ज़रूरी है।
0: दवा सेवन में सावधानियां, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे असीम सक्सेना। इसी के साथ स्वास्थ्य संदेश का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें कार्यक्रम विवरण में हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 6:45 पर प्रसारण होगा श्री रामचरित मानस गान का। आज इस कार्यक्रम में आप तक पहुंचाएंगे 344वीं कड़ी। कलाकार होंगे रविंद्र साठे और शोभना राव व साथी। सवेरे 7 लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे पूनम व साथियों के स्वर में। फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे आप तक पहुंचेगा 7:31 पर। उर्दू प्रोग्राम समाप्त फरमाइएगा 9:30 पर। इसमें समाप्त फरमाइएगा शेरी नशिस्त। आज इसमें शुरा होंगे डॉक्टर जाहिद अली, जनाब अहद उल्ला खान, जनाब इरफान सागर, डॉक्टर जावेदुल्ला खान जावेद निज़ामी। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर किया जाएगा। 9:50 पर उपशास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे मोती बेगम का गायन ठुमरी पर राग तिलंग। समय याद रखिएगा 9:50 पर। और आपके अनुरोध फरमाइशी ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 10:05 पर। 10:30 पर आप तक पहुंचेगा कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में 70 के कुछ फिल्मी गीत आप सुन सकेंगे। समय याद रखिएगा 10:30 पर।

धरोहर ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 11 बजे। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे नाटक पापा मैं तारा बन गई, लेखक गुडविन मसीह, सह प्रस्तुति असीम सक्सेना और प्रस्तुतकर्ता होंगे विक्रांत चौधरी। श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित मन

वार्ता जिसका विषय होगा परिवार के किशोर सदस्यों की स्वास्थ्य सुरक्षा, और क्षेत्र संकलित कार्यक्रम होगा जिसकी जिसका विषय रहेगा रिश्तों की हिफाजत। प्रायोजित कार्यक्रम NGERT आज इसमें कड़ी संख्या 1317 अब तक पहुंचेगी दोपहर 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा का आगाज होगा शाम 5 बजे। शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी, और 5:45 पर किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। 6:30 पर आपको सुनवाएंगे इंग्लैंड में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत के बीच खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की।

0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग।
1: एपिसोड नंबर 344 344।

रावण ने अपनी नाभि में अमृत छिपा रखा था। उसका वध करने के लिए श्री राम ने काल सर्पों के समान 31 वाण छोड़े। एक वाण ने उसकी नाभि का अमृत सोख लिया तथा बाकी 30 ने उसके सिर और भुजाएं काट डालीं। बिना सिर और भुजाओं वाले धड़ को प्रचंड वेग से दौड़ते देख श्री राम ने एक और वाण से उस रुंड के 2 टुकड़े कर दिए जो जाकर मंदोदरी के सामने आ गिरे।

0: भी आजादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा के निशान में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: और भी आज़ादी भारत की अलामत है अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।
2: श्रोताओं, खेद है हमें कि हम सुचारू रूप से अब तक लोकगीतों का कार्यक्रम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लीजिए सुनिए कुछ लोकगीत।

0: मैं प्लास्टिक। चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
1: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
0: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
1: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
2: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
1: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
3: Say no to plastic।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:18 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।
2: केवल भगवान से डरो। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है, और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
3: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुरादाबाद को दी 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और कल से समाप्त हो जाएंगे पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्रीराम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई कल अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने कल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में कल 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पीलीभीत सहित प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
1: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
2: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं का यहां पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही है।
0: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम डिजिटल युद्ध स्मारक त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। उन्होंने मुरादाबाद में विकास कार्यों, राजस्व, कानून व्यवस्था तथा लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना के संबंध में मंडलीय समीक्षा बैठक करके अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। स्टैंप और न्यायालय शुल्क तथा पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि यह निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
3: स्टैंप विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीओ जारी किए गए 4/6/2026 को इस जीओ में थोड़ी सी क्रिएटिव न होने के कारण से एक भ्रम स्थिति बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि शायद हमारा रोजगार छिन जा रहा है, और इस भ्रम को से हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था जीओ उसको हम निरस्त करते हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आज से UPTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार कल से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम से मोटर स्पिरिट पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल HSD की बिक्री पर लागू अस्थायी नियामक उपाय समाप्त कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 12 जून को ये अस्थायी नियामक उपाय लागू किए थे। इसके तहत खुदरा पेट्रोल पंपों पर प्रति ग्राहक या प्रति वाहन प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल HSD देने की समय सीमा तय की गई थी। साथ ही औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को निर्देश दिया गया था कि वो ईंधन की खरीद खुदरा पंपों के बजाय निर्धारित उपभोक्ता पंपों से करें। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर में 15 बेड के निजी वार्ड और ललित नारायण मिश्र रेलवे हॉस्पिटल में 13 बेड के अत्याधुनिक ICU का उद्घाटन किया। सांसद निधि से तैयार इन दोनों सुविधाओं के उद्घाटन के अवसर पर सदर सांसद श्री शुक्ल ने कहा कि गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल के नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फिरोजाबाद जिले के फरीहा थाना क्षेत्र के चिडरई गांव में बीती रात तेज आंधी के कारण एक ई रिक्शा पर पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब एटा जिले के अबागढ़ से करीब 8 सवारियों के साथ फरीहा आ रहे ई रिक्शा पर अचानक पेड़ गिर जाने से ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया और सवारियां पेड़ के नीचे दब गईं। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय 5 सवारियों की मौत हो गई। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दैवीय आपदा कोष से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित उपचार कराया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बीते 36 घंटों में कहीं कहीं हल्की से लेकर मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। पीलीभीत जिले में बीती रात से हो रही वर्षा से वहां के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिली है। गोरखपुर सहित कुछ अन्य जिलों में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी और वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 दिनों के भीतर मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुरादाबाद को दी 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और कल से समाप्त हो जाएंगे पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
5: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
6: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:31 हो चुके हैं। आपके लिए लेकर आए हैं फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे, बस थोड़ी ही देर में।

0: सूरज की तपिश ने बेशक हवाओं में गर्माहट घोली थी, मगर उम्मीदों की सुबह ने आज फिर एक नई राह खोली है। माना कि मौसम का मिजाज थोड़ा सख्त ज़रूर था इन दिनों, पर हौसलों की इस महफिल ने आज फिर खुशियों की चादर ओढ़ी है। आप सभी को इस ठंडी ठंडी सुबह में जैसी आका का ताजगी भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग श्रोताओं। श्रोताओं, तपती धूप और झुलसा देने वाली गर्मी के लंबे इंतजार के बाद जब बारिश की पहली फुहार धरती को छूती है तो मानो प्रकृति मुस्कुराने लगती है। सूखी धरती की सौंधी महक, पेड़ों की हरियाली और ठंडी हवाओं का स्पर्श हर दिल को सुकून से भर देता है। बारिश का मौसम केवल मौसम में बदलाव नहीं बल्कि नई उम्मीदों, ताजगी और खुशियों का संदेश लेकर आती है। जब सूरज की तपिश से धरती तपने लगे, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और हर कोई ठंडी हवा की आस लगाए बैठे, तब आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल उम्मीद की नई किरण बनकर जरूर आते हैं। बारिश की पहली बूंदें जैसे ही धरती पर गिरती हैं, चारों तरफ वातावरण में सौंधी सौंधी खुशबू फैल जाती है। बारिश केवल गर्मी से राहत ही नहीं देती बल्कि खेतों में हरियाली, नदियों में नई लहर और लोगों के चेहरों पर नई मुस्कान भी ले आती है। इसी मुस्कान के साथ आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

और श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आज 30 जून के इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गई हैं। बात 1934 की, जब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने अपनी ही नाजी पार्टी के राजनीतिक विरोधियों का कत्लेआम कराया था, जिसे इतिहास में नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स कहा गया था। और आज ही के दिन 1937 में लंदन में दुनिया की पहली आपातकालीन टेलीफोन सेवा 999 शुरू की गई थी। 1938 में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध काल्पनिक सुपर हीरो सुपरमैन पहली बार एक्शन कॉमिक्स बुक के पन्नों पर दुनिया के सामने आया। 1960 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को बेल्जियम में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और 1966 में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए अमेरिका में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन की स्थापना की गई। और अब देखते हैं आज 30 जून को कौन कौन सी हस्तियों का जन्म हुआ। भूपेंद्र यादव, जो कि भारतीय राजनीतिक और राज्यसभा के सांसद हैं, आपका जन्म आज ही के दिन 1969 में हुआ था। और 1911 में जन्म हुआ नागार्जुन का, जो कि भारतीय साहित्यकार थे। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं आलोचक रघुवंश का जन्म भी आज ही के दिन 1921 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी का जन्म भी आज ही के दिन 1928 में हुआ था। सेन राव, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक का जन्म भी आज ही के दिन 1934 में हुआ था। और 1903 में जन्मे मुकुल बिहारी लाल भार्गव, जो कि भारतीय राजनीतिक तथा लोकसभा के सदस्य थे, आपका जन्म भी आज ही के दिन 1903 में हुआ था। और अब जानते हैं आज हुई पुण्यतिथियों के बारे में। 1985 में निधन हुआ के एच आरा का, जो कि भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे। आशा देवी आर्या नैक्यम एक समर्पित महिला थीं, जिन्होंने अनभिज्ञता को दूर करने और ज्ञान, प्रेम और विश्वास से भरी दुनिया बनाने की कोशिश की। आपका निधन भी आज ही के दिन वर्ष 1970 में हुआ था। और 1917 में निधन हुआ दादा भाई नौरोजी का, जो भारत के प्रसिद्ध दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक थे। श्रोताओं, ये तो था आज का इतिहास। और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

हुआ है। इन्हीं अद्भुत खगोलीय पिंडों में से एक है शूद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड, यानी अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने, और आज हम मना रहे हैं शूद्र ग्रह दिवस। शूद्र ग्रहों के बारे में जागरूकता फैलाने और पृथ्वी को संभावित शूद्र ग्रहों के टकराव से बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। शूद्र ग्रही चट्टानी पिंड होते हैं जो मुख्य रूप से शूद्र ग्रह घेरा में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका अध्ययन हमें सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास को समझने में मदद करता है। इसी को जागरूक करने के लिए आज हम शूद्र ग्रह दिवस मना रहे हैं।

और श्रोताओं, इसके अलावा हम बात करते हैं आज हूल दिवस की। तो आज 30 जून को हूल दिवस भी मनाया जाता है। झारखंड और अन्य राज्यों के आदिवासी भाई बहन इस दिन को 1855 के ऐतिहासिक संथाल हूल विद्रोह और वीर सिद्धो कान्हू के अदम्य साहस और बलिदान की याद में मनाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद अन्याय, शोषण और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाले वीरों की याद दिलाता है। ये दिन साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। ये दिन उन सभी सेनानियों के नाम जिन्होंने अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनका संघर्ष हमें सत्य, एकता और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और उन हजारों आदिवासी नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिनका नेतृत्व सिद्धो और कान्हू मुर्मू भाइयों ने किया था, जिन्होंने दमनकारी ब्रिटिश औपनिवेशक समान और शोषक जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है।

श्रोताओं अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आकाशवाणी रामपुर से इसी तरह जुड़े रहिए और आज की सुबह सवेरे की इस महफिल को समेटने की अब शैजी आका को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ की होगी आपसे फिर मुलाकात। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इस अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीद 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
4: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना पत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितम्बर तक दर्ज अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
5: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
6: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy. Cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
1: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters of high-speed diesel per consumer or vehicle per day at retail outlets and required industrial, institutional and commercial consumers. The measures were aimed at preventing black marketing, hoarding and diversion of fuel while ensuring uninterrupted availability of petrol and diesel to retail consumers. Following a review of the supply situation of petroleum products in the country, the government has concluded that the temporary regulatory measures are no longer required in the public interest. The temporary measures help ensure adequate availability of petrol and diesels across the country while safeguarding the interest of retail consumers. Their withdrawals reflects the improvement in the supply situation and the restoration of normal supply arrangements. Aditya Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
7: West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari has said that the Uniform Civil Code UCC will be implemented in the state. We have more from a correspondent.
2: Chief Minister Shubhendu Adhikari announced in the Assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the scheduled State Cabinet meeting on Thursday. Following the models of the Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on the total of 9 subjects including marriage, divorce, adoption and submit its report within 4 weeks, based on which the state government will formulate the code. However, he

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शाज़िया आगा का नमस्कार। कार्यक्रम में पहला गीत आपके लिए लेकर आए हैं अरिजीत सिंह और नेहा का कड़की आवाज़ में। फिल्म का नाम है यारियां टू।

अब दिल्ली दूर नहीं, ये नाम था उस फिल्म का जिसका गीत अभी आपने सुना नूबी जुबीन नौटियाल की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं पायल देव और विशाल मित्रा की आवाज़ में। फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया।

सत्य प्रेम की कथा। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत पायल देव और विशाल मित्रा की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत मित्रा स्वर में, फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया।

अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग हिट्स। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 होने का है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और पीलीभीत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल, आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का।
2: कन्नौज जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन परिसर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़ ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन एवं योग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा और सुना गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट योग प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री असीम अरोड़ ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति अमूल्य धरोहर है, जो केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। शास्त्रों में भी स्वस्थ शरीर को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना गया है। जनपद की सभी तहसीलों, विकास खंडों और नगर निकायों, ग्राम पंचायतों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुए। कन्नौज जिले में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्राकृतिक खेती कार्यशाला एवं कृषि प्रदर्शनी और विकसित सघन खेत बचाओ अभियान विभिन्न जागरूक कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रदर्शनी में भूमि संरक्षण, कृषि पर्यटन, शिक्षा, पंचायती राज और सूचना सहित विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों एवं विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य, मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना रहा। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को टिकाऊ एवं लाभकारी कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया। कन्नौज जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के अवसर पर ठठिया मंडी में कृषक गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़ शामिल हुए। कार्यक्रम में किसानों को आलू की नई किस्मों, आधुनिक खेती के तरीकों, भंडारण और प्रसंस्करण से जुड़ी जानकारी दी गई। इस दौरान किसानों ने विशेषज्ञों से अपनी समस्याओं और सवालों पर चर्चा की, साथ ही खेती में नई तकनीकों को अपनाने की जानकारी ली। राज्य मंत्री ने ठठिया मंडी को आलू के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के निर्णय पर उद्योग मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आभार व्यक्त किया। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़ ने कहा कि
3: कन्नौज में आलू की किसानी खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं जो नए बीज लेकर के आई, नई पद्धतियां बता रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी का कि उन्होंने निर्णय लिया है कि हमारी इस मंडी को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करेंगे आलू के लिए।
2: उन्होंने कहा कि इससे उन्नत बीज, नई खेती तकनीकों और आलू प्रसंस्करण के उन्नत तरीकों की जानकारी मिलेगी, साथ ही किसानों की आय बढ़ेगी और बेहतर मूल्य सुनिश्चित होंगे। राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि आलू सब्जी या चिप्स निर्माण तक सीमित नहीं है, इससे स्टार्च सहित अनेक औद्योगिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। कन्नौज में प्रस्तावित स्टार्च प्रसंस्करण इकाई से किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कन्नौज जिले में भारत सरकार की सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत टपक एवं फव्वारा सिंचाई के लिए इच्छुक किसानों को 90% तक अनुदान मिल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई में पानी की बर्बादी को रोकना और कम लागत में उपज को बढ़ाना है। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु सीमांत किसानों को 90%

0: तथा अन्य किसानों को 80% अनुदान का प्रावधान है। चालू वर्ष में 571 किसानों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है और उद्यान विभाग ने सभी आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिला उद्यान अधिकारी आशीष कटियार ने बताया कि
1: प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना के तहत तीन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला हमारा पोर्टेबल सिंचाई के लिए पोर्टेबल पाइप है, इसमें 65 और 75% की सब्सिडी है, और दूसरा हमारा ड्रिप और तीसरा हमारा मिनी स्प्रिंकलर है। तो इसमें 80 और 90% की छूट है। जो हमारे कृषक भाई 2 हेक्टेयर से नीचे हैं, उनका सब्सिडी स्लैब अधिक 90 और 75 स्लैब आएगा, और जो बड़े कृषक हैं उनका जो है 65 और 80% है।
0: अब तक 223 किसानों के खेतों में प्रणाली स्थापित कर उन्हें लाभान्वित भी किया गया है, जिससे जिले का 234 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में आ गया है। पिछले साल 1000 से अधिक किसानों ने आवेदन किया था, जिसमें से 705 किसानों को लाभ मिला था। कन्नौज जिले में बाल विकास परियोजना के अंतर्गत सभी विकास खंडों की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण एवं डिजिटल भारत की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां समाज के नौनिहालों एवं मातृशक्ति के स्वास्थ्य, पोषण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्मार्टफोन उपलब्ध होने से कार्यकर्तियों को विभागीय योजनाओं के संचालन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, पोषण ट्रैकिंग तथा शासन की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुँचाने में और अधिक सुविधा होगी। तकनीक के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं गति आएगी, जिससे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुंचेगा। कन्नौज जिले में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर जनपद में तम्बाकू नियंत्रण एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। लोगों को तम्बाकू निषेध की शपथ भी दिलाई गई। 29 मई से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सार्वजनिक स्थलों एवं विभिन्न स्थानों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां एवं प्रचार प्रसार गतिविधियां आयोजित हुई।
2: कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्रा का।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 569 करोड़ से अधिक लागत की 16 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने बांग्लादेश से कई दशक पूर्व विस्थापित 4693 परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के कागजात सौंपे और 100 से अधिक लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देकर न सिर्फ उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है, बल्कि विरासत को भी संरक्षित किया है।
4: पीलीभीत में 5 दशक से इंतजार कर रहे बंगाली परिवारों को भी उनका जमीन का अधिकार और उनकी नागरिकता प्रमाण पत्र प्रारंभ हो गया है। इन सब के लिए आपको बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं, और विश्वास करता हूं कि आप इस संस्कृति को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे।
3: उन्होंने कहा कि सरकार ने पीलीभीत समेत प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। इस अवसर पर पीलीभीत से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश के साथ पीलीभीत जिले का भी सर्वांगीण विकास हो रहा है।
5: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं का यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही है।
3: सरकार की जनहितकारी नीतियों और अनुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है। पीलीभीत जिले में गोमती नदी को उद्गम स्थल से अविरल बहाने और स्वच्छ रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। सभी घाटों पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देशन में जागरूकता मेलों का आयोजन किया गया। इनमें नदी की स्वच्छता और सफाई खुदाई के कार्यों का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। 1 जुलाई से जी राम जी योजना के तहत नदी की खुदाई और साफ सफाई के प्रारंभ होंगे। नदी के सभी 16 घाटों पर प्रकाश के लिए सोलर लाइटें लगाई गई हैं और बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था कराई गई है। गोमती नदी के माधवटांडा स्थित उद्गम स्थल पर ग्रीष्मकालीन गोमती महोत्सव का आयोजन किया गया। यहां स्कूली बच्चों की गोमती पर आधारित प्रतियोगिताएं कराई गई और ब्रज की रासलीला मंडली द्वारा सुंदर लीला मंचन किया गया। सभी प्रतिभागियों को मुख्य विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्रा और SDM परमेश कुमार ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर गोमती नदी को सजाने, संवारने और स्वच्छ रखने के लिए सभी 16 घाटों पर 10-10 गोमती मित्रों की तैनाती युवा कल्याण विभाग द्वारा करने की घोषणा की गई। अब तक घोषित किए गए 82 गोमती मित्रों को परिचय पत्र वितरित किए गए। पीलीभीत जिले में गन्ने की फसल के सर्वे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक 2 लाख किसानों के खेत

0: तक गन्ना विकास विभाग की टीमें पहुंच चुकी हैं। जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव ने बताया कि गन्ने के साथ गेंदे की मिलवा खेती करके किसान मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। पीलीभीत जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गांधी स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार शामिल हुए। गाँव से शहर तक स्कूल कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व मानसून सीजन के चलते 30 जून को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। प्रभागीय अधिकारी मनीष सिंह ने पर्यटकों की बढ़ती संख्या और आमदनी पर संतोष व्यक्त किया।
1: पीलीभीत टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र इस बार काफी अच्छा गया है। जहां तक हम लोग बात करते हैं राजस्व की, राजस्व हमारा जो है पिछले साल की तुलना में करीब 5 लाख रुपए अभी तक बढ़ चुका है। साथ ही साथ इस बार जो विशेषता रही है पर्यटन सत्र की, उसमें खास बात रही है कि जो टाइगर के बच्चे हैं वो काफी अच्छी संख्या में दिखे हैं और काफी जगहों पर दिखे हैं। करीब 4 बाघिनें ऐसी रही हैं जिनके बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के दिखे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये पर्यटन सत्र पर्यटकों की संख्या के लिहाज से और जो है साइटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा गया है।
0: उन्होंने कहा कि इस बार बाघ और अन्य वन्य जीवों की अच्छी साइटिंग होने से सैलानी काफी प्रभावित हुए।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:25 हुए हैं। आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम गौरव भारत देश के। आज इस कार्यक्रम में नजर डालते हैं प्रमुख वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम के जीवन परिचय पर।
4: डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, जिन्हें APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। वे एक महान वैज्ञानिक, शिक्षाविद और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और आत्मसमर्पण की अद्वितीय मिसाल है। डॉक्टर कलाम का जीवन प्रारंभिक दौर में कठिनाइयों से भरा था। वे एक साधारण परिवार से थे और उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही हुई। कलाम ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अखबार भी बेचे। बावजूद इसके उन्होंने अपनी शिक्षा में कभी भी समझौता नहीं किया और अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक किया और इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में शामिल हो गए। वहाँ उन्होंने भारतीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV तृतीय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में भारत ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में काम किया और भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उनके नेतृत्व में अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का विकास हुआ, जिससे भारत की रक्षा क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 1998 में डॉक्टर कलाम ने पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत एक पूर्ण परमाणु शक्ति बन गया। उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें एक राष्ट्रीय हीरो बना दिया और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने हमेशा युवाओं और जनता से जुड़ने का प्रयास किया। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी वे शिक्षण और लेखन में सक्रिय रहे। उनकी पुस्तकें जैसे विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स युवाओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम का निधन हो गया, जब वे भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में एक व्याख्यान दे रहे थे। उनका निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनका जीवन और विचारधारा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद भी अगर हम अपने सपनों का पीछा करें और निरंतर प्रयासरत रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सफलता की अनूठी कहानी है जो हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गौरव भारत देश के। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

0: मैं तन्हा,
1: ये क्या
0: कि हिजर के सदमे उठाऊं मैं तन्हा, कभी तो वो भी तड़पता हुआ नजर आए, कभी तो वो भी तड़पता हुआ नजर आए। शेर देखें कि नहीं है मुझ पे किसी पर तो हो करम उसका, नहीं है मुझ पे किसी पर तो हो करम उसका, कहीं तो अब्र बरसता हुआ नजर आए। किसी दरीचे से फूटे तो रोशनी की किरण, किसी दरीचे से फूटे तो रोशनी की किरण, कहीं तो चांद निकलता हुआ नजर आए।
2: क्या कहने हैं,
0: कहीं तो चांद निकलता हुआ नजर आए। आखिरी शेर इस गजल का समाप्त फरमाए, कोई तो सर फिरी आंधी का रास्ता रोके, कोई तो सर फिरी आंधी का रास्ता रोके, कोई चराग तो जलता हुआ नजर आए, कोई चराग तो जलता हुआ नजर आए। और दूसरी गजल के चंचल समात फरमाए, अर्ज करता हूँ कि छुप छुप के आंसुओं को पिया तो पता चला, छुप छुप के आंसुओं को पिया तो पता चला, दो दिन मैं दूर उससे रहा तो पता चला। हो जाता है अकेला कोई कैसे भीड़ में, हो जाता है अकेला कोई कैसे भीड़ में, हाथों से एक हाथ छूटा तो पता चला, हाथ छूटा
2: अच्छा
0: तो पता चला।
2: अच्छा,
0: और किस दर्जा एहतियात है उसके मिजाज में,
1: किस दर्जा
0: एहतियात है उसके मिजाज में, कुछ दूर तक वो साथ चला। और हमको खबर ही कब थी, ये रुख देखे शेर का, कि हमको खबर ही कब थी वो है इन दिनों उदास, वो शख्स आज हंस के मिला तो पता चला। और ये शेर खास तौर पे मुझे पसंद है, समाज फरमा ले कि एक शख्स की तलब में है किस किस को खो दिया, एक शख्स की तलब में है किस किस को खो दिया, उतरा मोहब्बतों का नशा तो पता चला। उसे एक सफेद साए की कितनी थी बरकतें, उसे एक सफेद साए की कितनी थी बरकतें, सर पर न जब वो साया रहा तो पता चला। उसे एक सफेद साए की कितनी थी बरकतें, सर पर न जब वो साया रहा तो पता चला। किस दर्जा सर्द होते हैं शोला मिजाज लोग, किस दर्जा सर्द होते हैं शोला मिजाज लोग, मैंने जब आज उसको छुआ तो पता चला। है कितनी तेज धूप पता था कहाँ हमें, है कितनी तेज धूप पता था कहाँ हमें, सर से वो साहिबान हटा तो पता चला। दो तीन चार और सुन ले, कि जो रोज की है बात वही बात करो,
1: जो रोज की है बात वही,
0: जो रोज की है बात वही बात करो,
2: क्या
0: बेकार ही यारों का में हालात करो,
2: क्या
0: जो रोज की है बात वही बात करो, बेकार ही यारों का में हालात करो। और एक मुझसे ही मिलने को तुम्हें वक्त नहीं है, एक मुझसे ही मिलने को तुम्हें वक्त नहीं है, औरों पे तो तुम खूब इनायात करो, एक तुम्हें वक्त नहीं है, औरों पे तो तुम खूब इनायात करो। और ये तर्ज तकल्लुम तुम्हें आया है कहाँ से, ये तर्ज तकल्लुम तुम्हें आया है कहाँ से, होठों से जो फूलों की ये बरसात करो। और क्यों चांद से चेहरे पे गिरा रखी हैं जुल्फें, क्यों चांद से चेहरे पे गिरा रखी हैं जुल्फें, क्यों दिन को अमावस की सिया रात करो हो,
2: बहुत अच्छा है,
0: क्यों दिन को आदाब, क्यों दिन को अमावस की सिया रात करो। मक्ता समाज फरमा ले कि बेवहमो गुमा राह में मिल जाते हो जावेद, बेवहमो गुमा राह में मिल जाते हो जावेद, दानिश्ता कहाँ मुझसे मुलाकात करो हो, दानिश्ता कहाँ मुझसे मुलाकात करो हो, जो रोज की है बात वही बात करो हो, बेकार ही यारों गमे हालात करो।
2: एक शख्स की तलब में है किस किस को खो दिया, एक शख्स की तलब में है किस किस को खो दिया, उतरा मोहब्बतों का नशा तो पता चला। ऐसे ही खूबसूरत अशार के साथ हमारे दरमियान थे अभी जावेदुल्ला खान जावेद नसीमी साहब। और समीन, इसके बाद अब ये नशिस्त अब अपने इख्तिताम को पहुंचती है। जाने से कबल आपको बता दें, उन हजरात उन शोरा इकराम के अस्माए ग्रामी जो इसमें शिरकत फरमा रहे थे, वो थे डॉक्टर जाहिद अली जाहिद दानिश, जनाब मोहम्मद इरफान इरफान सागर, जनाब अहदुल्ला खां आजर नुमानी और डॉक्टर जावेदुल्ला खां जावेद नसीमी। आकाशवाणी के रामपुर मरकज से अब अपनी मेजबान आयशा राहत को दीजिए इजाजत।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:50 हुए हैं। आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत। इसमें आपने सुना मोती बेगम का गायन ठुमरी, राग था तिलंग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: पानी पानी
1: कहाँ से लाऊं पानी
0: पानी
1: एक बूंद भी पानी नसीब पानी, नहीं
0: पानी
1: कई दिन हो गए पानी हलक से नहीं उतरा
0: पानी, पानी।
2: ये तस्वीर है आने वाले कल की। अगर अब भी नहीं सोचा तो बहुत देर ना हो जाए। पानी बचाने के प्रयास आज से, अभी से शुरू कीजिए।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10:05 होने वाले हैं। अब आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

आपके अनुरोध कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को शैजिया खा का नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम में अपनी पहली फरमाइश के साथ हमसे जुड़े हैं हमारे आप सभी श्रोता। बांगरा शिंदे तहसील वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से रामचंद्र धोंडिम्बा, इंगोले सिद्धांत इंगोले, टीकू रामाबाई सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभि मंजुषा गौतम, नामदेवराव शिंदे पाटिल मास्टर विलास शिंदे, सुनील जाबड़े अशोकनगर वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से, दीपाली राजू ठेके पार्वती सखाराम ठेके, रोहित सोनू मोनू और जिजमाता नगर हिंगोली से, लक्ष्मी उत्तम कांबले तामसा रोड तहसील हर्द गांव से, श्यामराव बगड़े, बेबी बिट्टू और आपके परिवार के समस्त लोग, पसंदकर्ता जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, समरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर, कोटवाना रायपुर बाबा बट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दूबिहानी वादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय, प्रांजल शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश रॉय, श्रीमती प्रीति रॉय, नवनीत रॉय, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांभले, रजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, छत्तीसगढ़ भट्टापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और वैष्णव कॉलोनी सदावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शदाब खत्री। आप सब की फरमाइश पर कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में 1942 लव स्टोरी फिल्म का ये गीत आपकी नज़र।

0: अरे
1: नमक हलाल, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत आपके लिए लेकर आए हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। सुनने की ख्वाहिश हमारे आप सभी श्रोताओं की। पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से अख्तर हुसैन, बहरुल निशा असलम हुसैन, महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन, नाजिम अली, मोहल्ला बारादरी महमूद खान, रामपुर से भाई रफा साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और नकमा नाज मंसूरी, गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, आजिया खान, सिमरन खान, रोमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खान, बुशरा खान, आसिम खान, जिला अस्पताल के पास से गज्जन खान, शमा परवीन, शमशाद अली अजम, गुलफशाह, शहनाज बाबू अंसारी, नाजिया गफ्फार, हबीब अहमद इदरीसी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जेते बिरक, मीका बिरक और बेरखेड़ा मिलामल जिला उज्जैन से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूरत, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रहीम, राजा आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से सरगुजा मेन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा अदीबा थापा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार, जिला हिंगोली महाराष्ट्र से रामचंद्र, अशोकनगर वसमत से दीपाली राजू ठेके, पार्वती सखाराम ठेके, रोहित सोनू मोनू, पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, असलम आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी, असद अंसारी, पुणे से पंकज वडौदे, आर्या प्रियंका बेटी वडौदे, चंद्रवर्भा वडौदे। तो पेश है आप सबकी फरमाइश पर किशोर कुमार की आवाज में नमक हलाल फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी रामपुर के साथ और सुन रहे हैं फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर शैजी आगा के साथ। कार्यक्रम में अगला गीत आप सबकी फरमाइश पर फरमाइश करता है करूला मुरादाबाद से युवानी रमगुड़िया शेख खान, नावेद खान और सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, मजार चांद शामिया जिला रामपुर से मोहम्मद रमजान साहब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, फौजिया रोशनी, शायना काजल, अनमता और आशुभाई मंसूरी, नाजमंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, वसीम अक्रम, आरिज वसीम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, बेगम इशरत अक्रम, रूबीना वसीम, नदीम अक्रम, अमन, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख, कोहात बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर, नूर महल महसूल से हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी सहानी और अफजाल इब्राहिमी, जमशेदपुर से तस्नीम कौसर, रिश्ता सहानी, प्रियंका मोदी, सोनम वली और अफजाल मलिक, डोगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका गजबीय, बीबी अंशिका और तन्मय गजबीय, सरोजनी चौक अमरावती महाराष्ट्र से करमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, आदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, पोदरा मुश्तबा खान, राऊ भाई, शाहिद भाई, गांधीबागा कोला से रमेश कटनकर, विशाली कटनकर, वैष्णो कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खतरी, अलतमश खतरी, रमेश कौर, मोहम्मद शदाब खतरी, महादेव घाट अमरेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तानी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नीताम, कुसुम नीताम, प्रेनिका और प्राणी मेका, उत्कर्ष नीताम, हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान रेलवे कॉलोनी से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, एयरपोर्ट रोड वंदनायकर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, परी संजना, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता नारायणकर जी, जरूर महाराष्ट्र से बाबा साहब अडौदे, मीनाक्षी चर

स्वाति प्रयाग चौधरी ललिता नारायणकर जी जरूर मरूण महाराष्ट्र से बाबा साहब अडौदे मीनाक्षी चरपे रजनी गणीरे और कार्तिक युवराज आप सब ने सुनना चाहा है श्रेया घोषाल को फिल्म गुरु में।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हो चुके हैं। अब सुनहरा दौर में आपको सुनवा रहे हैं 70 के दशक के कुछ फिल्मी गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सीता और गीता फिल्म से आशा भोसले की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने 70 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।
1: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आपके लिए लेकर आए हैं धरोहर के अंतर्गत नाटक पापा मैं तारा बन गई। लेखक हैं गुडविन मसी, सहप्रस्तुति असीम सक्सेना और कार्यक्रम प्रस्तुत करता है विक्रांत चौधरी।

श्रोताओं, हमें खेद है कि हम सुचारू रूप से आप तक नाटक का प्रसारण नहीं पहुंचा पा रहे हैं तकनीकी खराबी के कारण।

0: अरे आनंद भाई साहब, आप?
1: नमस्कार भाभी जी।
0: नमस्ते नमस्ते, आइए। सुनते हो, आनंद भाई साहब आए हैं।
1: अच्छा अभी आता हूं। अरे आनंद तुम बादब बा मुलायजा होशियार, माँ बदौलत हुजूर नरेंद्र देव की तशरीफ आ रही है।
2: तुम कभी नहीं बदलोगे आनंद, रिटायर होने को आ गए मगर बातें वैसी की वैसी ही हैं। कहो ठीक तो है?
1: हाँ यार, फकत 4 दिन की जिंदगी उधार दी है खुदा ने, क्यों ना उसे हंसकर गुजार लिया जाए। भाई मैं तो बड़ा मस्त हूं, तुम सुनाओ कैसी कट रही है? अब ऐसे सेहत देखकर तो लगता है कि गोया प्रिंसिपल विंसिपल बन गए हो। हैं
2: हाँ 2 साल हो गए।
1: वाकई? अमां तब तो बड़े ठाट बाट होंगे साहब बहादुर के। मगर सवाल ये है नरेंद्र, कि किस बेवकूफ ने तुझे प्रिंसिपल बना दिया? उसे कोई और गधा नहीं मिला था क्या?
2: तुम थे नहीं, बस इसीलिए मुझे चांस मिल गया।
1: अच्छा, देखा भाभी कैसे उलटकर चोट की है इसने। पर एक बात तो बता भाई, तेरे स्टाफ में कोई फुलझड़ी उलझड़ी भी है या नहीं?
2: तुम नहीं मानोगे आनंद,
1: अच्छा, अब भाभी के सामने शराफत का नाटक कर रहा है। भाभी आपको पता नहीं है शायद, एक जमाने में श्रीमान नरेंद्र कुमार टॉप के हीरो हुआ करते थे। अजी एक साथ चार चार रोमांस, आहा, और एक हम बेचारे थे
0: अरे
1: कि
0: आप दोनों मित्र अपनी बीती यादें दोहराइए, तब तक मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूं। हाँ आप पहले हाथ मुंह धो लीजिए।
1: अरे भाभी शेर भी कभी मुंह हाथ धोते हैं? ये तो गीदड़ों का ही काम है कि सुबह हुई नहीं और जाकर नल के नीचे बैठ गए। क्यों है नरेंद्र?
2: अब तो तुम किसी तरह से बाज नहीं आओगे।
1: अच्छा, भाई नाराज मत हो यार, ले अब मैं बिल्कुल सीरियस हो गया। हाँ अब बता, तेरे दोनों कुलदीपक कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं आजकल?
2: अनिल रुड़की में है और इंजीनियरिंग फाइनल कर रहा है,
1: अच्छा
2: और सुनील ने यही यूनिवर्सिटी में एमए ज्वाइन कर लिया है।
1: वेरी गुड। अभी आगे सुनील का क्या इरादा है?
2: अब भाई ये फैसला मैंने उसी पर छोड़ दिया है।
1: ये तुमने बहुत अच्छा किया, बच्चों को अपनी लड़ाई अपने आप ही लड़ने देना चाहिए।
2: तुम तो जानते हो आनंद, अपने पास तो ले देकर यही नौकरी है, इसी में बच्चों को पढ़ाया लिखाया, गृहस्थी चलाई और वक्त बेवक्त की परेशानियां भी झेलता रहा। अरे कितनी बार तो प्राविडेंट फंड से लोन ले चुका हूं।
1: सच पूछो तो नरेन, जो कुछ हम बच्चों के लिए करते हैं ना, वो एक प्रकार से अपने फ्यूचर के लिए ही एक इन्वेस्टमेंट है।
2: हाँ ठीक कहते हो, अब तो अनिल और सुनील दोनों काम से लग जाएं और दोनों की शादी ब्याह कर दूं, तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल जाए।
0: आइए चाय तैयार है।
1: नरेन, अब विवाह तो मुझे भी अलका का करना है। सच पूछो तो इस बार इसीलिए मैं तेरे पास आया हूं। भाभी आपने तो मेरी बेटी को देखा ही है, सुनील के साथ उसकी जोड़ी कैसी रहेगी?
0: अरे वाह भाई साहब, आपने तो मेरे मन की ही बात कह दी।
1: अच्छा
0: मैं तो कब से यह बात सोच रही थी।
1: सचमुच भाभी, मां के बिना ही इतनी बड़ी हुई है मेरी अलका, आपकी गोद मिल जाएगी तो कम से कम वो इतना तो जान जाएगी कि मां कैसी होती है, और मैं तो बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाऊंगा।
2: कैसी बातें कर रहे हो आनंद, अरे अलका जैसे तुम्हारी बेटी वैसे ही हमारी बेटी है।
1: मैं और तो कुछ नहीं कह सकता नरेंद्र, पर इतना जरूर है मेरी अलका कभी किसी तरह से शिकायत का मौका नहीं देगी। बहुत मीठा स्वभाव है उसका, बिल्कुल अपनी मां पर गई है। और
2: अलका? अरे अलका हमारे घर की लक्ष्मी बने, ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी भैया। लेकिन आजकल के लड़कों, उन्हें तो तुम जानते ही हो।
1: वो मैं खूब समझता हूं नरेंद्र, पर ये चाहता भी नहीं हूं कि इसके लिए तुम सुनील पर दबाव दो। बस वक्त पर ध्यान रखना।
0: सो मेरी जिम्मेदारी रही भाई साहब, लेकिन फिर भी। अच्छा, छोड़िए, अब नाश्ता तैयार है, कर लीजिए, नहीं तो सब चीजें ठंडी हो जाएंगी।
1: लाओ भाभी बड़े जोर की भूख लग रही है। आहा, अरे वाह, आपने तो सारे आइटम्स ही मेरी पसंद के बना रखे हैं, मजा आ गया। हो, पालक के पकौड़े भी हैं। ए, देखो भाई नरेन, ये पकौड़ों की प्लेट तो तू पूरी की पूरी सीधी तरह से मेरे हवाले कर दे।
0: अरे आप खाइए तो सही पकौड़े, पकौड़े तो बहुत हैं।
1: ना ना ना ना भाभी, बिल्कुल नहीं, ये प्रिंसिपल भी मुझसे कंपेटू नहीं है। मैं इस मामले में भाई कोई रिस्क नहीं लूंगा। लो नरेन भैया, ऐसा करो तुम जब तक ये टोस्ट खाओ, तुम्हारी सेहत के लिए ये बहुत ठीक रहेगा।

0: की बहू, जरा भंडार घर से मुझे थोड़े से लड्डू ला दे बेटी, सुनील की बहू के साथ मंदिर जाना है।
1: बड़ी बहू जी तो ऊपर आपन सामान ठीक कर रही है मलकिन।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: तब तुम ही लड्डू निकाल लो बंसी, ये रही चाबी।
1: अच्छा अच्छा, अभी लाए थे मलकिन, अभी लाए थे।
0: अरे चंपा की अम्मा, तुम ऐसे हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी हो? अरे ढोलक पर चार शगुन के गीत ही गा लो।
1: लड्डी और ई रही चाबी, आए संभाल ले अच्छी तरह।
0: अरे देखो तो बंसी, अनिल भैया की गाड़ी बाहर खड़ी है कि नहीं? ड्राइवर से कहना गाड़ी के पास ही रहे, जरा मंदिर चलना है।
1: अच्छा अच्छा, जाए के कह दे थे।
0: अरे बंसी, ड्राइवर साहब को नाश्ता करवा देना।
1: अब हम तो घंटा भर से नाश्ता मांग रहे हैं मलकिन, मुला कोई दे वाला हो तो ना।
0: क्यों, अनिल की बहू तो है, उससे क्यों नहीं लेते?
1: आप तो बड़ी जल्दी भूल जाती हो मलकिन। अब हिन तो आपका बतावा कि बड़ी बहू जी ऊपर आपन अटैची लगाई रही हैं।
0: अभी से अटैची लगाने की क्या जल्दी पड़ गई? मैं अकेले किधर किधर देखूं? लो भैया, तुम ही निकालो नाश्ता। हाँ, तुमने चाय पी?
1: हाँ, अब हमार फिक्र छोड़ो, जब निपटेंगे पी लेंगे। आप अपन काम करो, हम पहले जाए के ड्राइवर साहब का नाश्ता दे यार थे। हाँ
0: अजी, सुनते हो? कहाँ हो? अरे मैंने कहा थोड़े से रुपए दे दो।
2: अरे मैं अंदर कमरे में हूँ, जो लेना हो यहाँ आकर ले लो, फिर मुझे शाम का इंतजाम देखना है।
0: आ रही हूँ।
1: मलकिन, ए मलकिन, वो बड़े भैया ना, वो
0: क्या हुआ, क्या हुआ अनिल को?
1: अरे वो अनिल भैया बहन अपनी नौकरी पर वापस जा रहे हैं।
0: क्या?
1: हाँ।
0: ये क्या कह रहे हो तुम बंसी?
1: हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलकिन, ड्राइवर साहब उनका सामान ऊपर से उतार के गाड़ी में रख दी न है, हम अपनी आँखें से देखा है।
0: अरे मगर ये कैसे हो सकता है, शाम को तो रिसेप्शन है, सब जान पहचान के और नाते रिश्तेदार तो उसी वक्त इकट्ठे होंगे, फिर घर के लोग ही ना हो। मैं अभी जाकर पूछती हूँ।
2: ठहरो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
0: ये कैसी बातें करते हो जी, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? सब मुझसे ही तो पूछेंगे कि अनिल कहाँ है, उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगी? ऐसे वाला वो कैसे जा सकता है?
2: नहीं, कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारे कहने से, अब बेकार में अपनी ही बात खराब करोगी।
1: अनिल भैया इधर आए रहे हैं मालिक।
2: अच्छा ठीक है, बाहर जाकर देखो। अच्छा। सब सामान वामान ठीक हो रखा है या नहीं?
1: हम जाए थे।
0: अनिल तू जा रहा है क्या? अरे बेटा शाम को रिसेप्शन है, भला ऐसे कैसे हो सकता है, जरा सोच तो।
3: हाँ माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा, कल सुबह ही टीटू का एडमिशन टेस्ट है।
0: लेकिन लोग क्या कहेंगे बेटे?
4: अब लोगों के कहने की बात देखें या अपने बच्चे की फ्यूचर की बात सोचें? मैं तो पहले ही आना नहीं चाहती थी, मुझे मालूम था कि यहाँ यही सब झंझट होगा।
0: नहीं बहू, मैं जाने को कब मना कर रही हूँ, बस बस आज शाम की ही तो बात है, कल सुबह होते ही चले जाना। आज शाम को तुम सबका रहना बहुत जरूरी है।
4: जरूरी तो टीटू का टेस्ट देना भी है।
3: हाँ माँ, बिना ठीक कह रही है, टेस्ट के बिना टीटू का एडमिशन नहीं हो सकता, और यहाँ तो सारा इंतजाम लड़की वाले देख ही रहे हैं, हमारे रुकने से क्या फर्क पड़ेगा?
0: फोह, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
2: अरे जब जाना ही है तो जल्दी ही निकलना ठीक है, बच्चों के साथ मिठाई वगैरह रख दी है ना। कहिए टीटू राम, अब बाबा के पास कब आओगे बेटे?
3: अच्छा चलता हूँ बाबूजी। अच्छा माँ,
4: अब चलो भी, वहां पहुंचकर टीटू को थोड़ा सा गाइड भी करना होगा, ये 2-4 दिन तो बिल्कुल ही वेस्ट हो गए।
3: अच्छा माँ।
0: खुश रहो बेटा। अरे बंसी, ओ बंसी।
1: हाँ मलकिन।
0: कहाँ चला गया? ये ले, ये फलों की टोकरी भैया जी की गाड़ी में रख दे, नहीं तो रह जाएगी।
1: अच्छा मलकिन।

0: सो गई क्या?
1: नहीं।
0: अनिल की कोई चिट्ठी आई?
1: नहीं भाई, कोई चिट्ठी नहीं आई।
0: और सुनील मिला था क्या आज?
1: नहीं भैया, नहीं, कोई नहीं मिला था।
0: सुनील ने तो बहुत ही धोखा दिया। पहले तो अपनी मर्जी से ब्याह कर लिया और अब ससुराल का ही होकर रह गया। हम तो आनंद भाई साहब को मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहे। कभी कभी तो ये अकेलापन काट खाने को दौड़ता है।
1: लेकिन क्या किया जाए?
0: एक वक्त था जब ये अनिल और सुनील दोनों दिन भर मेरी साड़ी का पल्ला पकड़कर आगे पीछे घूमा करते थे। माँ के बिना तो एक मिनट काम नहीं चलता था। और अब,
1: अरे जैसा है ठीक है।
0: अरे कभी कभी सोचती हूँ कि अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, कल जब बच्चों के सहारे की जरूरत पड़ेगी तब क्या होगा। बड़ा डर लगता है।
1: अरे जैसा भाग्य में होगा हो जाएगा।
0: क्यों जी, क्या अनिल का ट्रांसफर यहां नहीं हो सकता? मिश्रा जी से कहकर तो देखो ना, वे तो तुम्हारे पक्के दोस्त हैं।
1: हाँ हाँ मिश्रा जी चाहें तो हो सकता है।
0: तो फिर कल ही चले जाना उनके पास, अनिल के बच्चों के सहारे दिन कट जाएंगे।
1: देखो।
0: क्यों, इसमें देखना क्या है? मैं तो घर की ताली कुंजी अनिल की बहू को सौंप दूंगी और आराम से अपने पोते पोती को खिलाऊंगी। मूल से ब्याज प्यारा होता है जी।
1: अच्छा बाबा, अब सोने की कोशिश करो। अब मुझे कल पेंशन लेने जाना है, याद दिला देना।
0: अच्छा,

0: टीटू, ओ टीटू, टीटू इधर उधर बैठकर टाइम वेस्ट करता रहता है फालतू की बातों में। टीटू
1: मैं पापा जी से कहानी सुन रहा हूँ मम्मी।
0: ये सुबह सुबह कोई कहानी सुनने का टाइम है? चल चल चल कर होमवर्क कर चल।
1: बस मम्मी अभी आता हूँ प्लीज।
2: आप कहाँ चली गई रही बहू जी? अरे बाजार से का लावे का है बोला ना।
0: ये बहू जी वो जी क्या लगा रखा है? कितने दिन हो गए तुझे समझाते सुनता ही नहीं। अरे मेम साहब नहीं कहा जाता तुझसे?
2: क्या करी हमका याद है नहीं रहत।
0: अपने मतलब की तो सारी बातें याद रहती है।
2: सो अब सामान की बात तो बताए दो मेम साहब।
0: कोई सामान वामान नहीं आएगा, कहीं नहीं जाना है अभी। साहब का कमरा साफ किया कि नहीं?
2: सो बाजार से लौटकर हम कर लेंगे।
0: क्यों अभी क्यों नहीं? कान खोल कर सुन ले वंशी, यहाँ रहना है तो मेरे मन के अनुसार काम करना पड़ेगा। सिर चौड़ा रखा है नौकरों को, बराबर से जबान लड़ाते हैं, बदतमीज कहीं के। टीटू टीटू चलकर दूध पी ले। ये क्या माँ जी, टीटू का दूध ही गिरा दिया आपने?
3: धोखे से हाथ लग गया बहू।
0: तो आप आती ही क्यों हैं किचन में? मैंने कितनी बार आपसे कहा है जो जरूरत की चीज हो बंशी से मांग लिया करिए। अब क्या चाहिए आपको?
3: रात से तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनके लिए जरा सी खिचड़ी डालने आई थी बहू।
0: अभी से? अभी तो सिर्फ 9 बज रहे हैं।
3: सो तो ठीक है बहू, मगर उन्हें देर से खाया हजम नहीं होगा।
0: जो आपके मन में आए सो करिए। दिन भर घर में पड़े रहेंगे तो तबीयत नहीं खराब होगी तो क्या होगा? अरे टीटू टीटू अभी तक तो नहीं गए यहाँ से? अभी आती हूँ, रुक जा तेरी खबर लेती हूँ, अभी आ रही हूँ।
3: बंसी बाजार जाओ तो अपने मालिक की दवा का पर्चा ले जाना भैया।
0: अभी बंशी कहीं नहीं जाएगा, पहले वो घर की सफाई करेगा।
3: मगर बहू उन्हें वक्त से दवा मिलना जरूरी है।
0: इतना ही जरूरी है तो अपने आप जाकर क्यों नहीं ले आते?
3: नहीं बहू वे नहीं जा पाएंगे, उन्हें तो बहुत कमजोरी लग रही है। तुम पहले बंसी को उनकी दवा ले आने दो।
0: यहाँ तो सब अपने अपने मन की ही करेंगे, एक मैं ही बची हूँ सबकी बेगार करने को। चल बंसी चल निकल मेरे कमरे से, खबरदार जो कभी मेरे किसी काम को हाथ लगाया। जिसका नौकर है उन्हीं का हुक्म बजाना जाकर। हाँ अब मैं नहीं सोऊंगी। हाँ कल ही बुलाती हूँ सुनील को, हिस्सा तो बराबर का बटाएंगे वो, तो संभाले ना आकर रोज रोज की मुसीबत को। अब मैं भी फैसला करके ही रहूंगी। क्यों रे टीकू के बच्चे, तू मेरी बात नहीं सुनेगा? तू भी मेरी बात नहीं सुनेगा, अपने मन की करेगा? चल चल यहाँ से चल।
1: बाबा अम्मा बाबा।

0: नींद नहीं आ रही है भाभी?
1: नहीं।
0: नरेंद्र सो गया क्या?
1: नहीं, लेकिन
0: वो इस समय किसी से कोई बात नहीं करेगा।
1: हाँ, यही सोचकर मैं कमरे से बाहर आ गई हूँ।
0: अच्छा किया आपने।

0: बैठिए। भाभी, जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ, पर अब उसे याद करने से मेरा मतलब वो सब भूलना ही ठीक है।
1: भूलना क्या इतना आसान है? और सब कुछ तो भूला भी जा सकता है भाई साहब, पर वो नन्ना टीटू कैसे ऊपर से अपनी छोटी छोटी बाहें फैलाकर चीख रहा था, बाबा टीटू भी चलेगा पीपी गाड़ी में बाबा, लेकिन लेकिन उसकी माँ ने जबरदस्ती
0: भाभी
1: उसे नीचे तक आने नहीं दिया।
0: धीरज रखिए, भाभी धीरज रखिए, ऐसे रोने से तो। अरे बंसी काका, जरा एक गिलास पानी लाना।
2: अभी लाए थे आनंद भैया। अरे एक का मलकिन फिर आंख में आंसू, दोनों भैया साहब को मालिक के साथ ऐसा नहीं करे का चाहता।
0: तुम ठीक कहते हो बंसी काका।
2: कहा कहें का ना कहें आनंद भैया, सच बात तो यह है कि माँ बाप अकेले 10 बच्चन का पाली पोस के बड़ा कर सकत है, मुला 10 बेटवा माली के एक माँ एक बाप के जिंदगी पार नहीं लगाए सकत, कस अंधे।
0: तुमने बहुत अच्छा किया जो नरेन के साथ यहां आ गए, नहीं तो उस घर में वक्त बिताना मुश्किल हो जाता।
2: सो मालिक की मर्जी तो हमको साथ लाने की तनिको ना ही थी, मुला हमहू साफ साफ कह दिया कि जब तक या तन में प्राण है हम आपका संग ना ही छोड़ सकत हैं। 8 बरस कहते हम भैया साहब, जब हमार बप्पा बड़े मालिकिन को हमार हाथ पकड़ाए गए रहे, सो सारी उम्र तो यहां बिताए गए, अब आखिर वक्त में। अच्छा हम जाए के 2 प्याला चाय बनाए लाए, बहुत ठंड है ना।
0: हाँ हाँ काका। भाभी, मैं जानता हूं नरेंद्र ने इतना बड़ा फैसला ऐसे ही नहीं कर लिया होगा, कोई ना कोई खास वजह जरूर रही होगी, वो आसानी से टूटने वाला आदमी नहीं है।
1: हाँ
0: तो बताइए ना, कल कल आखिर हुआ क्या था?
1: कल ही सुबह तो मेरे लिए अमावस की रात से भी ज्यादा काली बनाई थी। कल सुबह जब हम दोनों रोज की तरह बैठे चाय पी रहे थे, तभी बंसी आया।
2: मालिक, दोनों भैया साहब ड्राइंग रूम में आपका रास्ता देख रहे हैं।
3: क्यों भाई, आज ही कैसी पंचायत जुड़ रही है, बात क्या है?
1: जो होगा सो वहां जाने से पता चल जाएगा, पर देखो बच्चे हैं, कुछ ऐसा वैसा कह बैठे तो जरा ठंडे दिमाग से सब काम लेना। अच्छा
3: मैं तो वैसे ही बच्चों की बातों में कभी दखल नहीं देता हूं। वंशी कह दो, हम अभी आते हैं। लाओ दवा ले लूं, पता नहीं बातचीत में कितनी देर लगे।
1: लीजिए।
4: नमस्ते बाबूजी।
3: नमस्ते बेटा, खुश रहो। बहू नहीं आई?
4: नहीं, कल से रेखा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
3: क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ दिखाया था, वायरस फीवर बता रहे थे।
3: अरे हाँ, आजकल मौसम भी बड़ा खराब चल रहा है। तुम्हारे नाम एक ड्राफ्ट भेजा था, मिल गया?
4: जी हाँ।
3: वो टीटू नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ गया नटखट? और सुबह से मेरे कमरे में भी नहीं आया।
5: आज इतवार है ना बाबूजी, वो टीवी देख रहा होगा।
3: अच्छा अच्छा देखने दो। कहो बेटे, बात क्या है?
5: वो बात ये है बाबूजी कि अब ये मकान कुछ छोटा पड़ने लगा है। मेरा मतलब है आपको तकलीफ?
3: नहीं, अपने घर में मुझे क्या तकलीफ होगी?
1: आप साफ साफ क्यों नहीं बात कहते?
5: अब तुम ही कहो।
3: क्या बात है अनिल?
1: बात यह है बाबूजी कि सुनील को भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बांटनी चाहिए।
4: तो मैंने कब मना किया है? लेकिन भाभी आप खुद सोचिए, मैं माँ और बाबूजी को अपने साथ कैसे रख सकता हूँ?
5: हाँ ये तो सुनील ठीक कह रहा है, वो तो खुद अपनी ससुराल में रहता है।
1: तो इसीलिए ना मैंने एक नया अल्टरनेटिव सोचा है, आप बताते क्यों नहीं?
5: वो अपने गुप्ता जी है ना, उनके मकान में एक छोटा सा पोर्शन खाली है।
4: कौन गुप्ता जी?
1: अरे वही जो डॉक्टर कोहली के बगल में रहते हैं, यहाँ से कोई 3-4 मकान छोड़कर।
4: अच्छा अच्छा, उन्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बड़े शरीफ लोग हैं। उनका लड़का मेरे साथ हेमकाम में था, अब तो कहीं बाहर सेटल हो गया है शायद।
5: हाँ वही, हस्बैंड वाइफ दोनों अकेले हैं, इसीलिए ग्राउंड फ्लोर का कुछ पोर्शन किराए पर देना चाहते हैं।
4: कितनी जगह है?
1: अच्छी खासी जगह है, एक कमरा है, लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड, किचन कम स्टोर रूम है, और पीछे थोड़ा सा बरामदा है, और सर्वेंट क्वार्टर्स भी दिया हुआ।
4: तब तो ठीक है।
1: हाँ, हम लोग ये सोच रहे हैं कि बाबूजी को वहाँ शिफ्ट कर लें, पास के पास ही रहेंगे और उन्हें कंपनी भी मिल जाएगी।
4: हाँ आइडिया तो बुरा नहीं है, और जो कुछ खर्च होगा आपस में शेयर कर लेंगे, बंसी तो साथ में रहेगा ही, फिर हम लोग भी बराबर आते जाते रहेंगे।
1: हाँ तो बस यही फाइनल रहा, आज ही गुप्ता जी से सब बातें कर लेते हैं और अगले इतवार बाबूजी को।
3: खामोश, बिल्कुल खामोश हो जाओ। मैं पूछता हूँ तुम लोग होते कौन हो मेरे बारे में फैसला करने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ी ये सब कहने की?
1: अरे ये अचानक आपको हुआ क्या?
3: तुम चुप रहो, ये लोग अपने आप को समझते क्या है? मैं कोई लूला हूँ, लंगड़ा हूँ, या इनके दरवाजे पर खड़ा होकर इनसे भीख मांग रहा हूँ? ये कल के छोकरे चले हैं मुझ पर।
1: लीजिए थोड़ा पानी पीजिए और
3: हट जाओ, नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी। और इन सबसे कह दो अपनी अपनी चिंता करें, मेरे बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हूं अभी इस काबिल, रिटायर जरूर हो गया हूं लेकिन अपाहिज नहीं हुआ हूं।
1: आप तो बेकार ही इतना गुस्सा कर रहे हैं, बच्चों ने आपके आराम की बात सोचकर ही।
3: हाँ मेरे आराम की बात सोचकर, हाँ इन पर गुस्सा करने का जरूर मुझे कोई हक नहीं है।
1: हक क्यों नहीं है? हक तो पूरा है, पर बच्चे हैं, गलती हो गई।
3: नहीं सावित्री, गलती इनसे नहीं, गलती तो मुझसे ही हुई है।
1: आपसे? आपसे क्या गलती हुई?
3: मैं तो बहुत निश्चिंत हो गया था, सोचने लगा था कि मेरे पास तो एक नहीं दो दो जहाज हैं, ठोस लोहे के, खूब मजबूत और टिकाऊ, चाहे जितने बड़े तूफान आए मुझे किस बात का डर है। मेरी बाकी बची हुई जिंदगी का सफर तो इनके सहारे आसानी से पूरा हो ही जाएगा, लेकिन अब
1: आप तो बेकार ही परेशान हो रहे हैं।
3: नहीं सावित्री नहीं, अब तो लगता है कि जीवन भर अपने सपनों के छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर जो कुछ भी बना पाए हैं वे हैं सिर्फ कागज की नाव है, कागज की नाव है। कमजोर और बेजान ये किसी को क्या सहारा देंगी? अरे ये तो खुद औरों की मोहताज हैं।
5: बाबूजी, हमारा ये मतलब नहीं था।
3: नहीं रहने दो, अब मुझे कुछ मत समझाओ, मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं कि तुम लोगों के लिए रिश्तों का मतलब सिर्फ मकान के बाहर टंगी हुई नेम प्लेटें हैं, जिन्हें जब तुम चाहो फालतू समझकर बड़ी आसानी से कहीं भी फेंक दो।
1: बच्चों से ऐसे नाराज होना आपके लिए ठीक नहीं है।
3: नहीं सावित्री, मैं इन लोगों से बिल्कुल नाराज नहीं हूं, इन्होंने तो ठीक समय पर मेरी आंखें खोल दी हैं, मैं तो इनका बहुत एहसान मंद हूं। आज तक जो भी कुछ मुझसे हो सका मैंने अपना फर्ज समझकर इन लोगों को किया, लेकिन अब
1: तो आखिर आप चाहते क्या हैं?
3: अनिल से कहो वो अपना दूसरा इंतजाम कर ले, 15 दिन का वक्त देता हूं, ये घर अभी मेरा ही है।
1: ये कैसा फैसला कर रहे हैं आप? अनिल कहां जाएगा और हम लोग भी बच्चों को छोड़कर कैसे रहेंगे?
3: अगर तुम्हें मेरा फैसला मंजूर नहीं है तो तुम बहुत खुशी से बच्चों के साथ रह सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं।
1: ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब इस बुढ़ापे में आपको अकेला छोड़कर मैं?
3: अच्छा तो ठीक है, अटैची लगा लो, हम लोग अभी इसी वक्त आनंद के पास चलेंगे। बंसी, ओ बंसी, जा टैक्सी बुला ला।
5: बाबूजी, हमें माफ कर दो बाबूजी।
3: नहीं अब बिल्कुल नहीं, मेरे घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए तो हमेशा पहले की तरह ही खुले रहेंगे, लेकिन अब दोबारा अंधे बनकर हम अपने आप को कागज की नावों के हवाले नहीं कर पाएंगे। पता नहीं इन

भूल ही होती सांसों का। अभी और कितना सफर बाकी होगा, फिर ये नाव कौन हमें किनारे तक पहुंचा देंगी? आखिर तो मझधार में ही छोड़कर चली जाएंगी ना हमें ये कागज की नाव। सावित्री चलो उठो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरोहर, जिसमें आपने सुना कागज की नाव, और अब प्रस्तुत है श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं, मनभावन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी साथियों को प्रीति का नमस्कार। कार्यक्रम में पहली शब्दावली हमें प्राप्त हुई है गांधी समाधि रोड से हाजी गफ्फार खां, रजिया खान, सिमरन खान, जिन्होंने लिखा है, बीवी उस वक्त तक अच्छी नहीं कहला सकती जब तक शौहर उसकी तारीफ ना करे। शौहर भी तब तक अच्छाई का दावा नहीं कर सकता जब तक बीवी उसे खुश ना हो। इसी तरह सास, बहू, देवर, भाभी, नंद, दीगर रिश्ते एक दूसरे की तारीफ के मरहूने मन्नत हैं, सिवाय माँ बाप के, जिन्हें राजी करने का हुक्म खुदा ने सादर रखा है। मगर हर बंदे की तारीफ इंसान की कसौटी पर करनी चाहिए, ना कि जाति स्वाब दीद और जाति अर्ज के लिए। बेहतर है दूसरों की तारीफ ओ तक तनकीद सुनने की बजाय खुद को इंसान की कसौटी पर परखते रहें। फिर यूं होगा कि बुराई नजर आती रहेगी और दूसरों की बुराई करने से आप बच जाएंगे। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि अपनी अपनी बीवी पर सबको गुरूर है। आइए अब सुनते हैं इन्हीं की शब्दावली पर आधारित ये प्यारा सा नगमा।

लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ।

श्रोताओं, अब वक्त है उस फरमाइश का जो सीधे दिल से दिल तक हमारे पास पहुंचती है, और हमारी अगली फरमाइश शब्दावली हमारे तक भेजी है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी ने। इन्होंने लिखा है, आज मौसम कितना खुशगवार हो गया, खत्म सभी का इंतज़ार हो गया, बारिश की बूंदें कुछ ऐसी गिरी ज़मीन पर, ऐसा लगा फलक को ज़मीं से प्यार हो गया। भीषण गर्मी के बाद आज आकाश में उमड़ते काले बादलों ने जहां गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों के चेहरे पर खुशी से झूम उठे हैं। मौसम के बदलते ही लोगों की उम्मीदें भी बदल गई हैं। बारिश के आते ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। बरसात के मौसम में हमें चाहिए कि हम कहीं भी पानी जमा ना होने दें और साफ सफाई का खास ख्याल रखें। आइए इसी शब्दावली के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

हमारे अगले श्रोता हैं जिन्होंने अपनी शब्दावली हम तक भेजी है, राजद्वारा कोठी अफसर आला रामपुर से रूमा खां बॉबी सुभान मदीहा गुलफशा जीनत अमान शबनम शमा परवीन, इन्होंने लिखा है।

इसी के साथ दोस्ती पर ही अपनी शब्दावली हमें भेजी है सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशानवार सी करूला मुरादाबाद से अयूब खान जी ने। इन्होंने लिखा है, दोस्ती वह अनमोल रिश्ता है जो दिलों को मोहब्बत भरोसे और अपनेपन की डोर में बांध देता है। सच्चा दोस्त हर खुशी में मुस्कुराहट और हर मुश्किल में हौसला बनकर साथ खड़ा रहता है। रिश्ते तो कई बनते हैं लेकिन सच्ची दोस्ती वही है जो हर वक्त हर इम्तिहान में अपनी मिठास और अपनी वफादारी को कायम रखे। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा दोस्ती पर गीत हमारे प्यारे से श्रोताओं की शब्दावली पर।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित। हमारे पास अगली शब्दावली आई है मुंबई से अनु शमशूल और अनुराग बिनारा की। इन्होंने लिखा है, भारतीय सेना के जवानों को हमारी राष्ट्रपति सम्मानित कर रही हैं, उन पर चंद पंक्तियां पेश हैं। वक्त के वतन के रखवालों

का मान बढ़ रहा है, राष्ट्रपति के हाथों वीरों का सम्मान हो रहा है। वीर जवानों पर, ये वीर जवान माइसन डिग्री में सियाचिन की बर्फ पर तिरंगा तान कर खड़े रहते हैं, तपती रेत में भी हमारी रक्षा करते हैं। हमारे देश की असली शान यही है। त्यौहार उनके लिए सिर्फ ड्यूटी है। परिवार का मतलब 140 करोड़ हिंदुस्तानी है। जब हम घर में चैन की नींद सोते हैं तब ये जागकर हमारी रक्षा करते हैं। इनकी वर्दी पर लगा एक सितारा बताता है कि आज़ादी की क्या कीमत होती है। सलाम है उन वीर जवानों को जिनकी बदौलत हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। ना खौफ मौत का, ना परवाह जान की, बस फिक्र है तो हिंदुस्तान की। आज वीरों को मिल रहा है सम्मान, यही तो है असली पहचान बलिदान की। जय हिंद, जय जवान।

0: हम आकाशवाणी रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब अगला प्रसारण आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि चार दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
3: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मिनीवेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:05 हुए हैं। अब सुनिए कुछ सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में।

हमारी पहली सूचना। प्रभारी निरीक्षक थाना बहजोई जिला संभल हमें सूचित करते हैं कि अजय पुत्र श्री बूरेलाल निवासी बहजोई संभल विगत 17/5/2026 से लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 21 वर्ष है। इनका रंग गोरा, कद 5 फीट और चेहरा लंबा है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना बहजोई जिला संभल मोबाइल नंबर 9219713377। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 9219713377।

हमारी अगली सूचना में प्रभारी निरीक्षक थाना धनारी जिला संभल हमें सूचित करते हैं कि नूर बानो पुत्री श्री निवासी थाना धनारी संभल विगत 3/4/2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 14 वर्ष, रंग गोरा, कद 5 फीट और चेहरा गोल है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना धनारी जिला संभल मोबाइल नंबर 9450441718। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 9450441718। सूचना समाप्त हुई।

0: आइए सुनते हैं अब एक जरूरी संदेश।
1: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
2: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
1: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
2: आपातकाल में साथ निभाए,
1: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए
2: 112।
1: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
2: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
1: यदि चाहिए पुलिस सहायता
2: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
1: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
2: मिटाकर हर सस्पेंस को
1: डायल 112।
2: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
1: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
2: कॉल 112, SMS करें या पैनिक बटन दबाएं,
1: या फिर भेजें ईमेल always use 112 इंडिया मोबाइल ऐप।
2: जब घेरे कोई भी आपदा,
1: तुरंत मिले सहायता
2: डायल 112।
1: चिंता से पाएं छुटकारा,
2: पुष्पा झुकेगी नहीं,
3: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।
4: जल के बिना तो जल जाओगे, पानी की एक बूंद बिना तुम कैसे प्यास बुझाओगे।
2: कीमत समझो पानी की अब, वरना फिर पछताओगे।
5: रिश्ते नाते पीछे होंगे जब जल की होगी मारा मारी, रुपयों से भी जल न मिलेगा, जल की होगी पहरेदारी।
2: जल है तो कल है,
5: यही चिंतन पल पल है।
6: पानी को बचा कर रखिए, इसका सदुपयोग कीजिए।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:10 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम गीत आपके नाम।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और प्यार भरा अभिनंदन। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा फरमाइशी कार्यक्रम गीत आपके नाम, जहां हर गीत किसी ना किसी श्रोता के दिल की आवाज बनकर हम तक पहुंचता है। आपके प्यार भरे ईमेल इस महफिल की असली रौनक हैं। आपकी पसंद, आपकी भावनाएं और आपकी फरमाइशें ही तय करती हैं कि आज कौन सा गीत बजेगा। तो आइए शुरू करते हैं सुरों के इस

0: खूबसूरत सफर को, और मिलते हैं आज के पहले श्रोता के ईमेल से जिन्होंने हमें बड़े प्यार से अपनी फरमाइश भेजी है। तो पहली फरमाइश गीत की है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, निरौनी अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी जी ने, और ये इन्होंने भेजी है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। अगली फरमाइश करता है हमारे जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रूपेश, महेश, प्रज्ञेश, प्रतेश और पूरा संघही परिवार, जिला खंड गौन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोर्डाना और सुदामा नगर खांडवा से, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगदाब। अगली फरमाइश करता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, रामगंज खांडवा मध्य प्रदेश से विजय, कविता, विशाल, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू, कोल सिटी बरकान से अफजलताज, शाहीन सुल्तान, सोनू तस्नीम, निप्पी सहानी और मोहम्मद अफजर मलिक। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम और कार्यक्रम के अंतर्गत अगली फरमाइश की है आप सभी श्रोताओं ने। सब्जी मंडी बुल्डाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मज्जू बाबा, आयजा अनम, मुदस्सिर हुसैन। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। इसी के साथ अगले फरमाइश करता है हमारे ममता, संजय और बेबी, यह हैं बड़ा बमचौक खांडवा मध्य प्रदेश से। सौराष्ट्र राजकोट से जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण। बक्सर बिहार से शराफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम आदिबा और दानिश अंसारी। गोल बाजार बक्सर से श्रद्धा, अभयनंद आर्या और परमानंद आर्या। सारीमपुर बक्सा से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मैंने प्यार किया का ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश की है आप सभी श्रोताओं ने। ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम कुसुन नेताम। वडिकखेड़ा पंजाब से मिंटू पिंकी और आरती अरोड़ा। नाभा जिला पटियाला पंजाब से ज्योति रानी गुरमंत कौर मनु

दीप सिंह, कालका से शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज, साथ ही हैं इनके बिट्टा बजाज। भोपाल राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार। संबलपुर कंकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। करणवीर हाउस बूचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दीपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजोत। शीशगढ़ बरेली से इलियास इद्रीसी, नाजरा इद्रीसी, नाइमा इद्रीसी, नदीम इद्रीसी और असद बाबू। हिंदुस्तान रेडियो मित्र परेटा टीमगढ़ से ब्रजेश, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। ग्राम टंगोरी जिला मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह टंगोरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह। मूकचक भगाला बिहार से दिलीप कुमार सोनी। गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीम सुहान अरजान और अबान अब्बासी। पताला नाका इंदौर मध्य प्रदेश से हसीन बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद राफिक मंसूरी। जलंधर से अमरजीत कौर सोनम, परमजीत आसमा कौर और हरमजीत फातिमा कौर। पार्क दिल्ली सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, रूमा खान, मादिया खान, सुभान खान और फिरोज खान। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में हम है राही प्यार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश की है सनावत से शेख मूसा मोहसिन ने। इसी के साथ और हमारे फरमाइश करता हैं बोरखेड़ा प्रीतामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद नेहा दीपक चेतन दीक्षा। इसी के साथ ताज मोहम्मद अंसारी।

इसी के साथ टैगोर गार्डन, नई दिल्ली से राजेंद्र रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और साथ ही में हैं इनके स्वीटी छाबड़ा। आइए, आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सिलसिला फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसको अपनी आवाज़ से सजाया है अमिताभ बच्चन ने।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

अहमदपुर के गांव खांडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समन फूलमाली और वैदिका फूलमाली। फ्रेंड्स करौली करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जी एस रामगढ़िया। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और रसीद वारसी। कस्बा बड़ादा ज़िला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। इसी के साथ ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश। आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तुम बिन का ये गीत, जिसको अपनी आवाज़ दी है जगजीत सिंह ने।

और कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर जिला अमरोहा नई बस्ती पेतई खालसा से बारूल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी, शिवान सिद्दीकी, बिटिया आलिशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी और मोहम्मद यासीन अंसारी, सुरेश चौहान और अनाव्यास सिद्दीकी। नसीब रेडियो श्रोता संघ नागाचुन रोड संजय कॉलोनी खांडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल डक डावर जियालुद्दीन हक भाटापारे छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी, जलालबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशी और निमित अहूजा, मरहारा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और रसीद वारसी। पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघड़कर, दिशांत कुमार सिंघड़कर और अर्पिता जी। इसी के साथ नारायण गायकवाड़ दयानंद, ओम गायकवाड़ संघ, ओम रेडियो श्रोता संघ महाराष्ट्र से थे। आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: दी, नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दी,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: मिनीवेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब आप अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिए।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है, जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
7: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है। तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
6: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
8: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
6: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा

0: है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 2.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

0: आज दोपहर 1:15 पर आप तक पहुंचेगा कार्यक्रम परिवार जगत, जिसके अंदर ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाएंगे सुनीता और प्रेरणा। चर्चा रहेगी काम और निजी जीवन का संतुलन, साथ ही वार्ता रहेगी परिवार के किशोर सदस्यों की स्वास्थ्य सुरक्षा, इसी के साथ में क्षेत्र संकलित रिश्तों की हिफाजत और साथ ही कुछ हेल्प टिप्स। शाम ठीक 5 बजे अब तक कार्यक्रम पहुंचेगा युववाणी। 5:45 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। इसी के साथ 6:30 पर रहेगा इंग्लैंड में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत और बीच खेले जाने वाली पहली सेमीफाइनल क्रिकेट टीम का मैच। ये था आज का कार्यक्रम विवरण। आइए सुनते हैं अब कुछ जरूरी संदेश।
1: नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ जी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: मम्मी मम्मी कहाँ हो? जरा एक गिलास पानी तो पिला दो, आज तो थक गया स्कूल से आते आते।
1: अभी लाई।
2: अरे ये क्या शोर तो इतना मचा रहे थे और ये आधा गिलास पानी भी नहीं पिया, क्या करूँ इस बचे हुए पानी का?
0: तो क्या हुआ मम्मी, जितना पीना था पी लिया, बाकी फेंक दो, कौन से पैसे लगे हैं? पानी है, कोई सोना थोड़ी है।
2: पानी का मोल समझ मेरे बच्चे, अगर हम इसी तरह पानी बर्बाद करते रहे तो आने वाले समय में तरस जाएंगे एक बूंद पानी के लिए, और तब समझ आएगी पानी की कीमत।
3: जी हाँ, जल बचाएं और बचाएं अपने कल को। बूंद बूंद से भरती गागर, पानी का प्रयोग जरा संभल कर। पानी अर्थात जीवन, और संरक्षण अर्थात भविष्य।

0: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने वाले हैं। अब आप अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से सुनिए।
2: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर के मिलक और बिलासपुर असेंबली हलकों में 690 करोड़ रुपए से ज्यादा के 102 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा,
3: विरासत को सम्मान देकर के कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बन रहा है।
2: अयोध्या में श्रीराम मंदिर के नजराने में मुबैना बेजाब्तगियों के इल्जाम में गिरफ्तार 8 अफराद को 14 दिनों के लिए अदालती हिरासत में रखने का हुक्म दिया गया है। केस की समाअत कल अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रजत वर्मा के सामने हुई। तमाम मुलजमीन को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। फिलहाल पुलिस ने मुलजमीन का रिमांड तलब नहीं की है। इस मामले की अगली समाअत 13 जुलाई को होगी। इस दौरान अयोध्या बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी वकील इस मामले में नामजद मुलजमीन की नुमाइंदगी नहीं करेगा। दरी असना सुप्रीम कोर्ट ने कल एक मफाद आम्मा की अर्जी की फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया, जिसमें श्रीराम मंदिर भूमि तीर्थ

0: मौके पर मुरादाबाद में मुनक्किद एक प्रोग्राम में 365 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वजीर आला ने मगरबी उत्तर प्रदेश की पहली डिजिटल जंगी यादगार त्रिशूल इंडियन डिफेंस म्यूजियम का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने मुरादाबाद में तरक्याती कामों, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर और महकमा तामीरात आम्मा के एक्शन प्लान के ताल्लुक से एक डिवीजनल जायजा मीटिंग में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। रियासती हुकूमत ने ई रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल से मुतालिक अपने साबका हुक्म को फौरी असर से मनसूख कर दिया है। स्टैंप और कोर्ट फीस व रजिस्ट्रेशन के वजीर ममलिकत रविंद्र जायसवाल ने कहा कि यह फैसला एडवोकेट और डीड राइटर्स की खदशात और मफादात की रोशनी में किया गया है।
1: स्टाम्प विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीव जारी किए गए 4/6/2026 को इस जीओ में थोड़ी सी क्रिएटिव न होने के कारण से एक भ्रम स्थिति बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि शायद हमारा रोजगार छीन जा रहा है, और इस भ्रम को से हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था उसको हम निरस्त करते हैं।
0: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE

0: तीस घंटों में रियासत के कुछ अजला में हल्की से दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई। पीलीभीत जिले में कल रात से हो रही बारिश से वहां के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गोरखपुर समेत कुछ दूसरे अजला में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दो रोज में रियासत में मानसून की पेशकदमी के लिए हालात साजगार हैं। महकमा ने आज रियासत के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 1:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम परिवार जगत और ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं सुनीता और प्रेरणा।

0: परिवार जगत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रेरणा गुप्ता का स्नेह भरा नमस्कार।
1: और साथ ही सुनीता सिंह का भी प्यारा सा नमस्कार। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। और देखिए, अब बारिश थोड़ी हल्की हल्की हो रही है, तो शायद दिल से ये खुशी भी होगी कि शायद थोड़ी सी गर्मी से निजात मिली, क्यों प्रेरणा? क्योंकि रात से थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, और ऐसे ही ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसे ही होती रहेगी, और जो गर्मी है उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखिए।
0: सुनीता जी, आजकल लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार, दोस्तों और खुद के लिए तो समय निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या सही है, यही जीवन शैली है?
1: अरे नहीं नहीं प्रेरणा भाई, ये सही नहीं है। और काम करना बहुत ज़रूरी है, जीवन में व्यस्त रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी जिम्मेदारियां पूरी होती हैं और भविष्य सुरक्षित बनता है। लेकिन अगर हम सिर्फ काम ही करते रहे और अपने स्वास्थ्य पर और अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया, उनको नज़रअंदाज करते रहे, तो इसका सीधा असर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।
0: जी श्रोताओं, सुनीता जी बिल्कुल सही कह रही हैं। आज यही हमारी चर्चा का विषय भी है, काम और निजी जीवन का संतुलन। एक अच्छा संतुलन हमें तनाव से दूर रखता है, जिससे हम अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं, अपने काम को बेहतर कर सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा प्रेरणा। आज लोग अपने करियर की आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करना एक अच्छी बात है, लेकिन जब काम इतना बढ़ जाए कि परिवार, स्वास्थ्य और अपनी खुशियां पीछे छूट जाएं, तब तो सोचने की ज़रूरत होती है, और इस पर हमें सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल, मान लीजिए एक व्यक्ति सुबह 8 बजे घर से निकलता है और रात 10 बजे लौटता है। उसके बच्चे पूरे दिन उसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो इतना थका हुआ होता है कि उनसे दो बातें भी नहीं कर पाता।
1: बिल्कुल,
0: इससे क्या है, धीरे धीरे घर में तनाव हो जाता है। आर्थिक रूप से तो सफल हो गया, लेकिन क्या सच में वह खुश है?
1: वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसा भी है जो पूरे मन से काम करता है, लेकिन शाम को कुछ समय परिवार के साथ बिताता है, बच्चों की बातें सुनता है, माता पिता का हाल पूछता है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है। यही है सही वर्क, सही लाइफ बैलेंस।
0: मैं उन विद्यार्थियों से कुछ पूछना चाहूँगी जो पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन अगर हम खेलना, आराम करना और परिवार से बात करना छोड़ दें, तो यहाँ सिर्फ तनाव ही रह जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा प्रेरणा। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कई बार छुट्टी के दिन भी ऑफिस के ईमेल, कॉल्स में व्यस्त रहते हैं, और ऐसे में परिवार के साथ बिताने वाले अनमोल पल छूट जाते हैं।
0: इसलिए कुछ छोटे छोटे नियम अपनाएं, खाना परिवार के साथ खाएं, रोज थोड़ा समय अपने परिवार के लिए जरूर निकालें, छुट्टी के दिन काम से थोड़ा विश्राम लें और अपनों के साथ खुलकर हंसिए बोलिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और खुश रहना, अच्छा स्वास्थ्य और परिवार का साथ बेहद ज़रूरी है। अगर हम कुछ समय अपने परिवार के लिए निकालते हैं, उनके सुख और दुख में शामिल होते हैं और

0: बच्चों से उनकी परेशानियों के बारे में पूछते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, तो बच्चे भी खुलकर माता पिता का बात करते हैं, माता पिता का साथ देते हैं, उनसे बात करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमें अपने बच्चों के स्वास्थ्य का भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। आज इसी विषय पर विस्तार से जानकारी के लिए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भेंट वार्ता, जिसका विषय है परिवार के किशोर व सदस्यों की स्वास्थ्य सुरक्षा। डॉक्टर एम के गुप्ता से भेंट कर वार्ता करेंगे हमारे असीम सर।
2: श्रोताओं, परिवार वो इकाई है जिसमें हमारा अधिकांश समय बीतता है, जिसके प्रबंधन में हम बहुत सारा समय बिताते हैं। परिवार की एकजुटता, परिवार की खुशहाली हम सभी के जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। यहाँ तक कि हम कमाते भी हैं तो वो भी परिवार के लिए, और सब कुछ परिवार को समर्पित होता है। परिवार में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारी अवस्थाओं के लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, युवा भी होते हैं, युवतियाँ भी होती हैं, और फिर परिवार खुश रहे ये स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। हम समय समय पर परिवार के विभिन्न सदस्यों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। आज बात करेंगे किशोर, युवक और युवतियों के स्वास्थ्य पर। ये दौर वो दौर है जब आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है, शारीरिक संरचना में बदलाव होता है, हमारी सोच बदलती है, हमारा दायरा बदलता है, सामाजिक बदलाव भी होते हैं, और हम कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो युवावस्था की दहलीज पर दाखिल हो रहे होते हैं, तो कुछ भावनात्मक परिवर्तन भी स्वाभाविक हैं। पोषण, शिक्षा, परामर्श और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस विषय पर युवाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या ऐसे विषय हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए, स्वयं युवाओं के द्वारा भी और परिवार के सदस्यों द्वारा भी, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एम के गुप्ता। आप रामपुर के जाने माने चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो किशोरावस्था की हम बात करते हैं, किशोर युवकों की बात करते हैं, किशोरियों की बात करते हैं, तो इसको चिकित्सकीय दृष्टि से किस तरह से देखा जाता है?
3: जो हमारी किशोरावस्था होती है इसको हम मुख्यतः तीन पार्ट में बांट सकते हैं।
2: जी,
3: जो 11 वर्ष शुरुआत हो जाती है,
2: टीन एज से,
3: टीन तो हम मानेंगे 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक, जहाँ 13, 14, 19 लग गया वो 13, हम अंग्रेजी भाषा कहते हैं टीन एज, वो 13 से लेकर 19 तक वो टीन एज कहलाती है। तो इसमें शुरुआत से मानते हैं 11 से 14 वर्ष जो होती है शुरुआत की किशोरावस्था हो गई। उसके बाद 15 से लेकर 17 वर्ष तक की आयु ये मध्यम की किशोरावस्था हो गई, और 17 से लेकर 21 साल तक ये किशोरावस्था की बाद की अवस्था हो गई जिसमें व्यस्त शुरू हो जाती है। तो इसमें शरीर शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा चेंज आती है। ये होता है हमारे जो शरीर में हार्मोन चेंज होते हैं, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन की जो चेंज होती है उसकी वजह से सब होता है।
2: तो डॉक्टर साहब, जब ये हार्मोनल परिवर्तन होते हैं तो कुछ बदलाव भी महसूस करता होगा व्यक्ति अपने भीतर?
3: जी, भीतर भारीपन होता, आवाज़ का भारीपन होना, बालों का उगना, ये तो शारीरिक रूप से दिखते हैं। उसके अलावा जो व्यवहार जो परिवर्तन आता है बिहार के अंदर, उसमें सोच बदलती है, बच्चा थोड़ा सा कभी कभी सबमिसिव होता है ना,
2: जी।
3: तो उसके जो भावनात्मक रूप से उसमें परिवर्तन आते हैं।
2: अच्छा, ये अवस्था वो अवस्था है जब इस परिवर्तन को जो शरीर के अंदर कोई किशोर या किशोरी देखती है तो बहुत चिंतित भी होती है, और शारीरिक रूप रंग को लेकर और आकर्षण को लेकर, इसको लेकर चिंता भी होती है, व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। तो आपने क्या महसूस किया है कि किस तरह से व्यवहार का परिवर्तन उनके मानसिक स्तर को प्रभावित करता है?
3: जो इनकी सोच होती है, जैसे व्यक्ति कभी देखता है कि वह जो बहुत पतला व्यक्ति है वो अपने सोचता है थोड़ा मोटा हो जाऊँ
2: जी,
3: तो मोटा होने के लिए क्या होता है कि वो थोड़ा खाने में अपनी मात्रा बढ़ाता कि मैं मोटा हो जाऊँ, देखने में अच्छा लगूँ। जो बहुत ज़्यादा मोटे व्यक्ति है वो थोड़ा डाइटिंग करने लगता है, इसके चक्कर में है वो ज़्यादा पतला हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है अपना खाने पीने का बड़ा विशेष ध्यान रखना है। खाने पीने में क्या है, जंक फूड मत खाइए, और कभी तुलना मत कीजिए एक दूसरे से कि वो मोटा है तो मैं उसकी तरह मोटा हो जाऊँ, ये वो पतला है तो उसकी तरह मैं पतला हो जाऊँ।
2: अच्छा, जो पतले युवा हैं या जो अपने शारीरिक बनावट के प्रति ज़्यादा आकर्षित हैं और उस पर बल देते हैं, तो वो प्रोटीन का या फिर और फूड सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं, तो ये फायदेमंद है या नुकसान?
3: जो सामान्य प्रोटीन है, जो हमारे भोजन से प्रोटीन मिलती है, वो हमारे लिए ठीक है, लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट जो अलग से लिए जाते हैं, या लोग कुछ लोग अपनी बॉडी को मसल्स बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं है, वो शरीर के लिए नुकसानदेह हैं। लोग जिम जाते हैं ठीक है, कसरत करना अच्छी बात, व्यायाम करना अच्छी बात, लेकिन उसके साथ में स्टेरॉइड लेना
2: जी
3: या ऐसी प्रोटीन लेना जो वो नुकसानदेह शरीर को, वो गलत है। जो भोजन से प्रोटीन मिल रही है वहाँ लिए ठीक है।
2: अच्छा, तब दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलते क्या आगे जाके जीवन की किसी अवस्था में इन सब चीज़ों के दुष्प्रभाव
3: जी? इसका सबका इसका नुकसान होता है, लंबे समय तक सेवन करने से इसका नुकसान होता है, इसलिए इन प्रोटीन से और इस तरह के स्टेरॉइड से इससे बचना चाहिए, ये हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ है।
2: ये अवस्था वो अवस्था है जब हम अपने समाज को देखते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो बुरी आदतें जल्दी असर कर जाती हैं, नशीले पदार्थों की ओर झुकाव भी देखा जाता है, खासतौर पर किशोरों का।
3: आजकल एक परिवार हो गए हैं, पता चला माता पिता दोनों जॉब कर रहे हैं या बच्चों को समय नहीं दे पा रहे अभिभावक, तो उससे परेशानी क्या रहती है, बच्चों का रुझान इन चीज़ों की तरफ बढ़ जाता है, प्लस जो लोग समाज में देखते हैं ना फिर उसी को वो फॉलो करते हैं। तो पहले लोगों ने देखा कि हाँ नशे कर रहे हैं लोग, आजकल लोग अपने जो भी हीरो हीरोइंस हैं इनको बड़ा फॉलो करते हैं।
2: जी जी।
3: तो जो भी समाज में हमारे इस तरह के लोग होते हैं इनका भी सबसे ये है कि कुछ भी काम ऐसा करना है उनका, क्योंकि उनकी ज़्यादा वो होती है समाज में पहुँच, तो वो ऐसा करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बलवर्धक औषधियाँ भी आती हैं जो कई विज्ञापनों में प्रचारित की जाती हैं कि इनका सेवन करिए आपके अंदर एनर्जी रहेगी, तो इस तरह के जो प्रचार हैं उनसे किस तरह से सावधानी की ज़रूरत है?
3: इनकी किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं रहती, विशेष रूप से जो अपना भोजन पोषक पदार्थ हैं, प्रोटीन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, कैल्शियम हो गया, ये सब चीज़ों का सेवन करें। मान लो हम ये चीज़ खाना है तो हमें अलग से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो जो हमारा भोजन से मिल रहा है सब सब चीज़ें, भोजन से, फलों से, सब्जियों से, वो अपने हमारे भोजन में पूर्ण कर देगा।
2: अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए डॉक्टर साहब क्या कुछ किया जाना चाहिए, एक चिकित्सक के तौर पर आप क्या बताएंगे?
3: देखिए, ये तो जो हार्मोन चेंज होगी ये सब एज में, ये सब एज रिलेटेड है
2: जी।
3: इसमें हमें मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए क्या करना है, अपना हमें योग, प्राणायाम, ये सब करने से क्या होगा, हम मानसिक रूप से मजबूत होंगे। हमारा जो सर्किल है वो अच्छा होना चाहिए, अपनी बातों को शेयर करना चाहिए, साथ के दोस्त हैं जो अपने मन की बात बताएंगे, जो हमारे अच्छे मित्र होंगे वो हम उसका समाधान करेंगे, जो हमारी कोई परेशानी है। अपने माता पिता से हमें अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, हम माता पिता से शेयर करेंगे तो हमारे माता पिता हमारे लिए जो सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं वो हमें अपनी सही दिशा देंगे।
2: अच्छा, घर में बच्चे हैं, किशोर हैं, किशोरियाँ हैं, तो माता पिता का भी कुछ दायित्व बनता है कि उनकी अंदर जो जिज्ञासा है उसका समाधान करें, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन को लेकर हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति को लेकर हो, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है क्या?
3: जो माता पिता, जैसे बच्चों की एज बढ़ रही है, टीन एज है, किशोरावस्था है, इसमें माता पिता बच्चों के गार्जियन तो नहीं है, साथ में उसका व्यवहार मित्र जैसा होना चाहिए। जो बेटियाँ हैं वो अपनी सारी बातें अपनी माँ को बता दें, जो माँ उसके ऐसे मित्र की तरह व्यवहार करके उसकी सारी शंकाओं का समाधान कर सके, ऐसे ही पिता भी अपने बेटे के साथ, है ना, या अपनी बेटी के साथ जो उनकी शंकाएं हैं उनका सबका समाधान करे।
2: कुछ विद्यालयों में आयरन की टेबलेट्स दी जाती हैं खासतौर पर किशोरियों को, उनका क्या फ़ायदा होता है, और ये जो एनीमिया की समस्या अक्सर देखने में आती है इसमें कितना निदान हो सकता है?
3: एक तो जैसे जो हमारे हमारे घर में जो भोजन पका रहे हैं और पोषण वाला अच्छा है, उसमें आयरन की मात्रा अच्छी ठीक है तब तो ठीक है। घर में लड़कियां हैं उनको ऐसे ही मासिक धर्म के नाते भी उनका ब्लड लॉस रहता है, तो उनका आयरन की गोली खाएंगे तो उनका जो ब्लड की कमी है वो पूरी होगी। हरी सब्जी है, फल सफल, इसके अलावा आयरन लेने से उनका जो ब्लड है वो कम नहीं होगा और वो जो एनीमिया की समस्या से दूर रहेंगी।
2: अच्छा, इस एज में लोग डॉक्टर के पास जाकर खुले मन से अपनी समस्याएँ नहीं बता पाते हैं, चाहे वो शारीरिक समस्याएँ हों या फिर स्वास्थ्य की जुड़े हुए विषय हों, तो बचते हैं, परहेज करते हैं, आपकी क्या सलाह है?
3: ये जो समस्याएं हैं बड़ी सामान्य समस्याएं हैं, और अब ये समस्याएं जो डॉक्टर से रिलेटेड हैं उन्हें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और अपने मन से खुल के बताना चाहिए, क्योंकि जो कोई सच्ची समस्या होगी तो उसका समाधान हो जाएगा। और कुछ जो ऐसे मन की बातें हैं जो वो अपने दोस्तों से शेयर करनी चाहिए, डॉक्टर से शेयर करके क्या होगा, जो आपके कोई जिज्ञासा है या कुंठा है वो आपसे सब दूर हो जाएगी और आपको सही उसका समाधान मिल जाएगा।
2: आपने कुंठा की बात की डॉक्टर साहब, तो ये अवस्था वो अवस्था है जब बहुत सारा दबाव भी होता है किसी भी किशोर या किशोरी पर, एक तो अपने करियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, कुछ माता पिता की भी अपेक्षाएं होती हैं, कुछ वो अपने विद्यालय की समस्याएं उसके सामने आ जाती हैं, तो चिंता, अवसाद, डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, तनाव जिसे कहते हैं, ये सब चीज़ों से घेर लेती हैं और फिर वो दिमागी तौर पर बिल्कुल निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है, तो अपने इस सोच में वो किस तरह से मजबूती लाए?
3: एक तो हर बच्चा अलग है, हर बच्चा विशेष है, हम जो तुलना करते हैं जिस तुलना थोड़ी अच्छी नहीं है। कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है, कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, कोई बच्चा खेल में अच्छा है, कोई बच्चा आर्ट्स में अच्छा है, तो बच्चों को अपना वो पहचानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या प्रतिभा है, उसी को आगे लेकर बढ़ाना चाहिए। हम तुलना करेंगे कि वो बच्चा वो कर रहा है तो हम भी वैसे ही कर रहे हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर हम चाहते हैं हम जिस अवसाद से बचे रहे हैं, एक तो तुलना करना छोड़ें, माँ बाप से ये तो हमारा निवेदन है कि जितने माँ बाप हैं हमेशा बच्चों की तुलना करते हैं कि उसके बच्चे कितने नंबर आए, मेरे बच्चे के नंबर कम रह गए, ये ठीक नहीं है। हर बच्चा विशेष है, हर बच्चे की अपनी अलग प्रतिभा है। कोई हो सकता पढ़ाई में अच्छा हो, कोई बच्चा हो सकता खेल में अच्छा हो, कोई बच्चा हो सकता ड्राइंग में अच्छा हो, तो जैसे बच्चे की प्रतिभा है उस हिसाब से वो आगे बढ़ना चाहिए।
2: क्या इसमें डॉक्टर्स का भी कोई रोल हो सकता है?
3: डॉक्टर से ज़्यादा रोल जो है वो माता पिता का है। डॉक्टर तो अपने आपको काउंसलिंग करेंगे करेंगे,
2: जी जी
3: लेकिन माता पिता ऐसे मित्र की तरह अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचाने, तो उसमें आगे बढ़ने की उसको प्रेरणा दें।
2: अक्सर परिवारों में देखा जाता है कि जो किशोर हैं किशोरियाँ हैं वो जो हम चाय कॉफ़ी पीते हैं उसको लेकर कुछ परहेज करते हैं, कुछ की ये दीवानगी होती है चाय और कॉफ़ी के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स का भी चलन बहुत है समाज में, तो ये चीज़ें क्या नुकसानदेह हैं या फ़ायदेमंद हैं?
3: देखिए चाय और कॉफ़ी जो उसमें थोड़ा कैफीन होता है, तो कैफीन सीमित मात्रा में तो ठीक है, लेकिन इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी तो वो आपको फिर शिष्टापन पैदा करेगी। कोल्ड ड्रिंक के साथ तो परेशानी ये है, कोल्ड ड्रिंक में कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं होता, तो कोल्ड ड्रिंक को तो मेरा ये मानना है कि पीना ही नहीं चाहिए, और चाय और कॉफ़ी भी सीमित मात्रा में, क्योंकि चाय कॉफ़ी की और मात्रा बढ़ जाएगी तो फिर कैफीन ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आपको फिर नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन होगा, वो ठीक नहीं है।
2: डॉक्टर एम के गुप्ता, किसी भी इस अवस्था के युवक को या युवती को फिट रहने के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
3: प्राणायाम रोज करें, योग करें, पोषण जितने खाना हमारा भोजन है वो अच्छा होना चाहिए, जिसके अंदर पोषण की मात्रा सही हो, विटामिन हो, कैल्शियम्स हो, है ना, और अच्छा भोजन होना चाहिए।
2: अच्छा, जंक फूड की तरफ फास्ट फूड की तरफ बहुत झुकाव रहता है, घर से निकले और अपने किसी भी स्थान पर गए और पेट भर कर आ गए, फिर घर पर जो खाना बनता है उसको नहीं खाते हैं, तो ये एक टेंडेंसी आम है, हर घर में ये समस्या है।
3: जंक फूड के लिए तो मेरा विशेष रहा है ना ही है, ये तो कभी होता है कि आपने महीने एक बार खा लिया ठीक है, वैसे इसके इसलिए अवसर नहीं है, इसलिए नुकसान देता है कि एक तो इसमें तेल घी ज़्यादा मात्रा में होता है, ट्रांसफैट ज़्यादा होता है, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जैसे अजीनोमोटो
2: जी
3: वो पड़ा होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हानिकारक है। तो कोशिश करनी ये है कि हम जंक फूड से बचे ही रहें तो अच्छा है। घर का अपना जो भोजन है, अच्छा भोजन, साफ़ सुथरा भोजन, उसका सेवन करें, फलों का सेवन करें, दूध का सेवन करें, जिससे हमारे और जो आयरन वायरन की जो मात्रा अधिक होती है, हरी सब्जियों का, उसका सेवन करें।
2: और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है और पौष्टिक भोजन आपके पोषण के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इस अवस्था में आप शारीरिक परिवर्तनों के दौर से गुजरते हैं, तो बहुत सारे अन्य आवश्यक तत्व हैं जिनकी शरीर को ज़रूरत होती है, वो आपको लेने हैं।
3: और विशेष बात यह है बच्चे मन से खुश रहें
2: जी,
3: अपने मन में कोई ज़्यादा तनाव ना रहें।
2: हमारे श्रोताओं को आपने खासतौर पर जो किशोर वय के हमारे युवक हैं युवतियाँ हैं इनको आपने सलाह दी है, और कोई खास बात जो आप बताना चाहें?
3: सुबह उठना है, सही समय से सोना, नींद पूरी रखें अपना, ये नहीं कि पढ़ाई के नाते लोग नींद बहुत कम कर लेते हैं,
2: जी जी, जी।
3: वो भी ठीक नहीं है, हमारे 6 से 7 घंटे नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है, 6 से 7 घंटे जरूर सोना चाहिए।
2: और अधिक वजन की समस्या अगर है किसी को तो वो भी एक चिंता का विषय है, तो उसके लिए कई लोग खाना ही छोड़ देते हैं।
3: डाइटिंग भी ना करें और ओवर ईटिंग भी ना करें। डाइटिंग से क्या होगा कि आपको जो आवश्यक पोषक तत्व वो नहीं मिलेंगे तो और वजन आपका कम हो जाएगा, तो ना तो ओवर ईटिंग करें और ना ही डाइटिंग करें, अपना रोज एक्सरसाइज करिएगा, रोज टहलना जो भी हो सकता है वो जरूर करें।
2: डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत उपयोगी जानकारी आपसे मिली।
0: परिवार के किशोर वय सदस्यों की स्वास्थ्य सुरक्षा, ये था विषय भेंटवार्ता का, और डॉक्टर एम के गुप्ता से भेंट कर जानकारी ले रहे थे असीम सक्सेना। और अब प्रेरणा जी भाई, हम हमारी जो चर्चा है ना वो लगातार जारी रहेगी, तो अब क्या ख्याल है आपका?
1: अब हम बताते हैं हमारे परिवार में एकता, प्यार और सम्मान क्यों जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: सुनीता जी, जब परिवार में एकता, प्यार और सम्मान होता है तो परिवार फलता फूलता है। इसलिए हर व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष,
0: बिल्कुल
1: रिश्तों की डोर को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए, तभी रिश्ते मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा प्रेरणा। और श्रोताओं, आज क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता का विषय भी यही है, रिश्तों की हिफाजत कैसे करें, और पवन शर्मा से भेंट कर जानकारी प्राप्त कर रही हैं हमारी साथी प्रेरणा गुप्ता। तो आइए सुनते हैं ये क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता।
4: आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
5: नमस्कार प्रेरणा जी,
4: हम आपसे जानना चाहेंगे कि भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्तों की अहमियत क्या है?
5: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जो हमारा जीवन है वो बहुत ज्यादा व्यस्त हो चुका है, जिसकी वजह से हम अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, दोस्तों से दूर होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आजकल के जीवन में रिश्ते ही हमारी असली पूंजी हैं, क्योंकि पैसा और पद हमें सुख सुविधा तो दे सकते हैं, लेकिन अपनापन, सहारा, सुकून हमें सिर्फ रिश्ते ही दे सकते हैं, जो कि हम साथ मिलकर रह के बना सकते हैं।
4: जी बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर देखा जाता है कि व्यस्तता के कारण रिश्तों में दूरी आ जाती है। इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है?
5: रिश्तों में जो दूरी आती है वो आती है समय की कमी के कारण। जैसा कि आपने पहला सवाल पूछा था कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्तों की क्या अहमियत है,
4: जी
5: तो हमें अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में से रोज कुछ ना कुछ पल निकालकर परिवार के साथ में बिताने जरूरी हैं, क्योंकि छोटी सी बातचीत, गेट टुगेदर, साथ में बैठ के एक टाइम का भोजन करना, आपस में सबका हाल चाल पूछना, यही छोटी छोटी बातें हैं जो रिश्तों को गहराई दे सकती हैं।
4: रिश्तों में सबसे बड़ी मजबूती किससे आती है?
5: रिश्तों की मजबूती का सबसे बड़ा पहलू है विश्वास, और आपस में जो हम बातचीत करते हैं, जैसे संवाद कहते हैं,
4: जी।
5: उसी से ही आ सकती है, और रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहता है।
4: और अगर किसी रिश्ते में कोई गलतफहमी या विवाद हो जाए तो उसे भी बातचीत के द्वारा हम संभाल सकते हैं।
5: हाँ बिल्कुल, जब तक आप अपने आमने सामने बैठ कर एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे की बातों को समझेंगे नहीं, उस पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक रिश्ता कैसे मजबूत रह सकता है? एक दूसरे की बातों को समझने का ही नाम रिश्ता है।
4: आप हमारे श्रोताओं को रिश्तों की हिफाजत को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे?
5: रिश्तों की हिफाजत आजकल की जो युवा पीढ़ी है
4: जी
5: उन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है,
4: जी बिल्कुल
5: क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हर युवा के हाथ में आपको मोबाइल दिखेगा, लैपटॉप दिखेगा, बिना उसके कोई वर्किंग नहीं है। वो बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल सारी वर्किंग ऑनलाइन ही होती है ऑलमोस्ट, क्योंकि AI का टाइम है, लेकिन जब तक वो कुछ समय अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए बिना सोशल मीडिया के नहीं निकालेंगे, तब तक रिश्ते पूरी तरह निभ नहीं पाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से हाय हेलो तक की ही सीमित रह सकता है आदमी। जब तक एक दूसरे से जाके मिलेगा नहीं, एक दूसरे के घर आएगा जाएगा नहीं, तब तक वो दूरियां बनी ही रहेंगी। इसलिए आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसे भी चाहिए कि वो कुछ समय मोबाइल छोड़ के अपना और एक दूसरे के साथ में घूमने फिरने, एक दूसरे के साथ बातचीत करे, ताकि रिश्तों में धैर्य, समझ और सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है।
4: जी बिल्कुल। रिश्तों को समय देना, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, हर एक रिश्ते पर विश्वास करें। आपने बहुत ही अच्छी बात
5: बिल्कुल, बहुत
4: कही।
5: जरूरी है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि रिश्तों में जो गलत फहमियां होती हैं या विवाद हो जाए, उसे आप बात करके एक दूसरे से संभाल सकते हैं। अहंकार जो होता है आदमी के अंदर, वो सबसे ज्यादा उसके जीवन में एक गलत फहमियां पैदा करता है। जब तक आप अपना अहंकार नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप सामने वाले को नहीं समझ सकते।
4: हर एक
5: एक
4: रिश्ते को निभाने के लिए हमें अपने अहम को दूर रखना पड़ेगा।
5: अहम को दूर रखना पड़ेगा, सामने वाले को माफ भी करना पड़ेगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझना भी पड़ेगा,
4: जी
5: तभी विवाद का हल निकल सकता है, तभी रिश्तों में मजबूती आ सकती है और तभी रिश्तों की हिफाजत बनी रह सकती है।
4: आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, रिश्तों की हिफाजत और उसके महत्व को इतने अच्छे से समझाया, उसके महत्व से हमें अवगत कराया। इसके लिए हमारी तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद।
5: बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी।
1: रिश्तों की हिफाजत, ये था विषय 6 संकलित भेंट वार्ता का। हमारे साथ बातचीत में शामिल थे पवन शर्मा।
0: प्रेरणा, भेंट वार्ता बहुत ही अच्छी लगी और हमें अपने परिवार का सुख में दुख में पूरा ध्यान रखना चाहिए और रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए, तभी रिश्ते जो हैं मजबूत होते हैं, चाहे वो पति पत्नी के हों, चाहे वो अपने परिवार में देवरानी जेठानी के हों, बच्चों के साथ हों। तो अगर हमारी जो रिश्ते में मान होगा, सम्मान होगा, प्यार होगा और एक दूसरे को क्षमा करने की हमारी प्रवृत्ति होगी, तो वो रिश्ते बहुत आगे तक चलते हैं।
1: बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। लेकिन सुनीता जी, जैसे मौसम हो रहा है तो ऐसे में तो मेरा मन कुछ उल्लास का, मतलब खुशी का गाना वाना सुनने का कर रहा है, क्यों ना हो जाए एक।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही। तो आइए हम सब मिलकर एक सुनते हैं और अपने श्रोताओं को भी सुनाते हैं प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, अब गीत के बाद फिर से चलते हैं छेद संकलित कार्यक्रम की ओर। जैसा कि हमारी रेडियो साथी सुनीता सिंह बता रही थी कि पति पत्नी में सामंजस्य बहुत जरूरी है, तो इसी विषय पर सुनीता सिंह जी बात करेंगी सुनीता सागर से। तो चलिए सुनते हैं ये छेद संकलित भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं, पति पत्नी के रिश्ते में प्यार, सम्मान, विश्वास और समझदारी जैसे भाव सबसे जरूरी है। इनके अलावा एक दूसरे के विचारों को और भावनाओं को महत्व देना, खुलकर बात करना और घरेलू कामों में हाथ बटाना भी जरूरी है। कहते हैं कि पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पहिए पर गाड़ी नहीं चल सकती, इसलिए परिवार रूपी गाड़ी चलाने के लिए दोनों में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं सुनीता सागर। तो सबसे पहले सुनीता, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपसे बात करेंगे पति पत्नी में सामंजस्य कितना ज़रूरी। तो सुनीता, जैसे कि पति पत्नी का जैसे मैंने बताया अभी, तो उनके रिश्ते अच्छे रहें, मजबूत रहें, इसके लिए क्या होना ज़रूरी है?
2: सबसे पहले तो उन दोनों के बीच में प्यार और सम्मान होना बहुत ही ज़रूरी है।
1: जी
2: हाँ, केवल सम्मान ही नहीं बल्कि उनके जो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें।
1: बिल्कुल। और देखिए, विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है।
2: जी जी,
1: तो इसके लिए क्या होना चाहिए?
2: देखिए, जो पति पत्नी के रिश्ते की जो नींव होती है वो विश्वास पर ही टिकी रहती है, इसलिए दोनों को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना कि जब एक दूसरे पर भरोसा होगा तभी उनकी जो जीवन रूपी गाड़ी है वो अच्छे से चल पाएगी। और समझदारी और सहयोग भी होना जरूरी है।
2: जी हाँ, एक दूसरे को समझदारी और सहयोग बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये संभव प्रयास करना चाहिए दोनों को कि वो एक दूसरे का सहारा बन सकें।
1: बिल्कुल। और जैसे मान लीजिए परिवार है, हमारे ज़िंदगी भर का साथ है, तो थोड़ी बहुत कुछ खटपट भी हो जाती है, तो इस बीच क्या ज़रूरी है?
2: तो उन्हें आपस में खुलकर बातचीत करनी चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए, खुलकर साझा करें आपस में अपने विचारों को।
1: बिल्कुल। और एक ज़रूरी बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पति अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, कि कोई गलती हो जाती है तब भी वो सॉरी कहने में थोड़े झिझकते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी जो है एक समान है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगी?
2: मेरा ये कहना है कि पति पत्नी में बराबरी का ही दर्जा होना चाहिए, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए और घर के फैसलों में साथ मिलकर काम करें, साथ ही परवरिश भी साथ साथ मिलकर करें और हर किसी काम में हाथ बटाएं।
1: बिल्कुल। मान लीजिए हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं दो, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम दोनों मिलकर ही उनकी परवरिश करें, पढ़ाई जी में साथ दें, क्योंकि अगर पति बाहर जाता है तो पत्नी भी तो बहुत सारे काम घर की करती है। और आजकल

0: बच्चे हैं ना, वो भी सीखते हैं
1: वो भी
0: सम्मान
1: सीखते
0: करना
1: हैं।
0: और मम्मी पापा का आदर करते हैं, अच्छे से उनकी परवरिश होती है, क्योंकि उन्हें अपने घर का माहौल बहुत अच्छा मिलता है। और देखा गया है कि जहाँ पर लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ बच्चे भी ज़्यादा
1: वहाँ
0: परेशान रहते
1: बच्चों पे
0: हैं,
1: हाँ मानसिक
0: बच्चों
1: वो
0: पर
1: पड़ता
0: असर
1: है,
0: पड़ता
1: मानसिक
0: है,
1: तनाव होता
0: मानसिक
1: है।
0: वृद्धि रुक जाती है
1: जी
0: उनकी।
1: जी
0: तो सुनीता, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: पति पत्नी में सामंजस्य कितना जरूरी, ये था विषय क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता का। और हमारे साथ बातचीत में शामिल थी सुनीता सागर।
1: और श्रोताओं, अब हेल्थ टिप्स में बात करेंगे केश सुरक्षा पर।
2: श्रोताओं, गर्मी के मौसम में बालों की सुरक्षा के लिए कुछ सावधानियां जरूर बरतें जिससे बाल स्वस्थ रहें। और इसके लिए देखिए, तेज धूप, पसीने और रूखेपन से बचने के लिए बालों को नियमित रूप से धोएं।
1: और धूप में निकलें तो सिर को और बालों को ढककर ही निकलें। इसके लिए स्कार्फ या दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: क्योंकि तेज धूप की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं बालों की जो ऊपरी सतह होती है उसको जला देती हैं, जिससे बाल रूखे और बेजान होते हैं और वो ज्यादा टूटने लगते हैं।
1: गर्मी और पसीने से बचने के लिए बालों को बांध कर रखें, इससे बाल उलझते कम हैं।
2: बिल्कुल। और धुलने के लिए शैम्पू जो कि सौम्य होना चाहिए उसका इस्तेमाल करें। कठोर शैम्पू बालों का जो तेल होता है उसको छीन लेता है और बाल रूखे हो जाते हैं।
1: हमेशा बाल धोने के लिए ठंडे या सामान्य पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी से बाल कभी नहीं धोएं, क्योंकि इससे रूखापन आता है और बाल बेजान हो जाते हैं।
2: और हर बार बाल धोने के बाद कंडीशनर जरूर लगाएं, इससे तेज धूप और पसीने से बचाव होता है और बालों में शाइनिंग आती है।
1: खूब पानी पिएं। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। पानी न केवल त्वचा को पोषण देता है, बल्कि हमारे बालों की जड़ों को भी मजबूत बनाता है।
2: बिल्कुल सही कहा प्रेरणा। और हफ्ते में 1 या 2 बार नारियल तेल या फिर बादाम तेल या कोई भी तेल जो आपको सूट करता है उसकी बालों में अच्छे से हल्के हाथों से मालिश करें। और अपनी डाइट में प्रोटीन, विटामिन, ओमेगा 3 भरपूर पदार्थ होते हैं जिनमें ये तत्व ज़्यादा होते हैं उनको शामिल करें, जिसमें कि नट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, अंडे हैं, मछली, दूध, दही हैं। और जो चीज़ जो ज़्यादा पौष्टिक होती हैं वो अपने खाने में संतुलित आहार के रूप में जरूर शामिल करते रहें।
1: इन आसान टिप्स को अपनाकर अपने बालों और खूबसूरती को बनाए रखें। गर्मी का भरपूर आनंद ले सकते हैं हम।
2: बिल्कुल सही कहा प्रेरणा। और देखिए, अब गर्मी के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई है,
1: जी
2: तो बारिश भी हमारे बालों को नुकसान पहुंचाती है, तो बारिश से भी बचाव रखें।
1: बहुत जरूरी है,
2: क्योंकि जो बारिश का जो पानी होता है वो चिपचिपा हमारे बालों को कर देता है, जो जड़ें होती हैं उसकी वो कमजोर हो जाती हैं, फिर हमारे बाल टूटने लगते हैं। तो जो शुरुआत की जो बारिश है उससे अपने बालों को बचा के रखें। और अब बात करें पत्रों की प्रेरणा। तो जो खूबसूरत सा पत्र है उसको लिखकर भेजने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं थाना 3 ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खां, PWD वाले शाहिदा परवीन उर्फ शिवा, इमरान खां, रिहान खां, इकराम खां, समीना बी, आसिफा और शबीना।
1: आप सभी ने 23 जून का प्रोग्राम सुना, अच्छा लगा। और आपने लिखा है कि आप परिवार जगत को सुनते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं, बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आपकी इन बातों से दिल बहुत खुश हो रहा है, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।
2: बिल्कुल। और प्रेरणा भाई, हम भी अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं ना, तो हमारे हमारे मन में ही उल्लास होता है, ये जिज्ञासा होती है कि हमारे जो श्रोता हैं वो हमारे प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। और हम यही कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अपने श्रोताओं तक अपनी प्रस्तुति दे सकें, लेकिन कभी कभी कुछ चूक हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। लेकिन आप हमेशा हमारे प्रोग्राम को सुनते रहिएगा और हमें प्यारे प्यारे खत हमें हमारे प्रोग्राम के लिए ज़रूर भेजते रहिएगा। और भी श्रोता हमें पत्र लिख सकते हैं और इसके लिए हम समय समय पर अपने जो प्रोग्राम है उसका पता बताते रहते हैं। एक बार फिर से बता
1: एक
2: दें।
1: बार इस बार फिर हो जाए।
2: बिल्कुल। तो उठाइए कागज़ और कलम और लिखिए हमारे प्रोग्राम का पता। पता है कार्यक्रम परिवार जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन कोड है 2449-01। और अब क्या ख्याल है प्रेरणा?
1: अब हम चाहेंगे अपने श्रोताओं को एक और गीत सुनवाना।
2: हाँ, तो फिर देरी क्यों, तो आइए सुनते हैं एक और प्यारा संगीत।

0: मन से।
1: इसी गीत के साथ कार्यक्रम से प्रेरणा गुप्ता को दीजिए अनुमति
2: और साथ में सुनीता सिंह को भी अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए अनुमति। और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और दोनों मिलकर कर लेते हैं। नमस्कार, नमस्कार।

0: विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए # झारखंड एसआईआर के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
3: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के

0: विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर

0: द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए UPI के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य

0: के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीना में 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
3: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
3: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
3: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
3: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
3: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है,
2: जी,
3: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
3: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
3: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
2: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
3: जी जी।
2: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
3: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
2: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
3: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
2: जी,
3: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
2: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
3: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओ, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
2: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए, वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
3: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
2: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
3: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
2: जी।
3: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
3: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
2: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
3: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
4: फूलों से नित हंसना सीखो,
3: भौरों से नित गाना,
4: भौरों से नित गाना,
3: तरु की झुकी डालियों से नित,
4: तरु की झुकी डालियों से नित,
3: सीखो शीश झुकाना,
4: सीखो शीश झुकाना,
3: सीख हवा के झोंकों से लो,
4: सीख हवा के झोंकों से लो,
3: कोमल भाव बहाना,
4: कोमल भाव बहाना,
3: दूध तथा पानी से सीखो,
4: दूध तथा पानी से सीखो,
3: मिलना और मिलाना,
4: मिलना और मिलाना,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
4: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
4: सूरज की किरणों से सीखो,
3: जगना और जगाना,
4: जगना और जगाना,
3: लता और पेड़ों से सीखो,
4: लता और पेड़ों से सीखो,
3: सबको गले लगाना,
4: सबको गले लगाना,
3: दीपक से सीखो जितना,
4: दीपक से सीखो जितना,
3: हो सके अंधेरा हरना,
4: हो सके अंधेरा हरना,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
4: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
4: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: सच्ची सेवा करना,
4: सच्ची सेवा करना,
3: जलधारा से सीखो आगे,
4: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे,
4: जलधारा से सीखो आगे,
3: जीवन पथ में बढ़ना,
4: जीवन पथ में बढ़ना,
3: और धुएं से सीखो हरदम,
4: और धुएं से सीखो हरदम,
3: ऊंचे ही पर चढ़ना,
4: ऊंचे ही पर चढ़ना।
3: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
3: खोदेंगे भाई, खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल। खोदेंगे भाई, खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।

0: थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
1: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
0: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काओ काओ काओ।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों है ना कोयल बहन, कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो, काम काम काम।
6: क्या क्या क्या,
3: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
4: कू कू।
3: नीचा सब तक सब सुनाए, सबका तुम

0: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपीहे ऐसे क्यों बैठा है भैये, सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है। काँ, काँ, काँ।
1: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
0: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
1: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको, अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
0: का का का।
2: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: やばい。パピーハナピエットジャパン。
1: ガオガオガオ。あれ？イスネとバスラッヒパカルリ？
2: バウバウバウ。あれ？ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भाव भाव कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं।
1: गाँव गाँव गाँव कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गाँव गाँव शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते।
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो,
4: इसको यही दंड दो।
5: अब गर्मी का मौसम

0: आ गया था। नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: क्या क्या? अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है।
2: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
3: भाई। मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
3: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
2: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
2: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
3: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: हाँ, चलो
3: पिए दूजा पानी। कब आएगी बरखा,

0: ये मर गया।
1: क्या पता,
0: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
1: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
0: हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कमुआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी,
1: अरे
0: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 3 बजने वाले हैं। अभी तक आप हमारी प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे थे। अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ आज शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। अब से लेकर शाम 5 बजे तक विविध भारतीय प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेब पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।
4: कुछ ही पलों में कार्यक्रम सुनिए सखी सहेली।

0: की सहेली
1: सभी सखी सहेलियों और सखाओं को राजुल का नमस्कार और साथ में है सोनाली, आपको भी नमस्कार।
2: राजुल जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल है राजुल जी?
1: बस बढ़िया है, आप सुनाइए कैसे हैं?
2: मैं भी बहुत मजे में हूँ। और ये जो बारिश है ना, ये किसी छोटे नटखट बच्चे की तरह हो गई है, बीच में से झमाझम बरस जाती है और फिर चुपचाप से छुप जाती है, तो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो फिर से झमाझम बारिश हो जाती है।
1: तो ये कहो ना कि दरअसल ये जो बारिश है वो आपको परेशान नहीं देख सकती, बस जैसे ही परेशान देखती है कि अरे सोनाली परेशान हो रही, तुरंत आ जाती है। वैसे एक बात बताएं कि हमारे वो मित्र जो कि हमसे दूर हैं, जहाँ पे अभी बारिश नहीं शुरू हुई है, उनके लिए ये चीज बड़ी ही सुन के उनको बहुत वो होता है कि यहाँ तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और बारिश तो हो नहीं रही है, तो उनको ये बात सुन के बड़ा ही अजीब सा लगता है। लेकिन भाई जहाँ बारिश हो रही है और जहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहां पर भी बारिश शुरू हो जाए हम तो यही कहेंगे।
3: बस इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: बहुत मीठा होता है। और इसके साथ ही साथ एक बात यह है कि आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं ना, उसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल रिमझिम की तरह बरसती हुई एकदम शांत कर देने वाली बातें हैं। जैसे कि हम आज बात करेंगे बुजुर्गों के अकेलेपन के बारे में।
1: अकेलापन जो है ना, ये एक ऐसी अवस्था है जो बहुत परेशान कर देती है, पर जो घर वाले हैं उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि उनके जीवन में सुकून के पल आए, तो उनसे मिलजुल करना बहुत जरूरी है, उन्हें अपने अपने साथ शामिल करना बहुत जरूरी है। तो बुजुर्गों का अकेलापन ये एक विषय है। साथ ही जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया, तो बातें हल्की फुल्की, तो इसमें छोटे बच्चों की शरारतें, तो छोटे बच्चे जो इतने शरारती होते हैं, तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखे भी हैं, पर उन्होंने आम तौर पर बच्चे शरारती होते हैं इस बारे में लिखा है। पर आपके घर में भी अगर शरारती बच्चे हैं तो उन्होंने क्या शरारती की है? कभी कभी ऐसा था ना राजुल जी, कि उन्होंने किसी कुर्सी में है ना अपना सिर फंसा लिया है,
0: हाँ
1: या फिर उन्होंने जो सीढ़ी के बगल में जो ग्रिल लगी होती है उसमें अपना पैर फंसा लिया है, या फिर बहुत सारी कोल्ड क्रीम है वो सर में लगा ली है, लिपस्टिक मम्मी
0: एक
1: के
0: एक संदेश मैंने ऐसा पढ़ा था कि उसने खूब सारी कोल्ड क्रीम पोत ली थी।
1: हाँ, तो
0: तो
1: ऐसी शरारतें होती है, कभी कभी हम परेशान भी हो
0: अरे
1: जाते
0: कुछ
1: हैं।
0: बच्चे तो वो जो रसोई के बर्तनों से खेलते हैं
1: हाँ
0: और उसके बाद पता चला कि बर्तन तो आप ढूंढ रहे हैं, उस समय चिमटा ढूंढ रहे हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं, और वो
1: उनके
0: पता चला
1: खिलौने में
0: खिलौने की बास्केट में पड़ा हुआ है।
1: और कभी कभी बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं जो हमें तकलीफ में ले जाते हैं, जैसे कि पैसा निगल लिया है, सिक्का
0: हाँ
1: निगल लेते हैं। तो इस तरह की शरारतें आपके घर में क्या हुई है वो हमें लिखकर भेजिए। साथ ही उद्यमी महिला के बारे में हम जानकारी देते हैं हर मंगलवार को, तो आज हमने चुना है अदिति गुप्ता को। और साथ ही मुहावरों की दुनिया, इसमें पानी पानी होना
0: ऊपर से पानी पानी हो रहा है आसमान और हम पानी पानी होने की बात करेंगे जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। और आज हम छोटे बच्चों की शरारतों के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो मतलब
1: जी
0: कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि उनकी शरारतों के सामने वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि हम
1: कि
0: पानी पानी हो जाते
1: माता
0: हैं
1: पिता पानी पानी हो जाओ, यानी यूं कह लीजिए राजुल जी कि वो हमारी पोल खोल देते हैं
0: पोल खोल देते हैं। सही
1: सबके।
0: बात है। वैसे ये सब जो बातें होती हैं ना, इनके बीच में अगर थोड़ा थोड़ा गीत भी चलता रहे
1: तो मजा आ
0: तो
1: जाता है।
0: मजा आ जाता है।
1: सुनते हैं गीत।
2: अरे

0: भाई सोनाली अपनी सवारी तो चल दी है और चलते चलते पहुंच गई है वहां पर जहां पर हम उद्यमी महिला के बारे में बताते
1: यानी
0: हैं।
1: झारखंड पहुंच गए आप।
0: हाँ
1: तो झारखंड से है अदिति गुप्ता, जो भारत की उन प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है जिन्होंने माहवारी से जुड़ी हुई झिझक और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कहते हैं, माहवारी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। इस बारे में लोग खुलकर नहीं बात करते,
0: टैबू है ये एक, और इस बारे में ज्यादातर लोग खामोश रहना। एक जमाना था जब नहीं बताया जाता था, कहते भी नहीं थे। उन्होंने ही महिलाओं और किशोरियों के मासिक धर्म और स्वच्छता जागरूकता पर काम किया और इसे शिक्षा और संवाद का विषय बताया। मतलब ये शर्माने की, घबराने की, मुंह छिपाने की या सबसे कोने में बैठकर की बात नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर के प्रति जागृत रहने की, सचेत रहने की और इससे जुड़ी जितनी सतर्कताएं हैं उन्हें इस्तेमाल में लाने की चीज है, ये बताने वाली है अदिति गुप्ता। बाकी बहुत बड़ा काम है
1: और ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना। और महिलाओं को, यानी बच्चियों को, ये हम उस बारे में डरा देते हैं या कुछ बुरा बुरा कह देते हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जब पीरियड्स आते हैं तभी कोई महिला माँ बन सकती है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, बल्कि हम उसे कहते हैं अभिशाप समझ बैठते हैं कि अरे ये क्या हमारे नसीब में है, पर उसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे अंदाज के साथ अगर हम बच्चियों को समझाएं तो ये बहुत वरदान साबित तो हो ही चुका है, तो उसे हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं
0: और शरीर की एक आवश्यक क्रिया है
1: जी। तो अदिति गुप्ता का जन्म झारखंड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कई लड़कियां मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच का सामना करती हैं और इस विषय पर घर और समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिसके कारण कई सारी लड़कियों में डर और भ्रम पैदा हो जाता था।
0: और अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों से अदिति को ये समझ में आया कि केवल चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सही जानकारी से और इस बारे में बात करके, इस बारे में जानकारी पहुंचा कर ही बदलाव लाया जा सकता है। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिजाइन की शिक्षा प्राप्त की,
1: लेकिन उनकी रुचि केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रही राजुल जी, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने में विश्वास रखती थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया नामक कॉमिक बुक की शुरुआत की।
0: अपने पति तुरहिन पाल के साथ मिलकर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सरल भाषा में वैज्ञानिक और सही जानकारी मिल सके।
1: अब सरल भाषा बच्चों के लिए, यानी छोटी बच्चियों के लिए कॉमिक से बढ़कर क्या होगा?
0: क्या होगी, ये बहुत अच्छी पहल है
1: जी। तो उन्होंने कॉमिक बुक, चित्रों और आसान तरीके से समझाने वाली सामग्री का उपयोग किया ताकि किशोरियां बिना डर, बिना झिझक के इस विषय को समझ सके।
0: और इनके प्रयासों से कई परिवारों और स्कूलों में इस विषय पर बातचीत को बढ़ावा मिला। अदिति ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी छिपाने के बजाय जागरूकता फैलानी चाहिए
1: जी। और उनका काम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी समस्या को समझने और हल करने के लिए संवाद का होना कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और अदिति गुप्ता को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में अंडर 30 की सूची में स्थान मिला और वो BBC की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल रही।
1: और अदिति गुप्ता का जीवन बताता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी समस्या को गंभीरता से समझकर सही दिशा में प्रयास करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय पर आवाज उठाई है राजुल जी, जिस पर लोग चुप रहते थे, उनकी सोच ने चुप्पी को जागरूकता में बदल दिया।
0: और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जागरूकता आई तो कम से कम बच्चियों में ये एक विश्वास आया, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी ये होता है कि इन दिनों ये छूना नहीं है या दूर रहना है, या बहुत सारे घरों में अगर बेटे भी हैं तो ये बताया जाता है कि अभी ये गंदी हो गई है
1: या चिड़िया ने छू लिया।
0: हाँ, तो इस तरह की बातें सुन के बेटों के मन में पहले से बात आती है कि ये गंदी होती है, ये गंदी, मैं गंदा नहीं होता हूँ,
1: ये गंदी।
0: तो एक चीज वो जो वैषम्य पैदा होता है,
1: हाँ,
0: वो भी एक उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर बातचीत होने लगी है। अब देखो ना, हमारे कार्यक्रम में एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है,
1: तो लेते हैं ब्रेक।

0: तो सोनाली, पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे,
1: जी।
0: मासिक धर्म की बात कर रहे थे, तो आप कुछ कह रही थी इसके बारे में।
1: जी राजुल जी, ऐसा है ना कि इसके पीछे भी जैसे पुराने जमाने में आपने जैसे कहा कि महिलाओं को दूर बिठाया जाता था या फिर घर में छूना नहीं है, तो उस जमाने में काम भी महिलाएं बहुत भारी भरकम किया करती थी। जैसे कुएं से पानी निकाल कर लाना है, फिर चक्की से आटा पीसना है, फिर खेतों में काम करना है, तो उस वक्त महिलाओं को थोड़ा आराम की जरूरत होती थी, इसलिए उस जमाने में इस तरह से उन्हें अलग बिठाया जाता था। पर अब हम हल्का फुल्का काम करने लग गए, फिर भी हम उन्हीं बातों को, उन्हीं रूढ़ी वादी बातों को लेकर चले। और तो और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन दिनों में नहाना नहीं, पर कितनी गलत बात है। उस वक्त स्वच्छता का, हाइजीन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हमें रोज नहाना चाहिए, नहाना चाहिए, स्वच्छता का कपड़े बदलना चाहिए और जो पैड्स वगैरह है उसे भी समय समय पर बदलना।
0: और अब तो इसके विषय में सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बहुत पहल हो रही है, मुफ्त में पैड्स गांव में दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये भी कहा जाता है, जब कई बार कोसते भी देखा है, पढ़े लिखे बच्चियों को भी इस बात को कोसते हुए देखा है कि अरे ये क्या है, तो ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि स्त्री सबसे ज्यादा उसके अंदर जो शक्ति शक्ति कहा जाता है ना, तो शक्ति उसके अंदर सबसे ज्यादा इस समय होती है। और इस बारे में कई अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण और कई सारी ऐसी रीतियां भी मिल जाएंगी जो इस बात को बिल्कुल
1: प्रूव करती है,
0: प्रूव करती है, प्रमाणित करती है कि भाई ये बहुत खास समय होता है। तो इस खास समय को खास तरीके से बिताने के लिए अलग बिठाया जाता था, ना कि इसलिए क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो गंदगी की यहाँ पर सिर्फ तभी तक रहती है जब तक हम नहाते नहीं है या कुछ भी दूसरी तरह की गंदगी से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं, तब गंदगी नहीं रहती। जब हमें कहीं पर आराम करने के लिए छोड़ा जाता है या अच्छे से खाने के लिए कहा जाता है, बहुत जगह ये भी
1: उस
0: होता है,
1: उस वक्त हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बहुत आराम करना चाहिए। इस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं अपने घर वाली, जो घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह से आराम दिया जा सकता है, ना कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए कि अरे दूर रहो, छुओ ना, बल्कि उन्हें बहुत आराम और बहुत प्यार से उस वक्त अगर संभाले तो ये दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं।
0: और साथ ही साथ अगर हम गीत सुनते हुए ऐसी गंभीर विषयों पर बातचीत करते हैं
1: तो कार्यक्रम में मजा आ जाएगा।

0: चांद कहाँ खोया है ये ढूंढने भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं। जब अमावस्या होती है या जिन रातों में चांद नहीं निकलता, तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं, देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं, तुम्हें भी सब काम
1: करो ट्यूशन स्कूल।
0: तो उसने कहा कहाँ आते, देखिए चांद तो आ जाए ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी ही कर देती है।
1: ये जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था, तब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहां पहुंच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी समझ।
0: बापरे।
1: फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारती जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीजें छोटी जगह पर छिपा देता है, उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा। मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता मैं पहले दरवाजा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरारा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है।
0: हाँ, तो मतलब इन्हें तो डांटना भी मुश्किल हो जाता होगा। एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा अंशु भी बहुत शरारती है। अभी 3 वर्ष का है, उसने अभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके दादाजी ने छोटी सी सुंदर साइकिल खरीद कर दी है। कुछ दिन पूर्व वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गया था, तो अपनी साइकिल की चाबी अपनी दादी के तकिए के नीचे छुपा कर गया था और दादी को पोल कर गया था कि दादी ध्यान रखिएगा कहीं दादाजी उसकी साइकिल लेकर ऑफिस न चले जाए।
1: कितनी मासूमियत है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे जोड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे चलाएंगे।
0: और कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है, ये पता नहीं अब ये ले लेंगे
1: नहीं। और उन्हें ऐसा लगता है कि पापा के पास में बाइक है या कार है, या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी सारी चीजें मम्मी की, तो ये मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने ये मेरे हैं।
0: बिल्कुल।
1: एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था। छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है, और उनकी मासूम हरकतें नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौने बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीखकर सबको चौंका देते हैं। उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
0: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है, और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनके आंखों पर ही चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा ये आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
1: वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है, तो कभी हंसी भी आ जाती है, तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है, तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार VCR के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए। अब VCR चलना बंद हो गया। जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
0: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
1: नाम नहीं लेती
0: और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है। अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
1: सुनते हैं गीत।
2: मेरी

सोनाली, अभी एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो ब्रेक से लौट कर हम फिर बच्चों की शरारतों का एक और कांड पढ़ते हैं।

0: सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी। 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था और उन दिनों कुतूहल वश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा। पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी वो भी झटका अलग से लगा था। साथ ही एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है उसमें सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
0: दिया। ये बहुत खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, चोट भी बहुत गहरी लग सकती है। एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे। वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं। उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उसे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया। घर में महक आ रही थी और जहाँ फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था। तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था। जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है, तो मैं टेडी को कर रही थी। तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम टैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया।
1: कितना मासूमियत भरा सवाल था और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था। एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे, हमने बेल बजा दिया। फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट देगा। यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था। उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना, पंचिश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े।
0: क्या क्या तो गजब गजब शरारतें हैं। और बच्चों की ये जो मासूम शरारतें होती हैं इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और वो मिलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये भी सीखते हैं। तो बस नजर रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब ऊर्जा बराबर कर देता था। उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको चाहिए पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग। तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूँ मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
1: बहुत बड़ा इंजीनियर
0: बना जी। तो भाई ये कुछ
1: यानी उन्हें रोकी टोकी मत कि आपको लगता है कि इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे। साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते ना उससे दीवाले गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं पर उन्हें डांटे ना, एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे, क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनकी उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं, तो उन्हें गोदने दीजिए। ऐसा नहीं है कि पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं, ब्लैक बोर्ड आते हैं
0: वो लगा सकते हैं
1: या फिर ऐसे
0: कागज लगा दे, एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो लगा दे और कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाए भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहें कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती हैं,
1: बहुत होती,
0: तो बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स, देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है।
1: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है, खुद के बाल ही काट देते हैं, कभी कभी कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं चूकते हैं बच्चे,
0: या छोटे भाई बहनों के काट देते हैं।
1: तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे, तो उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। तब उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली जाती। तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना चाहिए।
0: मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है। नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
1: गाने में है।

0: सोनाली देखिए, शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया, जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से। खैर, जान में जान आई।
1: यानी दादाजी नाना जी रहे
0: ना,
1: तो उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है। वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है, अकेलापन नहीं लगता।
1: यानी परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते हैं कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है कहा भी जाता है, तो भाई वो अपने बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर वो भी काम आता है,
1: बहुत काम आता है। पर अभी परिस्थितियां थोड़ी
0: अलग
1: होने लगती
0: है।
1: एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे, अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और न ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फोन में और टीवी में मिल जाता है, दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्गों के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं। उस जमाने में कहां था सोशल मीडिया और टीवी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है, ये
0: परेशानी है। और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रहे हैं कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का,
1: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का, एकल परिवार। और सच मुझे ना, पुराने जमाने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बच्चों को भी सब प्राइवेसी की जरूरत है। तो पुराने जमाने में सब एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नजर आ रही है। एक साथ लिखते हैं कि बुजुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता, हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं, सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
1: क्या बात है। एक साथी लिखते हैं एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसके उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत जरूरी है जो आजकल बेहद कम हो गया है।
0: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है, आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन रेडियो एज आरजे ऑन कम्युनिटी रेडियो, इंजॉइंग अ लॉट, आई लव रेडियो सिंस माई चाइल्ड हुड, विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है।
1: क्या बात है
0: इस तारीफ के लिए शुक्रिया, विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप कर लेते हैं, हाँ डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है बल्कि ये एक नया पड़ाव है, नई यात्रा है
1: जी।
0: और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा। ये तो सही बात है। एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता। सही बात है, समय नहीं होता, बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता
1: है। पर अगर ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं तो ऐसा लगता ना कि अरे वो बात नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे, तो पहल दोनों तरफ से होनी
0: चाहिए। दोनों तरफ से होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी सहायता कर रहे हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है,
0: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: सुनते हैं गीत।

0: फिर 1 बजे सुरीला सफर सफर, फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है
0: हाँ सही
1: आपकी।
0: बात है।
1: वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती
0: हाँ
1: है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्म आई और शर्म से पानी पानी हो गई। ये
0: सही
1: सचमुच
0: बात है, बच्चे
1: बच्चे
0: पोल खोल देते
1: बहुत
0: हैं।
1: पोल खोलते हैं।
0: एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं हैं, जाओ क्या दो अंकल आए, क्या दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा, पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब
1: उसने
0: पिताजी
1: बता
0: बिल्कुल,
1: दिया।
0: हाँ बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
1: एक बार एक एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी। तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, पहले नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते
0: सब पोल
1: हैं,
0: खोल दी।
1: सब पोल खोल दिया। अंदर से पापा ने सुना, अरे मैं तो वो पानी पानी हो गए शर्म से।
0: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने काम का मतलब यही समझा कि हम, माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि वो ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
1: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो अब टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने वाली।
0: सच में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है। उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुकें क्या करें, और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है। जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माए कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
1: सब खा लिया।
0: सब खा लिया। तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं, ये तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे, हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा।
1: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
0: हाँ खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने मान लीजिए, एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गए, बच्चे छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्ची ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है
1: जी
0: वो पूरा हो गया।
1: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज खाने की मनाही होती है, और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कहने की भाई डायबिटीज है खाओ मत मीठा खाओ, अब बहुत ललचाया हलवाई के यहाँ जाके खा ले, और घर वालों ने किसी ने देख ली
0: तो पानी पानी हो गए।
1: ऐसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर पर लज्जित हो गया है ना, तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे वही छोड़ देना है कि हाँ। वो ठीक है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, जिंदगी को हल्के में ले।

0: चाहिए।
1: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्म पत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से। वो तो ऑफिस में देते हैं, पत्नी वहां घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें स्मृतियां आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं
0: सचमुच। और ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल ये क्षण जो है फिर से नहीं आएंगे,
1: फिर से नहीं आएंगे। जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे।
0: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: तो भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई, हम लोगों ने काफी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मजा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखकर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाजत। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार, वो कहते हैं खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क
1: सब सखियों का पिया प्यारा सब में है और सब सुनारा
0: और फिल्म थप्पड़
2: एक टुकड़ा दुख का अंदर अंदर
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
3: बेखबर दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीं बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
4: हाँ।
3: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्मी दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़, और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
4: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
3: तो मुल्क के, तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवार आप बताए और रचना प्रक्रिया बताए।
4: मुल्क का गाना आप वो सुनाए, पिया समाए
3: जी,
4: बहुत अच्छा गाना है,
3: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
4: हाँ,
3: कव्वाली है।
4: यस यस,
3: कव्वाली के शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
4: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने
3: जी, बिल्कुल। हाँ। पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ। इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
4: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
3: जी,
4: ये आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी है जो याद की जाएंगी,
3: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
4: जिक्र किया जाए,
3: दर्ज होती है आज के समय।
4: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
3: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली, और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे, और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
4: जी हाँ जी, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप
3: जी,
4: बिल्कुल।
3: तो
4: आर्टिकल 15 से,
3: तो कैसे वो गाना बना, बनने की क्या कहानी?
4: उस गाने की कहानी ये है के
3: कोई दिलचस्प बात हो।
4: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ।
3: हाँ।
4: आप यूँ समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
3: पड़ा है इजाजत फिल्म
4: लौटा दो। हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
3: अरे क्या बात है।
4: उल्टा मतलब के
3: सामान देना है।
4: हाँ, वो कह रहे कि वो कह रहे लौटा दो।
3: हाँ।
4: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
3: हाँ।
4: ठीक है,
3: संचय करना है यहाँ पर।
4: तो उसमें जो गाना है वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मूवमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है, है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मूवमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
3: अच्छा, क्या बात है, ये सारा कुछ एक गाने में आना।
4: हाँ, तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो।
3: हाँ।
4: लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ। तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना इंतजारी
3: जी।
4: हाँ,
3: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
4: हाँ, इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी।
3: क्या बात है, वाह।
4: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी।
3: वाह वाह, बहुत सुंदर
4: है ना।
3: तो
4: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की लाइन थी। तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई, ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुहरी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है,
3: रंगी है,
4: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं। तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
3: बिल्कुल,
4: है ना, कुछ नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना
3: जी।
4: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था, ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट, पिया समाए हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही, उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे और ऐसा, फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलिहाबाद वगैरह में, और
0: ये अभी गाना लिख दो जल्दी।
1: और हम जो हैं, मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी। हाँ,
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर।
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसको कोई भी रंग मिलाएंगे तो दूसरा हो जाएगा।
1: तो, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी
0: जी,
1: चाहिए
0: जी,
1: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा, मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, क्या सात रंग होते हैं
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए
0: जी जी,
1: ठीक है, सारे समुदाय जो है वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो है एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
0: खुदा है।
1: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना, वो
0: छुपाऊं कैसे,
1: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी,
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल, दो अर्थी।
1: तो हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगे
0: रंग दिखाई
1: पड़े। हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली,
0: वाह क्या बात है,
1: सातों से मिलके
0: भाई
1: में उजली,
0: वा, वा।
1: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
0: क्या बात,
1: पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए। अब ये देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ
0: जी जी,
1: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
0: तो ये जो फिल्म है एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, सब एकजुटता का संदेश है और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा,
1: हाँ,
0: एम एम करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना, इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं, क्योंकि
1: मतलब आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची हैं।
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं। और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका, भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट
1: उन्होंने डायरेक्ट की थी, और ये गाना जो है एम एम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मेरे पसंदीदा कंपोजर हैं वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना। तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे, मैंने रिकॉर्ड किया उसमें।
0: हाँ।
1: और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो, और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवां हो गया।
0: हाँ।
1: जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवां हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई।
0: क्या बात है।
1: हाँ, वो जब ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर। हाँ,
0: जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
1: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना, कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई, उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग, क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को
0: जी।
1: तो उसमें

0: गाना था वो के ने गाया था वो अय बेखबर
1: जी जी जी,
0: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो, तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ।
1: जी तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
0: आई बेखबर
1: सुनते हैं। हाँ। ये गाना

0: रूप कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है, है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
0: जी, जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर खत्म हो रहा था
0: जी, जी।
1: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने वो गवा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे, और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
0: जी, जी।
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी, जी।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
0: दर्ज है।
1: हाँ,
0: और
1: 400-500 गाने होंगे।
0: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
1: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगने
0: जी,
1: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
0: जी, जी।
1: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे बहुत अच्छे गाने।
0: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था,
1: वो तेरा नाम था बिल्कुल।
0: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं, लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
1: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
0: अच्छा,
1: तब मैं सूरत में रहता था
0: जी, जी।
1: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
0: अच्छा।
1: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई। हाँ, दिलीप सेन से हुई, और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी, जुल्मी फिल्म थी अक्षय कुमार
0: जी, जी, जी।
1: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना,
0: वहाँ तनवीर खान भी के।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं वहीं आ रहा हूँ तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए, तो तनवीर खान साहब की नजर उस किताब पर पड़ी
0: जी।
1: उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
0: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
1: सर के नीचे तेरी हथेली है।
0: ओ क्या बात है।
1: ठीक है, तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊंगा, आपको भेज दूंगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे, इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
0: ओ, क्या बात है।
1: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, कैसे सरवाइव करूंगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे
0: जी जी,
1: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में
0: जी।
1: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी
0: जी।
1: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था, फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुकू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊंगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन, समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गजल थी कतील शिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
0: क्या बात है।
1: तो वो तेरा नाम था इसी गजल से लिया गया था।
0: ओ अच्छा, क्या बात है भाई, अच्छी
1: कहानी। हाँ मतलब पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील शिफाई साहब की गजल से लिया गया, ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना
0: जी,
1: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
0: अच्छा।
1: हाँ, मदहोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदहोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था। बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया, तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आजाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी
0: जी।
1: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है। तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जो राइटिंग है और वो गाना इतना, मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना दीदी मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
0: कि मुझे,
1: अरे ये गाना तो मेरा था तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया। हाँ तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको। सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
0: क्या बात है,
1: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
0: वाह बहुत
1: खूब। आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
0: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
1: मदहोशी का टाइटल सॉन्ग सुना, मदहोशी है मदहोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत जरूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, खास बात है। अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर, आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर है, आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़्में हैं, जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं।
0: जी,
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा। मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी
0: जी,
1: है
0: जी।
1: उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसके कुर्बानी ने,
0: कि वनवास होता है।

0: है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायण लिखी गई है,
1: तुलसीदास की
0: तुलसीदास की,
1: रामचरितमानस।
0: जी हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे।
1: उर्मिला सखी वे मुझसे
0: हाँ
1: कहकर
0: हाँ
1: जाते,
0: हाँ हाँ
1: बहुत बढ़िया।
0: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है। मैंने एक नया रास्ता निकाला, पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है, मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक, जीता गया और
1: जी
0: लिखता गया। इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस
1: ओह
0: किताब का, क्योंकि
1: जी
0: जंगल पे काम कर रहा
1: हाँ
0: था मैं,
1: हाँ
0: तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है,
1: हाँ हाँ
0: रामायण और जंगल दोनों है उसमें। तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल, उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया, तब मुझे मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए।

0: और पोएट है
1: जी
0: उर्दू साहित्य में,
1: जी
0: तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं,
1: जी
0: तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है, उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इंप्रेस किया।
1: जी जी।
0: वहां पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब है, गुलजार साहब है, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका। उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है
1: जी।
0: और किस तरह से, मतलब हिंदू माइथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
1: क्या बात है।
0: पिछले 3 साल से लगातार, और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
1: क्या बात है।
0: तो
1: बहुत
0: हाँ, बहुत शुक्रिया,
1: और बहुत बढ़िया बात कही है। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है, और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था, जहां अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव हैं, तमाम वाक्यात हैं जिनकी बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है। आपके ही अल्फाज हैं, आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
0: मैं यही कहूंगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत जरूरी है, और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
1: कुछ शायर के अंदाज में आप कहे, एक शायर से हम उम्मीद करते हैं शायरी में ही कुछ बोले, शेर के साथ
0: जी
1: कोई अशार।
0: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके 2-3 शेर सुना।

0: फिर ये है जो मैं कह रहा हूं कि ठीक है वो आप आगे बढ़े। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर,
1: क्या बात है,
0: सांपों को मैंने रहने दिया
1: उनके हाल पर,
0: उनके हाल पर मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह,
0: ठीक है, मैंने उसे बदला नहीं लिया, मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम तुम्हारे रास्ते मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए ज्ञान जो है ना
1: जी,
0: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तखलीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
1: क्या बात है, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है, वाह,
0: ये सीख है हम सबके लिए। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
1: जी।
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है, वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगु जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारक।

0: बाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब,
1: आप भी बहुत
0: नमस्कार।
1: शुक्रिया ममता जी।
2: जाने माने शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर अभी तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। अब मीडियम वेव और एफएम पर हमारी दूसरी सभा एक साथ आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम युववाणी में। और आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी नतांश अग्रवाल,
1: और साथ हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त मेघा ठाकुर।
0: तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। इसी के साथ चलते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का हमारा सवाल है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है?
1: साथियों, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर, और आज के अपलोडेड किए गए क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में लिख भेजने हैं अपने सही जवाब। और सही जवाब देने वाले हमारे सभी श्रोताओं के नाम हम बताएंगे प्रोग्राम के अंत में। नतांश, क्या आपको पता है आज पूरी दुनिया विश्व सोशल मीडिया दिवस मना रही है?
0: बिल्कुल मेघा, आज यानी 30 जून को हर साल विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें, आज सोशल मीडिया हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह की शुरुआत से लेकर रात तक न जाने कितनी बार हमारी नज़र मोबाइल स्क्रीन पर चली रहती है।
1: लेकिन नतांश, क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया का असली उद्देश्य क्या था?
0: बहुत अच्छा सवाल किया है मेघा। सोशल मीडिया की शुरुआत इसलिए हुई थी ताकि दूर बैठे लोग भी एक दूसरे से जुड़े रहें, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सबके साथ बातचीत आसान हो सके, खुशियां और अनुभव साझा किए जा सकें।
1: बिल्कुल, लेकिन समय के साथ इसकी तस्वीर कुछ बदल गई है। आज बहुत से लोग सोशल मीडिया को केवल फॉलोअर्स बढ़ाने, इन्फ्लुएंसर बनने या कमाई का माध्यम मानने लगे हैं।
0: हाँ मेघा, कमाई करना या अपने हुनर को दुनिया तक पहुँचाना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अगर इस दौड़ में हम अपने असली रिश्तों, अपने परिवार और अपने दोस्तों से ही दूर होने लगे तो हमें एक बार ज़रूर विचार करना चाहिए।
1: सही कहा नतांश, कभी कभी हम किसी अनजान व्यक्ति की पोस्ट पर घंटों बिताते हैं, लेकिन आपने किसी करीबी को एक छोटा सा मैसेज किया, कैसे हो का संदेश भेजना हमेशा भूल जाते हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा उद्देश्य लाइक्स गिनना नहीं, रिश्तों को जोड़ना था। ये एक ऐसा माध्यम है जो दूरियों को कम कर सकता है अगर इसका उपयोग सही से किया जाए।
1: तो क्यों ना आज इस सोशल मीडिया दिवस पर हम एक छोटा सा संकल्प लें, अपने किसी पुराने दोस्त, रिश्तेदार या ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जिससे आप बात किए हुए काफ़ी समय हो गया हो।
0: बिल्कुल, हो सकता है आपका एक संदेश, एक फ़ोन कॉल या एक वीडियो कॉल किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आए। आखिर तकनीक की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है जब वह इंसानों को एक दूसरे की ओर करीब लाती है।
1: और हाँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें लेकिन संतुलन के साथ। स्क्रीन टाइम से ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिटी टाइम अपने परिवार, अपने दोस्तों और खुद के साथ।
0: जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, जुड़े रहिए अपने अपनों से, क्योंकि सबसे मजबूत नेटवर्क वही होता है जिसमें दिलों का कनेक्शन हो। इसी के साथ अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, हम फिर लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास।

0: दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में। अब चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर और जानते हैं आज का दिन क्यों है इतना खास।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नर्म धागे से बंधे कुछ पन्ने
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
0: दोस्तों, आज तारीख है 30 जून और आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस यानी इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है।
3: हाँ दोस्तों, जब भी हम शुद्ध ग्रह या एस्टेरॉयड शब्द सुनते हैं तो अक्सर फिल्मों के बड़े बड़े अंतरिक्षीय पिंड याद आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये होते क्या है?
0: शुद्ध ग्रह चट्टानों और धातुओं से बने छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनमें से अधिकांश मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं।
3: तो मेघा, फिर अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस 30 जून को ही क्यों मनाया जाता है?
0: जी हाँ, इस दिन का संबंध 30 जून 1908 के प्रसिद्ध तुंगुस्का घटना से है। उस दिन साइबेरिया के तुंगुस्का क्षेत्र में एक विशाल अंतरिक्षीय पिंड के विस्फोट से लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर के जंगल प्रभावित हुए थे और ये घटना हमें याद दिलाती है कि अंतरिक्ष में मौजूद ऐसे पिंडों पर वैज्ञानिकों की निरंतर निगरानी कितनी आवश्यक है।
3: दोस्तों, आपको बता दें, इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने लोगों में जागरूकता बढ़ाने और पृथ्वी के निकट आने वाले शुद्ध ग्रहों पर वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को मान्यता दी।
0: और आज दुनिया भर के वैज्ञानिक आधुनिक दूरबीनों और अंतरिक्ष अभियानों की मदद से ऐसे शुद्ध ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि भविष्य में यदि कोई संभावित खतरा हो तो समय रहते उसका पता लगाया जा सके।
3: और साथ ही साथ ये भी जानना दिलचस्प है कि शुद्ध ग्रह केवल खतरे का कारण नहीं है। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये हमारे सौर मंडल के निर्माण के शुरुआती इतिहास की एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने भीतर समेटे हुए हैं। इन्हें समझकर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जान सकते हैं।
0: और भारत भी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमारे वैज्ञानिकों का शोध और

0: अंतरिक्ष मिशन आने वाली पीढ़ियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं।
1: तो आइए इस अंतर्राष्ट्रीय शुक्र दिवस यानी इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे पर विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाएं और अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की कोशिश करें और वैज्ञानिक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।

0: और दोस्तों, आज ही के दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस भी मनाया जा रहा है।
1: तो दोस्तों, ये जानते हैं इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है।
0: जी हाँ, इस दिवस का उद्देश्य संसदों की लोकतंत्र में भूमिका को समझना और लोगों को ये बताना कि संसद केवल कानून बनाने की संस्था ही नहीं बल्कि जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण मंच भी है।
1: बिल्कुल, संसद वो स्थान है जहां देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है, कानून बनाए जाते हैं, सरकार की नीतियों पर विचार विमर्श होता है और जनहित से जुड़े निर्णय भी लिए जाते हैं।
0: और दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का आधार है जनता की भागीदारी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तथा एक सक्रिय संसद।
1: और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें देश के मुद्दों को समझना, विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना और अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए।
0: और आज ही के दिन, आज के उस समय में युवाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। युवाओं के नए विचार, सकारात्मक सोच और सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र को और भी अधिक सशक्त बनाती है।
1: यही कारण है कि संसद में पारदर्शिता, जवाबदेही, समान प्रतिनिधित्व और युवाओं व महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।
0: और दोस्तों, लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नागरिक जागरूक हो, संवाद बना रहे और हर व्यक्ति संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सम्मान करे।
1: तो आइए, इस अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करेंगे। दोस्तों, ये था हमारा आज का सेगमेंट कुछ खास है आज। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, लेकिन उससे पहले एंजॉय कीजिए प्यारी सी गजल।

0: दोस्तों, अब वक्त हो गया है आज के नेक्स्ट सेगमेंट आज की बात युवाओं के साथ, जिसमें आज हमारे साथ है वसीम, जिनसे बात की है मेघा ठाकुर ने।
1: स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेगमेंट आज की बात युवाओं के साथ में, और आज हमारे साथ जुड़े हैं वसीम जी। नमस्ते वसीम जी, कैसे हैं आप?
2: नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे?
1: हम भी बढ़िया। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस समय क्या कर रहे हैं?
2: मैं इस समय बैठा हूँ और अपनी हॉबीज, जो मेरी हॉबीज है सिंगिंग, उसका प्रयास कर रहा हूँ।
1: अच्छा, और आप स्टडी में क्या कर रहे हैं?
2: स्टडी में मैं इस समय ग्रेजुएशन में हूँ।
1: तो ग्रेजुएशन में आप कौन से सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं?
2: सबसे ज्यादा मैं पॉलिटिकल साइंस में रुचि रखता हूँ।
1: इसके साथ साथ आप और क्या कर रहे हैं?
2: जी, मैंने एनसीसी में भी ज्वाइन कर रहे।
1: तो हम आपसे जानना चाहेंगे, और क्या अच्छा लगता है, और क्या पसंद है आपको?
2: मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। मैं अपने फ्री टाइम में, और जो मेरा फ्री टाइम होता है, मैं अपने आवाज का रियाज कर अपना टाइम स्पेंड करता हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। और आप इस हॉबी को हमारे साथ भी शेयर करना चाहेंगे?
2: जी जी ऑफ कोर्स, बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा जी। आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाइए।

एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। था एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए।

0: प्यार का रंग है फिजाओं में, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहूँ के शर्म से है लब सिले हुए, तो देखा एक ख्वाब तो इस सिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। मेरा दिल है तेरी पनाहों में, आ छुपा लूं तुझे मैं बाहों में, तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में, कल अगर न रोशनी के काफिले हुए, प्यार के हजार गैर दीप है जले, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा वसीम जी, आपने बहुत अच्छा गाया। तो वसीम जी, आपने हमें इतना अच्छा गाना सुनाया, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे इसके साथ साथ कहाँ कहाँ घूमना अच्छा लगता है, जैसे कि नेचर को एक्सप्लोर करना या धार्मिक यात्रा करना।
0: मुझे सबसे पहले तो नेचर को एक्सप्लोर करना सबसे अच्छा लगता है, सेकंड उसका मैं धार्मिक यात्रा को रखता।
1: जी, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कहाँ आप कहाँ घूमने गए।
0: मैं अभी तक घूमने नहीं गया हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं ज्यादातर जम्मू एंड कश्मीर जाऊँ, और जो प्राकृतिक में वहाँ का सौंदर्य है और हमारे भारत की शान का मैं अपने एक नम्न आंखों से सौंदर्य का एहसास कर सकूँ। और मेरी ज्यादातर फर्स्ट हॉबी जो है जम्मू एंड कश्मीर की है।
1: बहुत अच्छी बात है, हम यही आशा करते हैं कि आप एक ना एक दिन जरूर जाएं।
0: जी जी
1: और हम इसी के साथ आपसे ही जानना चाहेंगे, आप हमारे यूथ्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी हॉबीज को किस तरीके से निखारें और अपनी कोई भी एक हॉबी जरूर बनाएं।
0: जी जी मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप किसी भी तौर पर, आपके अंदर एक खूबी है, आपके अंदर एक टैलेंट है, तो उसे अपने ही अंदर न रहने, बल्कि उसे आपके माध्यम से या अपने कॉलेज के माध्यम से या अपने स्कूल के माध्यम से वहां प्रदर्शित करें। और अगर आप खाली टाइम में डिप्रेशन में हैं या किसी भी टेंशन में हैं, तो आप उस अपनी हॉबीज का आनंद ले सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उस हॉबीज के द्वारा आप अपनी डिप्रेशन और अपनी सारी एंजाइटी वगैरह दूर कर
1: बहुत
0: सकते
1: अच्छी बात कही आपने।
0: हैं। जी
1: या आपने अच्छी बातें हमारे साथ साझा की और अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी रामपुर से जुड़ने के लिए वसीम जी।
2: दोस्तों, ये था हमारा सेगमेंट आज की बात युवाओं के साथ, जिसमें आज हमारे साथ थे वसीम, जिनसे बात की थी मेघा ठाकुर ने। अब चलते हैं आज के स्पेशल सेगमेंट भारत के गलियारे से की ओर, और उसमें आपको सुनवाते हैं पहला सब सेगमेंट इमारतें बोलती हैं।
1: दोस्तों, हमारे आज के सब सेगमेंट इमारतें बोलती हैं मैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर पूर्व भारत के खूबसूरत राज्य मणिपुर, जहां इतिहास, संस्कृति और परंपरा का अनमोल खजाना समेटे खड़ा है कांगला किला।
2: लेकिन आज इसकी कहानी हम नहीं सुनाएंगे, आज कांगला किला खुद आपसे बात करेगा। नमस्कार, मैं हूं कांगला किला। सदियों से मणिपुर की राजधानी इम्फाल के हृदय में अड़िग खड़ा हूं। मेरे आंगन में इतिहास ने करवटें बदली हैं, राजाओं ने वैभव देखा है और संघर्षों की गूंज भी सुनी है। मैं केवल ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं हूं, मैं मणिपुर की आत्मा हूं, उसकी सांस्कृतिक पहचान हूं।
1: कभी मैं मेतेई राजाओं की राजधानी था, मेरे प्रांगण में राजाभिषेक भी होते थे, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे और त्योहारों की रौनक पूरे वातावरण को जीवंत बना देती थी। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। सन 1891 में हुए एंग्लो मणिपुर युद्ध ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। मैंने युद्ध की पीड़ा देखी, अपनों को बिछड़ते देखा और फिर लंबे समय तक विदेशी शासन की छाया भी झेली।
2: इसके बाद कई वर्षों तक मेरे आंगन का उपयोग सैन्य परिसर के रूप में हुआ। मैं अपने लोगों से दूर था, लेकिन मुझे विश्वास था कि एक दिन वो फिर लौटेंगे, और वो दिन भी आया। वर्ष 2004 में मुझे फिर से मणिपुर की जनता को समर्पित कर दिया गया। वर्षों बाद मेरे आंगन में फिर से लोगों की हंसी गूंजी, बच्चों की चहल पहल लौटी और पर्यटक मेरी कहानी सुनने आने लगे।
1: आज मेरे भीतर बने मंदिर, ऐतिहासिक अवशेष, शांत जलाशय और प्रवेश द्वार पर खड़े पौराणिक कांगला शाह मेरी गौरव गाथा के साक्षी हैं। मैं हर आने वाले से बस इतना कहता हूँ, अपनी विरासत को जानिए, क्योंकि इतिहास केवल बीते समय की कहानी नहीं बल्कि भविष्य की प्रेरणा भी है। सचमुच कांगला किले की ये कहानी हमें बताती है कि किसी भी ऐतिहासिक धरोहर की असली ताकत उसकी दीवारों में नहीं बल्कि उससे जुड़ी यादों और संस्कृति में होती है।
2: बिल्कुल, और भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, और कांगला किला उसी गौरवशाली विरासत का एक जीवंत प्रतीक है।
1: अगर आपको मणिपुर जाने का अवसर मिले तो कांगला किले की ऐतिहासिक भव्यता और सांस्कृतिक समृद्धि को जरूर महसूस कीजिए। साथियों, अभी हमने सुना हमारा सब सेगमेंट इमारतें बोलती हैं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं ये प्यारी सी गजल।

0: चलिए दोस्तों, इस प्यारी सी गजल के साथ अब बढ़ते हैं हमारे आज के सब सेगमेंट घुमक्कड़ की ओर।
1: दोस्तों अब बढ़ते हैं सेगमेंट में आगे और चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब सेगमेंट घुमक्कड़ की ओर। आज हम किसी महल या किले की नहीं बल्कि भारत के प्रसिद्ध समुद्र तटों में से एक मरीना बीच की कहानी सुनेंगे और सबसे खास बात, आज मरीना बीच भी अपनी कहानी खुद ही सुनाएगा।
0: मैं हूँ मरीना बीच, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे फैला हुआ। मैं वर्षों से लाखों कदमों की आहट और अनगिनत कहानियों का साक्षी हूँ।
1: सुबह की पहली किरण के साथ जब सूरज मेरी लहरों को सुनहरी चादर उड़ाता है तो टहलने वाले, दौड़ने वाले और योग करने वाले लोग मेरे किनारे नई ऊर्जा लेकर आते हैं। शाम ढलते ही मैं फिर से मुस्कुराने लगता हूँ। परिवार, बच्चे, पर्यटक और मित्र सब मेरी रेत पर अपनी यादें सजाते हैं।
0: मैंने न जाने कितनी हंसी देखी है, कितने सपनों को जन्म लेते देखा है और कितने लोगों को मेरी लहरों की आवाज में सुकून मिलता हुआ महसूस किया है।
1: मेरे किनारे केवल लहर ही नहीं बल्कि इतिहास भी है। मेरे आसपास देश के महान नेताओं और विभूतियों की स्मृतियां भी हैं जो आने वालों को प्रेरणा देती हैं।
0: मुझे अपने स्थानीय स्वाद पर भी बड़ा गर्व है। भुट्टे की खुशबू, गर्मा गर्म पकौड़े, सुंडल और बच्चों की खिलखिलाहट, ये सब मेरी पहचान का हिस्सा है। मेरे लिए हर आने वाला मेहमान खास होता है।
1: लेकिन एक बात कहूँ, मुझे सबसे अधिक खुशी तब होती है जब लोग मेरी सुंदरता का आनंद लेने के साथ साथ मेरी स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं। जब कोई प्लास्टिक या कचरा मेरे किनारे छोड़ जाता है तो मेरी लहरें भी जैसे उदासी हो जाती हैं।
0: मैं चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ भी मुझे उसी स्वच्छता और सुंदरता के साथ देखें जैसे मुझे प्रकृति ने सौंपा है।
1: तो जब भी आप मेरे पास आए, मेरी लहरों की आवाज़ केवल सुनिए मत, उसे महसूस कीजिए। शायद मैं आपको यही संदेश दूं कि जीवन भी समुद्र की तरह है, लहरें आती हैं जाती हैं, लेकिन उम्मीद का किनारा हमेशा बना रहना चाहिए।
0: वाह, कितना सुंदर संदेश। सचमुच मरीना बीच केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि प्रकृति, संस्कृति और मानवीय भावनाओं का अद्भुत संगम है।
1: बिल्कुल, और हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे प्राकृतिक धरोहरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखें ताकि उनकी सुंदरता हमेशा बनी रहे।
0: अगर कभी चेन्नई जाने का अवसर मिले तो मरीना बीच की लहरों के साथ कुछ पल जरूर बताइए और प्रकृति से जुड़े रहने का यह अनूठा अनुभव अपने साथ लेकर आइए।
1: तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के सब सेगमेंट घुमक्कड़ी से दीजिए हमें इजाजत। फिर मिलेंगे अगले हफ्ता एक ऐतिहासिक या प्राकृतिक धरोहर की कहानी के साथ।

0: दोस्तों, ये था हमारा आज का सेगमेंट भारत के गलियारे से।
1: साथियों, वक्त हो चुका है आज के सवाल का सही जवाब जानने का। तो हमारा आज का सवाल था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? और इस सवाल का सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। और चलिए जानते हैं सही जवाब देने वाले हमारे कौन कौन से श्रोता साथी हैं।
0: आकाश रस्तोगी, शाहरुख नूर अंसारी, राजवीर सिंह यादव, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, उत्तम सिंह जंगेल, मारिस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल, जॉन डी कैस्ट्रो, मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, अजीत कसाना, हीरामणि वर्मा, नानक खन्ना, चंचल खन्ना।

0: चौधरी राजवीर सिंह, दिनेश कुमार वर्मा, योगेश गुजराती, रेखा गुजराती और अभय गुजराती, प्रवीण चौहान, विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू रानू, ईशु बाबा, सपना शिवी सलोनी अनय अनाया और पेंटर बाबू, तुलसी मस्कीन, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, फागुराम यादव, मसूर हसन, श्री कृष्ण बाठे, अरविंद कुमार, कमल बालूजा, धर्मेंद्र छिपा, इरशाद अहमद अंसारी, सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, बीपी गौतम, गजनन येले दरियापुर भाबली, रवि रस्तोगी, दिग्दर्शन गौण, मुजफ्फर अली खान, जगदीश धाकड़ नायमा, भीरूलाल वाक्तरिया धाकड़, हाजी गफ्फार खान, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, संजय ढींगिया, मोहम्मद यासीन, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसिफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, नवी हसन अब्बासी, सोनू, बलवंत कुमार वर्मा, विजय सुरालकर, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, राजू मिगलानी, नजमल हुडा जावेद, अशोक दले, मोहम्मद यासीन अंजन, राधेश्याम पांडे, गंगा सिंह रावत, राम कुमार रेवाड़, मास्टर विट्ठल सरोशे, रियासत हुसैन सिद्दीकी, भागवत चौबे लाडला जी, सुभाष गोदारा, शाहजी भोटके, अशोक सिंह मिश्वा समशी, सुरेश गगनेजा, शेख मूसा, विनोद मोनत, धीरज भाई राबरी और मुकेश कश्यप। आप सभी को सही जवाब देने की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा बताना ना भूले हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है, युववाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी रामपुर, और पिन संख्या है 244901।
1: साथ ही साथियों, हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
0: दोस्तों, बने रहिए प्रोग्राम में हमारे साथ इस प्यारी सी गजल के।

0: तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय, एक नए साथी और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम। और अब अपनी रेडियो साथी मेघा ठाकुर
1: और नतांश अग्रवाल को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत लेके हाजिर हैं आज आपकी बहन ममता
1: और अब्दुल हफीज भैया।
0: स्वीकार करें हम दोनों की राम राम। और अब्दुल भैया कैसे हालचाल हैं?
1: हाँ ममता बहन, हम तो ठीक हैं, आप सुनाइए।
0: हाँ हम भी बढ़िया हैं। और आज देख रहे हैं मौसम कितना सुहावना होगा, जो बारिश भई है उससे तो चारों तरफ हमारी हरियाली हरियाली नज़र आ रही है।
1: हाँ ममता बहन, और साथ साथ हमारे किसान भाई अब धान की रोपाई की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में बरसात हो गई तो जो उन्हें पानी की आवश्यकता थी वो भी धीरे धीरे पूर्ति होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मानसून हमारे यहाँ आ चुका है।
0: बिल्कुल अब्दुल भैया, और साथ ही मानसून के आते ही जो हमारी बरसात शुरू हो गई है इसके चलते भाई बहुत सावधानी भी बरतनी पड़ता है। जगह जगह जल भराव ना होने दें, इसको ध्यान रखें, कहूँ कहीं गड्ढा में पानी ना भरो हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारियाँ भी उपनपती हैं।
1: हाँ ममता बहन, अब बीमारी सभी को होती है, आदमी हो उनको होती हैं, और जो हमारे पशु होते हैं जैसे मुर्गी है, बत्तख है और मछलियां हैं, इनको भी बरसात से दिक्कत होती है, लेकिन साथ साथ जो हमारे पशु होते हैं और उनके बच्चे होते हैं उनको भी ज़्यादा परेशानी होती है।
0: बिल्कुल अब्दुल भैया, ये बात तो बहुत अच्छी कही है कि जो हमारे नवजात पशु हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। उनके पालन के लिए देखो जो सबसे बड़ी बात होती है उसकी सफाई को ध्यान रखने सबसे पहले ज़रूरी होता है, तो पशुशाला की सफाई नियमित करते रहें और जो हमारे नवजात पशु हैं उनकी देखभाल अच्छे से करते रहें।
1: हाँ ममता बहन, जन्म के समय से इसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। जो तो इसकी नाक होती है उसमें श्लेष्मा झिल्ली होती है, और झिल्ली को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें सांस लेने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। जब उसमें झिल्ली फंस जाती है तो सांस लेने में बहुत परेशानी होती है, कई बार उन बच्चों की इंजरी हो जाती है, यानी वो उनकी डेथ हो जाती है।
0: बिल्कुल भैया, और जो

0: लगन की भी संभावना बनी रहत है, इसलिए उनको भी ध्यान रखें। और जो सांस लेने की नली है उसकी सफाई, तो अब्दुल भैया जन्म के तुरंत बाद मुंह से जो नाक है, जो झिल्ली एक है, उसे जरूर निकाल दें ताकि उसे सांस लेने में कोई परेशानी ना हो।
1: हाँ ममता बहन, नाभि जो होती है, एक नाल होता है, नाभि होती है, उसके पेट से लगभग 2 इंच की दूरी पर साफ धागे से बांधें और उसे साफ कैंची या ब्लेड से काटें, और उसको जो है 7% टिंचर आयोडीन का घोल लगाने के बाद ही काटें, क्योंकि इसमें जो गंदे हथियार होते हैं यानी जो काटने वाले ब्लेड्स होते हैं, कैंची होती हैं, उनमें क्या होता है कि जंक लगी होती है, और वो हमारे किसान भाई क्या करते हैं, उससे ही काट देते हैं,
0: तो
1: उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उसमें सेप्टिक होने का डर ज़्यादा रहता है। तो 7% का टिंचर आयोडीन लें और उसे साफ़ कर दें। दूसरा जो स्प्रीट होता है उससे भी साफ़ कर दें, और उसको एक बार उबाल लें गर्म पानी में, जो उसके काटने के ब्लेड्स होते हैं उनको एक बार गर्म पानी में उबाल लेंगे तो कोई भी आशंका नहीं रहेगी उसमें जो सेप्टिक होता है।
0: बिल्कुल अब्दुल भैया, इसके बाद एक बात और है कि जो बच्चा है नवजात पशु को, उसको शरीर को सुखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बछड़े के शरीर को साफ और सूखो बोरे या तौलिया से पोछें या सूती कपड़ा से पोछें, उसके बाद उसको रखें, इससे हमारे बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और उसके अंदर कोई भी परेशानी ना होगी।
1: हाँ ममता बहन, और साथ साथ जब सफाई हम करते हैं तौलिया से रगड़ते हैं तो उसका जो रक्त संचार होता है वो बढ़ता है, और साथ साथ देखा होगा आपने कि जो पशु है, चाहे वो भैंस हो या गाय हो, वो अपने बच्चे को चाटती है, जब चाटती है तो जो ब्लड का संचार होता है, खून का संचार होता है, वो ज़्यादा तेज़ी से चलता है और बच्चा एकदम खड़ा हो जाता है, यानी ब्लड के संचार होने से बच्चे में एक तरह से जान ज़्यादा आ जाती है।
0: बिल्कुल, और इसके बाद एक बात और है कि जो पहलो दूध है उसको खीस है, जो बच्चा को ज़रूर पिलावें, उसे प्राण से जो है काफ़ी वो फायदेमंद होते हैं। और बछड़े की वो उसकी शरीर के वजन के अनुसार मात्रा की बात करें तो 1/10 भाग लें, जैसे 30 किलो को बछड़ा अगर है तो लगभग 3 लीटर दूध दिन भर में पिलानो है।
1: हाँ ममता बहन, और साथ साथ उसके उसे क्या होता है, जैसे खीस उसने पिया तो जो अंदर की कृमि होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं, और जो स्लेस्मा झिल्लियाँ होती हैं वो भी, जो बच्चा होता है उसके पेट से साफ़ हो जाता है।

0: मंद है नवजात बच्चा के लिए, इसलिए खीर जरूर पिला मैं। और बच्चे को 10 से 14 दिन की उम्र में पहली बार पेट के जो कीड़ा है उसे, उसकी कृमि दवा है उसे जरूर दें, इससे उनके पेट के कीड़े को जो है ना होंगे। और 6 महीने की उम्र तक हर महीने पशु चिकित्सक से जरूर सलाह लें, और उसकी देखभाल के लिए जो टीकाकरण है वो भी करा मैं अपने बछड़ा को, क्योंकि 3 महीना खोए हुए जान पर उसे गलघोटू और लंगड़ा बुखार जैसे जो रोग हैं इनसे बचाव के लिए टीकाकरण भी लगाए जाते हैं।
1: हाँ ममता बहन, और बच्चे की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो बांधने की जगह हो बहुत साफ़ सुथरी हो और गीली ना हो। कई बार क्या होता है, हमारे किसान भाई गीली जगह में बांध देते हैं, तो उससे जो बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो गीले की वजह से लगते हैं, फंगस वाले रोग हैं, कई बार उसमें कीड़े पनप जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है साफ़ सुथरी जगह हो, तो जो बच्चे होते हैं वो साफ़ सुथरी जगह में जल्दी सर्वाइव करते हैं और बहुत अच्छे होते हैं।
0: यानी पशुशाला की अपनी जो है नियमित सफाई रखें, उसको सूखो रखें, और पशुशाला के चारों तरफ जो चूनो चूना है पिसो हो उसको भी डालते रहें, उससे जो भी कीट हैं वे ना आते हैं और हमारी पशुशाला जो है स्वच्छ रहते हैं।
1: हाँ ममता बहन, और बच्चे को जो है 1 से 2 महीने तक दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे किसान भाई दूध पिलाना छोड़ देते हैं और वो लालच के चक्कर में आके वो दूध ज़्यादा दुहना शुरू करते हैं। तो एक थन तो जो है बच्चे का होना चाहिए, और वो कम से कम 2 महीने तक उस बच्चे को पिलाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चारा दें जिससे बच्चा खाना शुरू करे।
0: तो भैया ये तो ही हमारे नवजात पशुओं की देखभाल के बारे में कुछ जानकारी, कुछ बातें। और अब हम एक हमारे कार्यक्रम में एक भेंट बढ़ता है जिसको विषय है कृषि उत्पादन में फसल चक्र का महत्व। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्री ओम प्रकाश सिंह, और आपसे बातचीत करके जानकारी जुटा रहे हैं हमारे भैया डॉक्टर विनय वर्मा। तो भैया बहनों सुन लेते हैं जा भेंट वार्ता।
2: किसान साथियों, फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए हम कई विधियों को अपनाते हैं, कई बातों का ध्यान रखते हैं, तभी हम उत्पादन को बढ़ा पाते हैं। चाहे वो बीज की बात करें, सिंचाई की बात करें, या खरपतवार और कीट नियंत्रण की बात करें, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत आवश्यक हैं, उन्हें हम भूल जाते हैं। हम ये भी देखें कि किस खेत में कौन सी फसल उगाते हैं, साल में कितनी फसलें उगाते हैं, और किस फसल के बाद कौन सी फसल उगाते हैं, इस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी फसल चक्र को भी अपनाना चाहिए, और कृषि उत्पादन में फसल चक्र का महत्व क्या है इसके बारे में और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री ओम प्रकाश सिंह, जो कि एग्री क्लिनिक के संचालक हैं, कृषि विशेषज्ञ भी हैं। ओम प्रकाश जी, ये बताएं कि हमारे किसान भाई तो खेती बाड़ी करते हैं, उन्हें पता है कि कैसे हम फसलें उगाते हैं, और नए नए जो तौर तरीके हैं उनका हम प्रयोग करते जा रहे हैं, लेकिन जो पुरानी बातें हैं और पहले जो वैज्ञानिक बताते थे कि फसल चक्र को भी अपनाना चाहिए, यानी फसलों को बदल बदल करके बोना चाहिए, तो आप बताएं कि फसल चक्र क्या है और किन किन क्षेत्रों में इससे फायदा होता है।
3: आज हम किसान भाइयों का जो है स्वागत करता हूँ कि कुछ चीज आपने अपने अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि हम खेती करते हुए शुरू से आ रहे हैं और कृषि उत्पादन करते आ रहे हैं। कभी सीरियल क्रॉप उगाया, कभी लेगुमिनस क्रॉप उगाया, कभी जो है एरोमेटिक प्लांट मेंथा भी उगाया, लेकिन हमारा किसान फसल चक्र पर ध्यान नहीं देता है। वो केवल आर्टिफिशियल प्रोडक्शन को जो है ज्यादा ध्यान देता है, जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके। इससे जो है हमारी जमीन उत्पादन तो हो जाता है लेकिन क्वालिटी नहीं मिलती है। जब गुणवत्ता के लिए बात होती है तो हमको रेट नहीं मिल पाता है। किसान भाई, आप उत्पादन करते हैं लेकिन जमीन की उर्वरता शक्ति गायब हो जाती है। जो हमारे जमीन में लाभकारी जीवाणु रहते हैं, बेनिफिशियल जिसको कहते हैं, वो जीवाणु जो है हमारे जो है जमीन के लिए सीएन रेशियो, जिसको कहते हैं कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात, कार्बन अनुपात आज जो देखा जाए तो हमेशा 0 के कगार पे आ रहा है, 0.2 0.8 आ रहा है, जबकि 10 से 12 अनुपात होना चाहिए कार्बन। कार्बन एक ऊर्जा का स्रोत भी होता है और बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाता है। जब तक कार्बन नहीं रहेगा कुछ नहीं होगा। हमारा जमीन, हमारा किसान उत्पादन तो कर रहा है, फसल चक्र पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर वो फसल चक्र अप्लाई करे और उत्पादन भी बढ़िया होगा। आज हम धान की खेती करते हैं, तिलहन की फसल करते हैं, लुगवनिस क्रॉप करते हैं, लेकिन फसल चक्र के आधार पर उसको कोई ध्यान नहीं है।
2: फसल चक्र का मतलब क्या है?
3: फसल चक्र का मतलब क्रॉप रोटेशन इसको कहते हैं कि जब एक फसल बोया गया है दूसरी फसल बदल के बोइए। कभी गहरी जड़ वाली बोया जाए तो उसके बाद उथली जड़ वाली बोया जाए। जैसे धान लगा दिया फिर चना बो दीजिए, इससे क्या होगा, जमीन का उर्वरता शक्ति भी बढ़ेगी। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, जो आपका चना है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन रहता है, इसको जीवाणु के जरिए वो जड़ों पर करेगा, फसल को तो देगा देगा लेकिन अगली फसल के लिए भी फायदेमंद होता है।

0: इससे हमारा कार्बन की मात्रा जो है आपका सही सलामत होगा। आज फसल चक्र हमारा किसान नहीं कर रहा है, वो धान के बाद धाने लगा रहा है, गन्ना के बाद गन्ना ही लगा रहा है, और कभी कभी लेग्यूमिनस क्रॉप पर ध्यान नहीं दे रहा है। तिलहन फसल अगर कर रहा है तो तिलहन ही कर रहा है।
1: किसान भाई प्राय सोचते हैं कि जिन फसलों से हमें ज्यादा फायदा है उनको हम उगाते हैं और लगातार वही उगाते जाते हैं, तो ये किस हिसाब से नुकसानदायक है? यदि कोई गन्ना के बाद गन्ना बोता है, धान के बाद धान बोता है, तो इससे क्या नुकसान होता है जमीन का?
0: ऐसा है, आज जमीन का हरासमेंट हो रहा है, आज हमारी जमीन की उर्वरता शक्ति गायब हो रही है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गायब हो रही है, जल धारण क्षमता रुकावट नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक कार्बन नहीं रहेगा। इसके लिए आप हरी खाद भी उगा सकते हैं, हरी खाद कार्बन को जो है मात्रा को बढ़ाएगा, आज हमारी जमीन की उर्वरता शक्ति बढ़ाएगा, मृदा वायु संचार को बढ़ाएगा, मृदा ताप को भी सही करेगा। आज हम सिंचाई करते हैं, एक घंटे में दरार फट जा रही, क्यों? क्योंकि पानी लीच हो रहा है। ये ज्यादा ज्यादा यूरिया का हम लोग यूज कर रहे हैं, डीएपी का यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम आर्टिफिशियल फसल चक्र अप्लाई करेंगे तो हमारे किसान कम लागत से अधिक उत्पादन कर सकता है, उसकी गुणवत्ता भी मिलेगी। जब गुणवत्ता मिलेगी तो उसका दाम अपने आप मिलेगा। आज किसान जो है पैसे के पीछे भाग रहा, केवल एक ही क्रॉप को उगा रहा है। तो हमारा किसान भाई आपसे एक अनुरोध है, रोटी दाल सब्जी आप रोज खा रहे हो, कभी पूड़ी खाते हो, कभी जो है मीट खा लेते हो, कभी वो खाते, क्यों अपने स्वाद को बदल रहे हो? जमीन का स्वाद क्यों नहीं बदल रहे हो? आज हमारा किसान अगर स्वाद बदल दे, कभी आप फसल चक्र को महत्व दे, तो हमारी जमीन की उर्वरता शक्ति भी बनती रहेगी, मृदा वायु संचार रहेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता बढ़ेगी, तो पानी की जरूरत उतना नहीं पड़ेगी, उतना उर्वरक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के पीछे पड़ रहा है कि जैविक विकास किया जाए, जैविक खेती किया जाए, बर्मी कंपोस्ट किया जाए, केचुआ की, आज हमारा केचुआ खत्म हो चुका है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक्सेस फर्टिलाइजर, ज्यादा से ज्यादा उर्वरक यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है। यूरिया केवल तने को बढ़ाएगा, उसके बाद थोड़ा सा जब तना बढ़ गया तो प्रोडक्शन उतना नहीं होगा, कीड़े मकोड़े का प्रकोप होगा और हमारा खरपतवार भी ज्यादा आएगा। अगर हम सीरियल के बाद लेगुमिनस करा दें तो खरपतवार कंट्रोल हो जाएगा, हमारा पेस्ट और इंसेक्ट वो भी कम हो जाएगा, बीमारी भी कम हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल देखा है किसान भाइयों, रोज मैं सुन रहा हूँ कि बैगन के खेत में बैगन ही लगा रहा है, सूखने की बीमारी आ रही है, मेंथा के खेत में मेंथा ही लगा रहा है, क्यों नहीं चेंज कर रहा है? गुणवत्ता जो है इसके जमीन की उर्वरता शक्ति को और बढ़ाए। अगर एक ही क्रॉप को आप बदलते, जब से हम खाने में स्वाद को बदलने के लिए करते हैं, वैसे हमारी जमीन का, धरती माता है, इसके अभी स्वाद बदलो।
1: कुछ बातें आपने बताई है कि भाई बदल बदल करके फसलों को बोना चाहिए, एक साल में किसान कितनी फसलों को उगाए हमारे किसान, इसके बारे में बताएं, और किस फसल के बाद क्या क्या दूसरी फसल लगा सकते हैं और वो किस प्रकार से लाभदायक है, इसके बारे में बताएं।
0: इसे आप सीरियल क्रॉप उगा रहे हो, धान की खेती में खरीफ में आप उगा रहे हो, धान के बाद आप जो है चना उगा दो, अगर आप धान के बाद ज्वार उगाए या कोई भी चारे की फसल उगाए या गहरी जड़ वाली उगाए, तो आपको खरपतवार जो है बहुत ज्यादा होगा। जब खरपतवार ज्यादा होगा तो आप उसको जो है बीडीसाइड का प्रयोग करते हो, बीडीसाइड का दवा खर्च होता है, कीमत ज्यादा जाती है और आपकी लागत ज्यादा लगती है, वो प्रोडक्शन नहीं होता है। इसलिए अगर आप धान के बाद जो है चेंज कर सकते हैं, कभी मटर उगा लो, मटर से भी आपका जो है जमीन की उर्वरता शक्ति होगी, कभी चना उगा लो, कभी उड़द उगा लो। आज के युग में हम लोग क्रॉप रेजिड्यू पर भी ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पर फलियों को तोड़ करके उसके अवशेष को अगर हम सड़ा दें तो हरी खाद के रूप में हो जाएगा। जो जड़ों में जो है, जो जमीन में जितना नाइट्रोजन आपको संचित करेगा, अगली फसल को नाइट्रोजन उतना नहीं देना पड़ेगा। सपोज कीजिए अगर आप 50 किलो नाइट्रोजन डालना चाहते हो, 100 किलो डालना चाहते हो, तो उतना नाइट्रोजन आपका कुछ फसल ऐसी है कि उतना नाइट्रोजन छोड़ के जाती है, कभी 30 किलो छोड़ दिया, कभी 50 किलो छोड़ दिया, कभी 20 किलो छोड़ दिया। आज के युग में जो हम ऑर्गेनिक में जा रहे हैं, फास्फेटिक पे, हमारा किसान भाई ये भी कहता है कि ऑर्गेनिक काम नहीं कर रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ऑर्गेनिक काम कर रहा है। जब तक पहले जमाने में हमारा केचुआ बहुत था, आज केचुआ की तादाद गायब हो गई। हमारा किसान भाई खुद मेरी आवाज सुन रहा होगा, कभी बरसात में केचुआ नहीं निकलता है, क्यों? वो मिट्टी का केचुआ था। आज मैं आर्टिफिशियल बाहर के केचुआ पर हम यूज कर रहे हैं, आइसिनिया फोटेटा यूज कर रहे हैं, यूडलिस कर रहे हैं, केचुआ की खाद बना रहे हैं। आज हमारा किसान, उसके लिए गोबर चाहिए, गोबर भी ताजा नहीं चाहिए, जमीन की उर्वरता शक्ति के लिए 20-25 दिन पुराना गोबर में हम केचुआ स्कीम निकाल रही है, हर चीज कर रही है, आपको हर संदेश दिया जा रहा है, हर जगह मेला लग रहा है, हर गोष्ठी हो रही है, हर जगह हो रहा है, लेकिन हमारा किसान आता है लेकिन सुनता है, उसको आप पालन नहीं कर रहा है।
1: क्या कारण है? क्योंकि हर जगह जानकारी मिलने के बावजूद भी, जानकारी देने के बावजूद भी, गोष्ठी में जाने के बावजूद भी, किसान भाई इसकी तरफ आ नहीं पाते हैं, क्या कहीं उनको दिक्कत होती है क्या?
0: उनकी मेन प्रॉब्लम ये हो रही, किसान भाई कौन करेगा? आज क्योंकि मैं, अगर आप खेती कर रहे हो, कृषि उत्पादन कर रहे हो, तो पशुधन रखना पड़ेगा। पशुधन रखोगे तो उसके लिए चारे का इंतजाम करना पड़ेगा, उसके पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारा किसान इसको नहीं करना चाहता। अगर आप एक गाय रख लीजिए, मैं वादा करता हूँ 5 एकड़ जमीन के लिए आपको किसी भी उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाय का गोबर, गाय का पेशाब, गाय का बछड़ा आपको फ्री मिल रहा है, गाय का दूध फ्री मिल रहा है। आज इतना चीज सुविधा है, दूध आपको अवेलेबल मिलेगा, आपके स्वास्थ्य को भी सही होगा। आज हमारा स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। क्यों बिगड़ चुका है? क्योंकि टॉक्सिक रेजिड्यू आ गया है, चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे बीडीसाइड हो। आज हमारी बीमारी तमाम के हो गया, कोई ब्लड प्रेशर हो रहा है, कोई डायबिटीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक्सेस हम फसल चक्र को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जमीन की उर्वरता शक्ति गायब हो रही है। जैसे सपोज किसान भाई, आपका पेट अगर सही है तो चाहे जो खा लो डाइजेस्ट हो जाएगा। आज जमीन पे जो डाइजेशन करने के लिए, उसको रखने के लिए तत्व नहीं रह गया, पोषक तत्व हमारा हरेसमेंट हो गया। आपको पौधे को चाहिए केवल एनपीके नहीं चाहिए, उसको चाहिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। हमारा किसान इसको नहीं देता है। केवल यूरिया, डीएपी या एनपीके के अलावा कृषि उत्पादन करना चाहता है, उत्पादन नहीं हो पाता है।
1: खरपतवार खेतों में बहुत हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए हमारे किसान भाई जो रासायनिक दवाएं हैं उनको नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं, और ये हमारे वातावरण के लिए भी, जमीन के लिए भी, पानी के लिए भी नुकसानदायक है। तो फसल चक्र के माध्यम से क्या खरपतवारों को रोका जा सकता है?
0: आज के युग में कोई भी खरपतवार को, अगर आप कोई सीरियल क्रॉप है या खरीफ में आप कर रहे हैं, धान वाली फसल उगा रहे हैं, दूसरा उसी वैरायटी उसी फैमिली का अगर उगाओगे तो खरपतवार ज्यादा होगा। अगर उसको चेंज कर दें, फसल चक्र अप्लाई करके चना कर दोगे, लेगुमिनस क्रॉप कर दोगे, दलहनी फसल उगाओगे तो खरपतवार नहीं आएगा। ऐसे अगर आप तिलहनी करोगे तब भी नहीं आएगा। अगर आप एरोमेटिक या कोई भी गेंदा की खेती कर रहे हो, पैसा वहां भी है। हमारा किसान का सुझाव नहीं हो रहा, केवल वो केवल धान, गेहूं, गन्ना के अलावा तीसरा ध्यान नहीं दे रहा है। कभी कभी आपके यहाँ मटर बो सकते हैं, उर्द बो सकते हो, फूलों की खेती कर दो, गेंदे की खेती कर दो, उसके बाद सब्जियों को भी कीजिए। लेकिन बार बार सब्जियों की खेती एक खेत में न करो। जिस खेत में आप बैंगन कर रहे हो, टमाटर कर रहे हो, तुरंत चेंज करो, उसकी जगह पर दूसरा चीज कीजिए, तो खरपतवार भी कंट्रोल होगा, कीट भी कंट्रोल होगा, इंसेक्ट भी आपका कंट्रोल होगा, और फफूंद कोई रोग भी पनपेगा नहीं। इससे हमारी जमीन की उर्वरता शक्ति भी सही रहेगी और आपका जल धारण क्षमता भी बढ़िया होगी। जहां आप 5 सिंचाई कर रहे हो, वहां 3 सिंचाई पे काम हो जाएगा। आज हमारा किसान जौ की खेती नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उस पर खाद की कमी है, उसमें खाद भी कम लगता है, पानी भी कम लगता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है। जब जरूरत होगी कहीं भी हमारा किसान अगर पूजा पाठ में है तो जौ मिलता नहीं। पहले जमाने में हम लोग करते थे जौ की खेती, चना की खेती और मटर की खेती, बाजरे की खेती, मक्का की खेती, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। आज हमारे दिमाग में जहां मेंथा हो रहा है, मेंथा ही कर रहा है, जो एक नकल किया जा रहा है। आदमी आर्टिफिशियल हैंडीकैप्ट बनता जा रहा है, बाजार से दवा ला रहा है, दवा का फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, इससे जमीन की हरासमेंट होते हुए हमारे जो लाभकारी जीवाणु मर चुके हैं उनको जिंदा रखने के लिए मृदा वायु संचार करना है तो लाभकारी जीवाणु रहना चाहिए, उसमें जीवाणु होना चाहिए, एक्टिनोमाइटिस होना चाहिए, और उसके बाद कवक भी रहता है। लेकिन हमारा किसान इसमें, हमारे जमीन में नेमेटोड भी रहता है, जब नेमेटोड लग जाता है तो उसका हम निदान नहीं कर सकते हैं।
1: किसान भाई ये कोशिश करते हैं कि उन फसलों को बोएं जिनसे हमें डायरेक्ट लाभ ज्यादा मिले, और उन फसलों को बोएं जो आसपास बोई जाती है। इसी वजह से वो वैज्ञानिक की सलाह बहुत कम मानते हैं और सोचते हैं कि इन फसलों से ज्यादा फायदा है, चाहे हम मेंथा की बात करें, गन्ना की बात करें, या जिन इलाकों में फूलों की खेती होती है वहाँ फूलों की खेती ज्यादा करते हैं। तो इस परंपरा को तोड़ने के लिए उपाय किए हैं कि हर प्रकार की फसलों को उगाएं, वैज्ञानिक भी बताते हैं, लेकिन पूरा असर नहीं आ पा रहा है। कितनी जरूरत है इन सब फसलों को उगाने?
0: इसके लिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि अगर इस गाँव में 2-3 किसान अगर फसल चक्र को अप्लाई करें, उसकी फसल को देखेंगे, उसकी जमीन को देखेंगे, उसकी सिंचाई, उसकी लागत कम लगेगी, तो मैं वादा करता हूं कि सभी किसान उसका अनुसरण करेंगे। इसके लिए हमारा एग्रीकल्चर विभाग इस पर गोद लेना पड़ेगा। जैसे आज के युग में 4 किसान को चयन किया जाए, उनको फसल चक्र के बारे में बताया जाए, वैसी फसल उगाया जाए, उसे उगाने के बाद उसकी कीमत को भी देखा जाए, मंडी में देखा जाए, जब उनको प्रॉफिट होगा तो हमारा किसान उस पर अनुसरण करेगा। जब तक ये सब प्रोसीजर नहीं होगा, वैज्ञानिक खेती, हम लोग तकनीक बता देते हैं, हर चीज बता देते हैं। हमेशा दिन में कम से कम 1000 फोन आता है कि किसी ने किसी बैगन खराब है, किसी का एलोवेरा खराब है, किसी का धान में आ गया, कोई नर्सरी में पनीरी में गड़बड़ है। तो हमारा मकसद है कि बताना मेरा फर्ज है, करना आपको है। हमारा किसान, जब आपका रोग लग गया या कीड़ा लग गया या खरपतवार होगा, मैं वादा करता हूँ जैविक खेती से अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो आप कोई भी फसल बोने के पहले खरपतवार को निदान कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं, केवल आपका एक थोड़ा खर्चा होगा। जो भी आप फसल उगाना चाहते हो पहले खेत से पानी भर दो, जब सूख जाएगा केवल कोई फसल नहीं है, केवल खरपतवार आएगा। खरपतवार जब आएगा तो थोड़ा सा उसमें 5 किलो 10 किलो यूरिया छिड़क दो, केवल खरपतवार बढ़ेगा। तुरंत ट्रैक्टर या जुताई करके उसको मिट्टी में मिला दो, मिट्टी में मिलाने के बाद तुरंत पानी से भर दो, सड़ जाएगा। जब वो सड़ गया, जब उसमें ओट आ गई, आप जुताई करके कीजिए, आपका जो खरपतवार जीरो हो जाएगा, कम से कम 80% आपका डाउन हो जाएगा।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि ये उपाय करना चाहिए। यदि खरपतवारों के बीज खेतों में उपलब्ध हैं तो उनको आप उगने दीजिए, उनको उसी में मिला दीजिए, हरी खाद भी बन जाएगी और साथ ही साथ अगली बार ये खरपतवार नहीं उगेंगे। तो इस प्रकार से कई ऐसी बातें हैं, कई चाहे कीट नियंत्रण की बात करें, चाहे बीमारियों के नियंत्रण की बात करें, ये सब समाप्त की जा सकती है। और दूसरी बात जो आपने बताई है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में बड़ा फर्क होता है, जब तक हम किसानों को दिखा नहीं पाएंगे कि इस तरीके से इसमें फायदा होता है, तब तक वो बताने से बात सही तरीके से नहीं मानते हैं। और यही कारण है कि हर प्रकार से बात किसानों तक पहुंचाने के बावजूद हमारे किसान भाई अभी इस चीज में आगे नहीं आ पाए हैं कि वो फसल चक्र को अपनाएं, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दें। जब तक हम उन्हें प्रेरित नहीं करेंगे, और इसके लिए गांव-गांव जाकर प्रदर्शन करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, उनके सामने उन फसलों को बोना पड़ेगा और उनके उत्पादन को दिखाना पड़ेगा, तभी वो मानेंगे और तभी हमारे गाँव का विकास होगा, किसानों का विकास होगा। ओम प्रकाश जी, आप हमारे कार्यक्रम आए और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए फसल चक्र की क्या भूमिका है, इस विषय पर बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप कृषि उत्पादन में फसल चक्र का महत्व विषय पर भेंटवार्ता सुन रहे थे। जानकारी दे रहे थे श्री ओम प्रकाश सिंह, आपसे बातचीत कर जानकारी ले रहे थे डॉक्टर विनय वर्मा।
3: और अब्दुल भैया, हमारे भैया बहन इस जानकारी को सुन के बहुत अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि फसल चक्र अपनाने से कितना लाभ है हमारी खेती में और कितनी उससे आय की प्राप्ति होगी और अधिक उत्पादन मिलेगा। जब अधिक उत्पादन मिलेगा भैया बहन, तो देखी जाए तो जाहिर सी बात है कि हमारे घर में खुशहाली होगी और अच्छी तरह से परिवार को पालन पोषण होएगा। और अब अब्दुल भैया, अपने भैया बहन के साथ मिलके कर लेते हैं मनोरंजन। लोकगीत है नाजुक नरम कलाई रे, इसको अपने मधुर स्वर से सजाओ है शशि लता ने।

0: साथियों, अभी आप लोकगीत सुन रहे थे। अब सुनवाते हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत पशु आहार विक्रेता से वार्ता। जानकारी दे रहे हैं श्री गुरमीत सिंह। आपसे बातचीत की है हमारी ममता बहन ने। ये हैं लोहियापुर बरखेड़ी, ब्लॉक काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के।
1: किस खेत में
2: पर आए हुए हैं, हम सबसे पहले तो आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे।
3: मेरा गुरप्रीत सिंह है, शॉप है अपनी श्री गुरु कृपा एनिमल फीड के नाम, गाँव बरखेड़ी।
2: ब्लॉक कौन सा है?
3: ये काशीपुर है।
2: फीड की दुकान है, हम देख रहे हैं। कब से शुरुआत करी है इसकी?
3: मैम शुरुआत के हुए 2.5 साल हम सब हो चुके हैं।
2: तो भैया जी, आपकी बात करें आयु की, मतलब कितनी होगी लगभग?
3: अपनी आयु जी 45 के लमसम
2: है जी। तो 45 की आयु है, आपने 2.5 साल से बिजनेस शुरू करा है। एक आइडिया आपके कहां से दिमाग में आया और कहां जानकारी प्राप्त की है?
3: ये मैम जानकारी तो अपना लोग खुद डेयरी फार्म में एक बार बिजनेस करने के बाद फेल हो चुके थे
2: जी,
3: जो की हमें प्रॉपर जानकारी नहीं देता सभी फीड वाला ना। सब ये कहते थे ये उठाओ ये डाल दो, ये 8,000 रुपया डाल दो, 10,000 वाला कंपनी में हाथ लिखा हुआ
2: जी।
3: तो दरअसल सच कोई बता नहीं रहा, इसलिए हमारी डेयरी का प्लेटफॉर्म खराब होता है। प्लेटफॉर्म खराब होने की वजह से हम लोगों ने अपनी शॉप चालू
2: जी। तो यानी डेयरी की जो घाटा आपको हुआ उसके बाद आपने अपनी शुरुआत करी है
3: जी।
2: यहाँ पर जो आपने प्रोडक्ट रखे हैं वो कौन कौन से हैं और कब से इसकी शुरुआत करी जाती है, किन कटरा कटियों को दिए जाते हैं?
3: जी मैम, दरअसल चक्कर होता है, भैंस ब्याने से जीरो से जैसे ब्याती है उसके बाद बछिया को दिया जाता है जीरो से
2: जी। जैसे जिस तरह से हम अपने जो बच्चे होते हैं उनको शुरुआत करते हैं 6 महीने से सेरेलैक्स वगैरह देते हैं, उसी तरह से ये कटरा कटिया जो होते हैं उनके लिए आप जीरो से शुरुआत करते हैं। तो जीरो से कौन से जो उनके लिए हार है उसके लिए दिए जाते हैं?
3: मैं जी फीड यहाँ पर कारगिल फीड सेल करता हूँ
2: जी।
3: कारगिल, आशीष और कोरल फीड है मेरे पास, स्काई लार्क है। इन फीडों का सब में सप्लीमेंट मैंने कारगिल फीड कर रखे हैं और आशीष कर रखे हैं जो बच्चों को देने के काम आ
2: जी। तो इसके लाभ कौन से हैं भैया?
3: इसमें जैसे काफ स्टार्टर है ये 0 से 3 महीने तक खिलाएगा।
2: तो भैया इसमें क्या क्या चीज पाई जाती है?
3: इसमें अपने प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, संतुलित में अच्छा होता है, इसमें विटामिन ए डी के बी ये सब कुछ होता है, पाचन में भी अच्छा भरपूर वो करता है।
2: तो लाभ कौन से मिलते हैं इसमें?
3: लाभ अच्छे मिलते हैं, ये लाभ सबसे दूध छोड़ने के तनाव से कम करने के लिए होता है, फिर रूमन का विकास करता है, फिर डायरिया जो उससे बचाव होता है बच्चे का ना 0 से 3।
2: खुराक की मात्रा कैसे दी जाती है और कितना देना चाहिए?
3: खुराक जानवर के हिसाब से, अगर पहले 0 से तो नहीं आप बच्चा खा पाता, 15-20 दिन से स्टार्ट करता है।
2: हाँ भैया,
3: तो 15-20 दिन से उससे पहले एक मुट्ठी मान लो 200-250 ग्राम खिलाया, फिर 400 ग्राम पे ऐसे रूई डूई बढ़ती जाती है उसके जानवर।
2: तो ये छोटा बच्चा होता है तो इसको कैसे खिलाया जाता है भैया?
3: ये दूध में डाल करके खिलाया जाता
2: है। अच्छा, दूध तो जो बच्चा माँ का है वो पीता है, लेकिन उसको कैसे पिलाते हैं फिर?
3: उसमें परात में रख के फीड को परात में डाल दिया जाता है जो कि साथ में खा लेता है ना जानवर।
2: अच्छा,
3: साथ पानी रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो जानवर को प्यास लगती है सिर्फ फीड से ना। इसे हरा चारा नहीं खिलाया जाता 3 महीने।
2: ये तो 3 महीने तक बात की है, इसके बाद आगे कौन से देने हैं?
3: फिर हरा चारा आ जाता है तो फिर आता है काफ ग्रोवर।
2: अच्छा,
3: काफ ग्रोवर 7 महीने तक खिलाया जाता है, 4 से 7 महीने।
2: इससे भैया क्या बढ़ोतरी होती है बच्चे की?
3: जी, इससे मांसपेशियों में बढ़ोतरी होती है, विकास होता है, इसमें विटामिन और पोषक तत्व भरपूर होते हैं ना।
2: कैसे भैया खिलाना है? 7 महीने से आपने शुरुआत बताई
3: है, हरे चारे के साथ खिलाना है, हरा चारा या सूखा भूसा होता है उसके बीच में करके देना है, प्रतिदिन का देना है 1 किलो से 1.5 किलो, फिर जानवर थोड़ा बड़ा होता है 2 किलो तक, 8 महीने तक लमसम ही खिलाना।
2: तो भैया ये तो आपने 8 महीने तक बताया खिलाने की बात कही है डेयरी जो प्रोटीन सप्लीमेंट है, इसके बाद भैया 8 महीने के बाद कौन सी खिलानी है?
3: 8 महीने के बाद खिलाते डेयरी प्रोटीन
2: जी।
3: डेयरी प्रोटीन जो होता है ये भी उसके विकास के लिए होता है, इसमें जो अपना संतुलित विटामिन पूरे होते हैं और पोषक तत्व होते हैं ना, विटामिन ए डी ई चीजें होती हैं, काफी कुछ होता है, मिलर मिक्सर भी आता है।
2: इस समय हमारे जो 9 महीने की बात की है इसमें काफी विकास होते हैं, हमारे जो कटरा कटिया होते हैं उनके शारीरिक पाचन जो प्रणाली है उसमें भी सुधार होता है, तो उसके लिए ये सब लाभदायक है
3: जी। ये डेयरी प्रोटीन पहले चलेगा ना, ये डेयरी प्रोटीन खिलाने के लिए 8-9 महीने तक ही खिलाया जाएगा, कम से कम 1 किलो हो डेली।
2: तो भैया इसको खिलाने की बात करी है तो कैसे खिलाना है?
3: इसको भी हरे चारे में देना है, सूखा देना है, हरे चारे में कोई भी कीड़े है सूखी देनी है, हरे चारे के ऊपर सूखी डाल।
2: तो यानी जो आपने शुरुआत 0 से 3 महीने की बात बताई थी, जो कटरा कटिया है उनको देने वाली वो दूध के साथ देनी है,
3: वो दूध के साथ,
2: बाकी
3: ग्रोवर और डेयरी प्रोटीन ये दोनों सूखे चारे के ऊपर डालते आता है। इसके बाद में हीफर ड्राई, ये कारगिल फीड के सप्लीमेंट है, हीफर ड्राई काउ आता है इसमें लिखा हुआ, ये 9 महीने से ब्याने तक ही चलता है, जब तक जानवर ब्याता है 12 महीने तक ही खिलाया जाए।
2: तो उस समय तो काफी शारीरिक विकास होते हैं जो कटियां होती हैं हमारे उनके, और बच्चेदानी में विकास होता है, तो उसके लिए सब लाभदायक है
3: जी, उसी के लिए बना।
2: तो इसमें मात्रा की बात करें तो कितनी होनी चाहिए?
3: ये मात्रा 2.5 से 3 किलो
2: जी। तो भैया ये कितनी महीने से कब तक खिलाना है?
3: ये 9 महीने से ऊपर ब्याने तक खिलाना है, ब्याने से 2 महीने पहले,
2: मतलब ब्याने के बाद इसको ना देना?
3: नहीं, नहीं, ब्याने के बाद ये काम नहीं है, ये सब ड्राई जो है ये ब्याने से पहले ही सब।
2: तो भैया ब्याने के बाद भी कुछ आपके पास हमारे डेयरी फार्मिंग के लिए जो उपयोगी है?
3: फिर उसके बाद में जो है ब्याने से 2 महीने पहले चलेगी ट्रांजेक्शन मिक्स फीड
2: जी,
3: ये जाएगी।
2: इसमें कैसे देना होता है भैया इसको?
3: ये भी सूखी ही खिलाई जाती है, हमारे ये तनाव वाली जो गाय होती है ना, जो ब्याने वाली होती है, उनका सेवन में सुधार आता है।
2: तो भैया ब्याने के बाद भी कोई और भी?
3: ब्याने के बाद
2: आहार है,
3: फिर दूध के ऊपर आ जाता है मैम
2: जी। दुधारू पशुओं में भी काफी परेशानी होती है, दूध उत्पादन क्षमता है उनका कम हो जाता है, तो उसके लिए भी कोई है?
3: दूध के ऊपर होती है, अगर ये 10-15 लीटर है तो इसका 8,000 पड़ता है, नहीं कम वाला प्रोटीन का आता है वो बैठे 10,000 भी आता है 8 लीटर दूध के लिए।
2: मात्रा के हिसाब से इसकी बढ़ोतरी होती है, जैसे पशु का दूध है,
3: जैसे कि जानवर का 15 से 25 लीटर दूध हुआ
2: जी,
3: 20 लीटर मान लो
2: जी, जी।
3: उससे तो 8,000 वाला बैग पड़ेगा
2: जी,
3: उससे 8,000 लिखा होता है ना, इनमें मार्का लगा होता है, ये 15 से 25 लीटर दूध के लिए आता है। और अगर कम लीटर 8 लीटर 0 से 8 लीटर जो है दूध,
2: हाँ भैया,
3: तो उसके लिए 4,000 आता
2: है जी। तो भैया इनको खिलाने से दूध की मात्रा बढ़ जाती है और पशु स्वस्थ रहता है?
3: स्वस्थ रहता है, फीड में भी कोई समस्या नहीं आती, अच्छा जीवन लगाओ द्वारा अच्छा रहता है, कंसीव अच्छा करता।
2: तो आपके यहाँ जो हमारे डेयरी का काम कर रहे हैं भैया बहन, वो आते होंगे और लेके जाते हैं, तो उनको आप समझाते होंगे अच्छी तरह से?
3: जी, समझाना पड़ता है, क्योंकि हम तो फेल हो चुके थे, लेकिन आप ये कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक जो भी बेचारे जानवर पाल रहे हैं, बहुत महंगा जानवर है, 1-1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का जानवर है, बंदा फेल ना हो, इसलिए देना पड़ता है प्रोटीन सप्लीमेंट सब देने पर,
2: सारा कुछ उनको जानकारी देते हैं,
3: सारी जानकारी।
2: गुरुप्रीत सिंह जी, भैया आज हमारी आपसे आपकी दुकान पर ही बात हुई और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है पशु आहार जो है आपके पास उनके बारे में, और हमारे किसान भाई इस जानकारी को सुनकर जरूर लाभ उठाएंगे, और आपने अपना जो कीमती समय है वो हमारे भैया बहनों के कार्यक्रम में दिया है और जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल भैया, अब देखो हमारे भैया बहन ने जो बातचीत करी है पशु आहार विक्रेता से, ये सुनी क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में, और अब समय हो चलो है कृषि संकेत को। तो आज के कृषि संकेत में हम बात कर रहे हैं नमी संरक्षण हेतु मल्चिंग विधि का प्रयोग, तो इसकी बहुत ही उपयोगिता है और बहुत ही लाभकारी है मल्चिंग विधि। तो जो नमी है मिट्टी की, इससे पर्याप्त बनी रहता है, और मिट्टी में हर मौसम के अनुसार मल्चिंग करें, बहुत ठंडी मिट्टी पर मल्चिंग करने से मिट्टी को तापमान नहीं बढ़ पाता है, जिससे बीज अंकुरण होने में दिक्कत होता है, इस बात को ध्यान रखें।
0: हाँ ममता बहन, आपने बहुत अच्छी बात बताई, मल्चिंग जो है वो जैसे जो पौधे होते हैं फलों वाले, जो बाग होते हैं, बगीचे होते हैं, फलों वाले होते हैं, या हम गन्ने की फसल में भी कर सकते हैं, और आजकल तो जो लहसुन होता है उसमें मल्चिंग बहुत अच्छी होती है। तो मल्चिंग से बहुत सारे फायदे होते हैं, अगर हम फायदे की बात करें तो एक तो नमी बनी रहती है,
2: हाँ भैया,
0: दूसरा खरपतवार नहीं होते हैं, और खरपतवार पर बहुत ज़्यादा खर्च आता है, अगर खरपतवार हो जाते हैं तो उसे नराई गुड़ाई पर, आज देख रहे हैं आपके दिहाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है, जो उसमें लेबर कॉस्ट है बहुत ज़्यादा आती है, तो मल्चिंग एक बहुत अच्छा उपाय है। दो तरह से मल्चिंग की जाती है, एक तो जैविक विधि से, जैविक विधि का मतलब हो गया कि जो हम ये प्राकृतिक विधि होती है जिसमें मिट्टी में मिलाकर उर्वरता शक्ति बढ़ा देते हैं,
2: हाँ, जैसे सूखी घास है, पत्तियां, तो इनकी जो बात करिए जैविक विधि की, सूखी पत्तियां, पुआल या भूसा है, तो इसकी परत 2 से 3 इंच से ज़्यादा मोटी ना होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखें हमारे भैया बहन। और बहुत मोटी परत जो होता है ना, उससे क्या होता है कि जो पौधा होता है उन्हें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो जाता है, इस बात को ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा आता है कच्ची लकड़ी को उपयोग भी मल्चिंग में करते हैं, तो खेत में ताज़ी हरी लकड़ी है या कच्चे चिप्स को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वे सड़न के दौरान मिट्टी से नाइट्रोजन सोख लेते हैं।

0: दो इंच की पराल से ढक देते हैं और धीरे धीरे वो पौधा अंकुरण होकर आ जाता है और उसमें जब पानी लगाते हैं किसान भाई हमारे, तो वो नमी जो बनी है बनी रहती है बहुत दिनों तक। दूसरा, उसमें खरपतवार नहीं जमते हैं। तीसरा, जब पानी लगता है तो एक दो महीने के बाद धीरे धीरे वो पराल गलना शुरू होता है और एक तरह से वो खाद का रूप ले लेता है और वो ज़मीन जो होती है भुरभुरी हो जाती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी होती है। जब मिट्टी भुरभुरी होती है तो उसमें जो कंद बैठते हैं वो मोटे हो जाते हैं।
1: तो इसके अलावा भैया देखी जाए, ये तो कंद की बात ही, मोटे हो जाते हैं और मल्चिंग पे जो बिछाते हैं उसके समय सावधानी भी बरतना जरूरी है। इससे पहले खेत की तैयारी की बात आता है तो मल्चिंग पेपर बिछाने से पहले खेत को अच्छी तरह समतल कर लें और सभी पुराने जो खरपतवार हैं

0: ही रहता है और जो पौधा है वे भी अच्छे रहते हैं। जिसमें पौधे के बीच की खाली जमीन है वह जैविक सामग्री जो पुआल है, घास है, सूखी पत्तियां हैं, प्लास्टिक है, इस इससे ढको जाता है तो ये मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं और खरपतवार जो होते हैं उनको भी रोकते हैं और फसल की उपज भी बढ़ जाता है।
1: हाँ ममता बहन, एक अजैविक या प्लास्टिक मल्चिंग, दूसरा जो आता है प्लास्टिक मल्चिंग आता है, ये व्यावसायिक खेती में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली विधि है जो लंबे समय तक चलती है। सामग्री की अगर हम बात करें तो इसमें विशेष तौर पर जो प्लास्टिक की शीट होती है वो काले, सिल्वर या सफ़ेद रंग की होती है। अगर हम बात करें इसकी फसलों की, कौन कौन सी फसलों में लगाई जाती है, तो ये टमाटर है, मिर्च है, शिमला मिर्च है और स्ट्रॉबेरी जैसी व्यावसायिक जो फसलें हैं ममता बहन उसमें लगाई जाती है। और इससे बहुत सारा जो हमारा पैसा होता है वो बचता है क्योंकि इसमें पानी की बचत होती है।
0: बिल्कुल भैया,
1: धूप और हवा के कारण मिट्टी का जो पानी सूखने की वाष्पीकरण जो होता है वो रुकता है और जिससे सिंचाई की जरूरत काफ़ी कम होती है।
0: इससे सिंचाई की आवश्यकता लगभग 20-30% तक कम हो जाती है सामान्य सिंचाई से। और यह गर्मियों में मिट्टी को ठंडा और सर्दियों में गर्म भी रखता है जिससे पौधन की जड़न को विकास अच्छे से होता है। ये तो ही भैया खेत जो नमी संरक्षण हेतु मल्चिंग विधि के प्रयोग पर बातचीत। और अब हमारे कार्यक्रम में समय जो है ज़्यादा ना बचो है, जो अपने भैया बहन से और बातें करें। लेकिन जो हमारे कार्यक्रम में कल कार्यक्रम में जो बदलाव भए हैं उसके बारे में अपने भैया बहन को बता दें।
1: हाँ ममता बहन, जैसे अगर बात करें बुधवार की, पहले बुधवार की तो सफल कृषक से वार्ता कराई जाती है और दूसरे बुधवार को सफल महिला कृषक से बात वार्ता कराई जाती है और तीसरे को मासिक कृषि गोष्ठी का आयोजन किया जाता है और चौथे को सफल कृषक स्टार्टअप सुनवाया जाता है और अगर पांचवा बुधवार होता है तो सफल कृषक।
0: इसी तरह से बात करें महीने के पहले गुरुवार की तो आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष कार्यक्रम सुन सकेंगे हमारे भैया बहन। और एक कृषि पत्रिका खेत कल्याण दूसरे गुरुवार को और चौथे गुरुवार को कृषि पत्रिका खेत खलियान, तीसरे गुरुवार को आकाशवाणी गांव में और चौथे गुरुवार में आकाशवाणी गांव में ग्राम पंचायत संकलन विशेष कार्यक्रम सुनेंगे।
1: हाँ मैम, तो है ना, अगर आता है शुक्रवार तो शुक्रवार को, पहले शुक्रवार को लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनवाया जाता है, दूसरे शुक्रवार को कृषि शंका समाधान समस्या व उससे जुड़े समाधान सुनवाए जाते हैं, तीसरे को लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित होता है, चौथे को कृषि शंका समाधान समस्या व उससे जुड़े समाधान और पांचवा अगर शुक्रवार होता है तो लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनाया जाता है।
0: तो इसके लिए भैया हमारे भैया बहन मोबाइल नंबर है वो लिख लें, 0595 यह कोड और 2324326 इस पर फ़ोन के माध्यम से आप अपनी समस्या को हल पा सकते हैं। कोई सुझाव है वो हम तक लिख के भेज सकते हैं, फरमाइशी लोकगीत की फरमाइश दे सकते हैं। साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर और SMS नंबर है 9410087876।
1: हमारा ईमेल का पता है patramila@rampur.gmail.com। सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, आकाशवाणी रामपुर पर सुन सकते हैं।
0: इसके साथ ही पत्राचार हेतु हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901। और भैया आप बता दो कल के कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी।
1: हाँ ममता बहन, कल जो कार्यक्रम होंगे वो पहले चर्चा सुनवाई जाएगी, वन महोत्सव सप्ताह, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग, भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी, सफल कृषक से भेंट, धान की सीधी बुवाई की देखभाल जिसमें वार्ता जानकारी देंगे डॉक्टर संजीव कुमार, आपसे बातचीत करेंगे हमारे भैया प्रवीण कुमार, कृषि संकेत सुनवाया जाएगा और साथ साथ मौसम की जानकारी दी जाएगी।
0: और भैया आप देख रहे हो हमारे जो मौसम है वो काफ़ी बारिश को हुई चुको है और आगे भी होने वालों है, इसको का अनुमान है, कल के मौसम की भी कुछ जानकारी दे दो अपने भैया बहनन के लिए।
1: हाँ ममता बहन, अधिकतम तापमान कल का जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना व्यक्त की गई है, अगर बात करें न्यूनतम तापमान की तो वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना व्यक्त की गई है, अगर बात करें आर्द्रता की तो 81% और हवा की गति जो है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा बहने की भी संभावना व्यक्त की गई है। और साथ साथ ममता बहन आकाश में बादल छाए रहेंगे और

0: 70% वर्षा की भी संभावना व्यक्त की गई है।
1: तो भैया ये तो ही कल के मौसम की जानकारी, लेकिन भैया जो मौसम बारिश को आओ है इसमें ऐसा ना है कि बहुत भैया बहन को मन करता है कि तले भुनी चीज़ें पकौड़ा बनाओ खाओ, बारिश हो रही है तो वो अपने घर पे बना कर तो खाएं, लेकिन बाहरी जो चीज़ें हैं उनसे बचाव रखें, क्योंकि खान पान इस समय बहुत सीमित मात्रा में करने हैं, ज़्यादा तलो भुनो बाहरी चीज़ें इन सब चीज़ें से बचाव रखने हैं। जो कहते हैं खान पान होता है ना, उससे कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, और जब हमारा खान पान शुद्ध होएगो, अच्छा होएगो, शाकाहारी होएगो, संतुलित भोजन होएगो, तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर कोई असर भी ना होएगा और हम स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो हमारी खेती बाड़ी अच्छे से होएगी, खेती बाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आवे, क्योंकि हमारे भैया बहन धान लगा उनकी तैयारी कर रहे हैं, कुछ भैया बहन ने लगाए भी दिए हैं, तो उस दौरान सावधानी बरतना भी बहुत ज़रूरी है।
0: हाँ ममता बहन, आपने बहुत अच्छी बात बताई, साथ साथ बारिश के मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा पनपते हैं, तो ऐसे में जब सोएं तो या तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, और बहुत सारे ऐसे ओडोमास हैं और ऐसे क्वाइल्स हैं लगा के मच्छरों से निजात पा सकते हैं।
1: हाँ भैया वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा हमारे भैया बहन क्या कर सकते हैं, नीम की पत्तियां ले लें, भूसा ले लें, उसे सुलगा लें, उससे हमारे पशु भी सुरक्षित रहेंगे मच्छरों से और हम बचे रहेंगे। ये तो सबसे आसान और सरल और सस्तो तरीका है मच्छरों से बचाव को।
0: हाँ ममता बहन, और पशुओं की आपने बात की है तो पशुओं के लिए भी मच्छरदानी बड़ी बड़ी आती है, और हमारे पशुओं को मच्छर ना काटें, मच्छर काटते हैं तो दूध का उत्पादन कम हो जाता है। तो अब ममता बहन समय हो चला है विदा लेने का, तो अब अपने भैया अब्दुल हफीज को
1: और अपनी बहन ममता को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दें। राम राम, राम।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए, इंग्लैंड में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री।

शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रृंखला का पहला भाग, कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार, संपादन सहायक झरना सोलंकी, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम शाम 6:45 पर दोबारा सुना जा सकता है। भूले बिसरे गीत आपको सुनवाएंगे सुबह 7:00 और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम हम है राही प्यार की। तिरवणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 8:15 पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं दोपहर 2:00। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 और रात 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। कल सुबह 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार सी अर्जुन पर। आलेख और स्वर है अशोक सोनावने का। प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं रात 9:30 पर। कल दिन में 10:00 पिटारा के अंतर्गत सुनिए सेलोलाइट के सितारे में गीतकार, शायर और लेखक शकील आजमी से की गई ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन सहायक का

कल रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी। दिव्य लेखक है मनसुख देसाई, निर्देशक है सत्येंद्र शर्मा। रात 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। रात 10 बजे छायाचित्र में सुनिए मंदाकिनी जोशी को, प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह नेगी। कल रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे कार्यक्रम होगा रंग तरंग। देश विदेश की ताजा तरीन खबरें जानने के लिए सुबह व शाम 6 बजे, मध्यान्ह 12 बजे, सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 2:15 पर दोपहर समाचार और रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या सुनिए। कल सुबह और शाम 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा। ये थी जानकारी आज की शेष।

मुकेश और साथियों की आवाजों में अगला गीत है, रचना है भरत व्यास की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है संत ज्ञानेश्वर।

0: संगीत सरिता।
1: मित्रों नमस्कार, संगीत सरिता में विविध भारती के खजाने से कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हम आपके लिए चुनकर ला रहे हैं जो अपने आप में अनूठी हैं, क्योंकि वो दुर्लभ हैं और अमूल्य हैं। आइए आज सुनते हैं किराना घराने की वरिष्ठ गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हंगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत।
2: डॉक्टर गंगूबाई हंगल जी नमस्ते।
3: नमस्ते।
2: सुना है कि आपकी माता जी कर्नाटक संगीत पद्धति की विदुषी थी, फिर भी आपको हिंदुस्तानी संगीत के प्रति कैसी प्रेरणा मिली?
3: उस वक्त ऐसे है, ज्यादा हिंदुस्तानी सुनने को मिलता था। मेरी माई कर्नाटक गाती थी, हम किसी को नहीं सुना उस वक्त।
2: अच्छा।
3: इसलिए जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड जी आते जाते चाय के दुकान में हो या किसी के घर में हो, हम सुनते थे, वो हम सुन के थोड़ा थोड़ा गाने लगे
2: हिंदुस्तानी
3: संगीत।
2: अच्छा।
3: उस वक्त झोरा भाई, जानकी भाई और पैरा साहेब, ऐसे लोगों के हमने, मुझे याद है वो नाम इतने, वो हमने गाने लगे थोड़े बहुत सुन सुन के घर में। मुझे, मेरे माँ को ऐसे लगा इसको हिंदुस्तानी संगीत पसंद है, इसको सिखाएंगे, इसलिए
2: हिंदुस्तानी संगीत
3: सिखाएंगे। बाद में वो थोड़ा इधर से धारवाड़ में हमारा जन्म है, बाद में मुझे उस हुबली ले गए, वहाँ उलगुर कृष्णाचार्य करके
2: संगीत विद्वान
3: हुए, अब्दुल करीम खान के शागिर्द थे। अच्छा। उसके पास एक साल तक हमने
2: शिक्षा।
3: एक साल में मुझे ऐसा लगता है 50 धृत लय की वो चीजें बंदिश हमको बताए।
2: अच्छा।
3: मेरे आवाज पतला बहुत था।
2: अच्छा।
3: वो तो 3-3 मिनट में एक एक बंदिश में 2-2 ताने ऐसे कुछ वो बताए थे।
2: अच्छा।
3: हम ऐसे छोटा मोटा कहीं हमारे माँ का प्रोग्राम, हम बीच में हुए, मैं भी गाती थी,
2: स्वर लगाती थी।
3: अच्छा। नहीं, अलग से, क्योंकि मेरे माँ ने थोड़े बहुत शुरू में जो मुझे सिखाए स्वर के ज्ञान उनसे हो गया मेरे माँ से।
2: अच्छा।
3: हाँ, वो सुबह सुबह, उस वक्त मुझे बहुत छोटी थी उम्र में, 9-10 साल की, 5 बजे मुझे उठाती थी।
2: अच्छा।
3: हाँ, कर्नाटक स्वर तो कर्नाटक हिंदुस्तानी तो अलग नहीं है,
2: बिल्कुल सही बात।
3: इसलिए स्वर का साधना मेरे माँ से मिल गया।
2: अच्छा।
3: हाँ, वो उनकी पद्धति से मुझे रोज वो 1-1.5 घंटा सूर्यास करवाती थी। बाद में बीच में थोड़ा कुछ वजह से बंद हुआ, बाद में सवाई गंधर्व के पास थोड़े से बड़ी हुई थी, उस वक्त से हमने
2: उच्च शिक्षा
3: प्राप्त हो पाए।
2: डॉक्टर गंगूबाई जी।
3: हाँ।
2: आप तो किराने घराने की प्रसिद्ध गायिका हैं।
3: हाँ।
2: क्या आप किराना घराने के विशेषता के बारे में कुछ बताएंगे?
3: किराने घराने ऐसे हैं, स्वर अच्छी तरह से लगाना, बाकी का बेसुर गाते ऐसे नहीं,
2: बिल्कुल। हाँ।
3: ये स्वर में ज्यादा ध्यान रखे हैं, इसलिए वो तो ऐसे बोलते हैं तंत्रवाद्यकार थे इनके पूर्वज, ऐसे कैसे भी वो ज्यादा स्वर का ध्यान रखते हैं, स्वर के ज्यादा महत्व देके स्वर एकदम आ करके नहीं लगाएंगे, उसको गोल ऐसे आ ऐसे करके लगा के एकदम स्वर में गाड़ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं,
2: मग्न हो जाना।
3: ऐसे गाने का हमारे किराने घराने की पद्धति है।
2: क्या आप गुरुकुल पद्धति में विश्वास रखती हैं?
3: हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि हम आजकल देखते हैं सभी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में संगीत है, फिर वो अच्छे हैं, क्योंकि प्रचार के लिए गायक बनना हो तो गुरुकुल पद्धति चाहिए, नहीं तो उनके लिए क्या होता है, किस घराने से जाना, किसके पास सीखना, ये कुछ मालूम हो जाता है उनको।
2: अच्छा।
3: हाँ, गायक बनने के लिए गुरु पद्धति, मैंने तो शिक्षा पाई है, मुझे उस विश्वास इसी में है।
2: अच्छा, आप नए छात्रों के लिए क्या, कैसे रियाज करना चाहिए और रागों की बढ़त कैसे करनी चाहिए?

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णामूर्ति और साथियों की आवाजों में है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है कर्मा।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत, गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

इल्जाम इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं अनजान, संगीत है बप्पी लहरी का।

जवानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन।

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है राहुल देवबर्मन का, फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर जाई इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है निदा फाजली, धुन है राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जयमाला।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत आज पॉप एक्सप्रेस में सुनिए कुछ पॉप गीत। आइए सुनते हैं के और महालक्ष्मी की आवाजों में विशाल ददलानी का लिखा गीत। संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

0: पर तो हेवन की चाबी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस में कुछ पॉप गीत।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं नाटिका उनके महबूब। लेखिका हैं बिमला रैना, निर्देशक लोचन बख्शी।
1: मंजू, ओ मंजू, अरे मंजू कहाँ हो भाई, जल्दी आओ।
2: क्या है शील, बस जब आती है तो आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आज तेरी आंखों में बिजलियाँ कौन रही है?
1: अरे बिजली बिजली कहाँ कौन थी, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि बहुत मजा आया।
2: तू इतना ही जान के रुक जा,
1: नहीं तो
2: नहीं तो
1: नहीं तो मजे में दर्द भर जाएगा। अब तेरी शादी हो जाएगी।
3: शादी वादी बच्चे बच्चे मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि लाइफ इज वंडरफुल फॉर मी।
1: बात सुनो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है लेकिन मैं तो अभी इंडिपेंडेंट हूँ। तुम दोनों को बारी बारी एक दूसरे का हुक्म मानना पड़ता है, पर मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। हाँ मेरा हुक्म मेरा राजा जरूर मानता है।
2: राजा? कौन राजा?
1: है एक राजा। हाय काश तुम भी चलती मेरे साथ टेनिस मैच में, इतना मजा आया कि।
2: मैं तो चाहती हूँ तू अब जल्दी से जल्दी अपना मैच बना ले। कितने रिश्ते आए पर तू अभी अकेली ही घूमती है। मैं पूछती हूँ आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए?
1: लड़का कैसा लड़का, जैसा मेरा राजा है।
2: अरे रे रे, ये किस राजा महाराजा के सपने देख रही है तू?
1: अपने राजा के। ओ मंजू हाउ ही लव्स मी।
2: हु? कौन? हु लव्स यू? कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करता है, किसका बोटा है, किसका पोता है?
1: ओफो, तुम्हारे सवालों की तो बढ़ बढ़ती ही जा रही है, मेरे दिमाग में फ्लड आ गया। तो पहले किस बात का जवाब दूं? मुझे बताओ नहीं तो डूब जाऊंगी।
2: ओहो उसके खानदान का भी कुछ पता है?
1: अरे मंजू जी जी उसका खानदान पानदान पीकदान सबका पता है। मेरा राजा ऐसा वैसा नहीं है, भगवान कसम वो तो अकेला कमरे में दरवाजे पर टकटकी लगाए मेरे इंतजार में बैठा होगा।
2: टकटकी लगाए? उसे अपने साथ नहीं ले गई थी? किसका मैच देखने गई थी?
1: दीपक का। बहुत अच्छा खेला, वो यूनिवर्सिटी का चैंपियन बन गया है।
2: दीपक? कौन दीपक?
1: हाँ वो कौन सा दीपक या किसका दीपक है ये मैं क्या जानू, वहाँ सब बकअप दीपक, वेल डन दीपक, लवली शॉट दीपक कह रहे थे तो मैं जान गई उसका नाम दीपक है बस।
2: सुन कहीं हमारा दीपक तो नहीं है?
1: ये तो मैं नहीं जानती कि वो किसका दीपक है, पर आपका घर रोशन करते कभी नहीं देखा उसे?
2: नहीं देखा तो क्या हुआ? सुन वो कुछ गोरा गोरा सा, कुछ लंबा सा, हसोड़ सा था।
1: अब मैंने गोरा गोरा लंबा उम्बा हसोड़ सोड़ की बात तो ठीक से देखी नहीं, पर हाँ टेनिस बहुत अच्छा खेलता है।
2: तो क्या आंखें बंद करके टेनिस मैच देख रही
1: थी? नहीं आंखें तो खुली थी पर उसके खेल पर लगी थी। अभी याद करती हूँ, हाँ कुछ गोरा गोरा लंबा सा ही है, पर आपके घर तो शायद मैंने कभी नहीं देखा उसे।
2: तुझे मेरे पास आए अभी कौन ज्यादा दिन हुए हैं, और फिर तुझे अपने राजा से फुर्सत कहाँ है, आता है तीज त्योहार पर।
1: अच्छा मुझे क्या मालूम, जहाँ भी जाऊँ दिखते तो रहते हैं पर ठीक से कभी बात नहीं हुई, नहीं तो ये तो पता चल ही जाता कि वो आपके दीपक हैं। अच्छा मंजू राजा बेचारा इंतजार करता होगा, बाय बाय।
2: कर दिया।
4: भाभी भाभी भाभी वो मतलब भाभी
2: हाँ।
4: वो आपकी बहन है ना?
2: हाँ।
4: उससे मिलना चाहता हूँ।
2: क्यों, टेनिस चैंपियन हो गया है इसलिए?
4: अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी?
2: अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी।
4: कौन? वो मेरे खेल की तारीफ?
2: हाँ हाँ कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला।
4: वो मेरा नाम जानती है?
2: क्या तुम उसका नाम नहीं जानते?
4: नहीं मतलब हाँ मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ, दरअसल मंजू भाभी बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाह कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है, और फिर भाभी अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है, और भाभी फिर पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो
2: के बच्चे तो तुझे भाभी की याद आई, चल कुछ कहेगा भी?
4: जरूर कहूंगा।
2: तो कहना।
4: कहूं क्या तू भाभी? भाभी असल में बात यह है भाभी, भाभी मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। लो कह दिया। हाँ, कह दिया भाभी।
2: कह दिया। अब जब अपने राजा के गुण गाया करती है।
4: राजा के? कहाँ के राजा के?
2: अब ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा के चले जाओ।
1: डरपोक कहेंगे। कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज शील राजा ने कहा से एक राजा नाम के लड़के को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज कहेंगी, छोड़ उसका ख्याल।
4: भाभी ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी वो तो देवी है, देवी। कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा। इतनी कोमल गंभीरता, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने।
1: अब मैं क्या करूं? जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया। आप शील से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
4: पर भाभी ये राजा है कौन? कब से उसके साथ रहता है?
1: मैं क्या जानू कौन राजा है निगोड़ा। ये बात तो अभी मालूम हुई जब वो तुम्हारा टेनिस मैच देख के लौटी।
4: ओ भाभी, शील जी मुझसे कभी नहीं बोली तो क्या? बरसों साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी है। एक बार तुम मुझे मिलवा दो, प्लीज भाभी एक बार मिलवा दो मुझे, मैं अकेले में कुछ बातें कर लूं। भाभी आखिर मैं इंसान हूँ, कोई उल्लू तो नहीं हूँ। उन्हें मालूम तो हो जाए कि मैं भी उन्हें चाहता हूँ, फिर देखूं उनका राजा मेरे सामने कैसा लगता है।
1: अच्छा सुन दीपक, मुझे ख्याल आया।
4: क्या? हा?
1: मैं शील को बुलाती हूँ और सुन, उसे शेर शायरी का बहुत शौक है। जब वो आए तो तू उसे बेखबर सा बनकर कोई गजल वजल सुना लेना।
4: तुम फिक्र ना करो भाभी, एक से एक बढ़िया शेर मुझे याद है। देखो तो सही उनका राजा मेरे आगे कैसे ठहरता है। भाभी ये राजा का नाम सुनकर तो मुझ में बजरंग बली का बल आ गया है। पर भाभी शील जी से मिलने से पहले मुझे एक झलक उनके महबूब की दिखा तो दो, आखिर मुझे मालूम तो हो जाए मुझे मुकाबला किससे करना है।
1: उस दरवाजे के पीछे शील का कमरा है। उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ। देख मैं नौकर को भेजकर उसे अभी बुलवाती हूँ।
4: अच्छा
1: तू शेर शायरी का ध्यान रखना। अरे नंदू, ओ नंदू जरा शील से कह मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, जल्दी आए। अच्छा सुन इधर आ। उधर पीठ कर ऐसे खड़े होकर कोई फड़कती हुई गजल गुनगुनाना शुरू कर दे।
4: अच्छा।
1: जैसे तुझे मालूम ही नहीं कि वो आ रही है। मैं तो छुपे जाती
4: हूँ। तू छुपा भाभी।

0: है।
1: ओह
0: क्या हुआ?
1: शॉक लग गया बिजली को।
0: माफ करिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप आ रही हैं।
1: वरना आप मेन स्विच शायद ऑफ कर देते।
0: जी
1: नहीं तो कयामत आ जाती।
0: जी जी मैं आपका मतलब समझा नहीं शील जी।
1: शील सुन तो, ये वही हमारा दीपक है कि वो कोई दूसरा दीपक था? मैं क्या जानू, पर हाँ शायद यही थे। ये मेरी बहन शील है दीपक
0: जी। जानता हूँ जी, जी, जी, मतलब ये जानता तो नहीं था पर भाभी अब जान गया।
1: मैं भी कॉफी को कहा।
0: हाँ भाभी तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस मैच बहुत पसंद आया।
1: जी
0: हजार हजार धन्यवाद शील जी।
1: हजार हजार किस बात के?
0: अरे हजार हजार बातों के।
1: पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की।
0: ओ शील जी, पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत ख्वाब देखे हैं जिनमें आप शरीक थी।
1: ओ
0: न जाने क्या क्या कहा मैंने, न जाने आपने मुझसे क्या क्या कहा, हजारों बातें।
1: हो सकता है, पर ख्वाबों का क्या?
0: एक शेर कहा है, सुना दूं?
1: जरूर।
0: हमें गिला न होता हकीकत से, ख्वाबों का अगर जरिया होता, वो सामने होते साहिल पर, जज्बातों का मैं दरिया होता। कभी मेरी तमन्ना भी सजकर

0: सुना है कोई राजा साहब है जिन पर आपकी बड़ी इनायत है, क्या ये सच है शील जी?
1: जी जी हाँ, सच तो है।
0: सच है? तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ?
1: उनसे मिलकर क्या करेंगे, आप तो शायद मुझसे मिलना चाहते
0: हैं। शील जी प्लीज मजाक मत करिए, असल में बात ये है कि मैं आपसे।
1: जी जी जी क्या?
0: देखिए शील जी, अगर आप बीच में यूं ही टोकते रहीं तो मैं आपसे जो आज कहने का फैसला करके आया हूँ कह ना पाऊंगा। मुझे यूं ही ये बात कहने की हिम्मत बटोरने में इतने दिन लग गए, साहे के समान आपका पीछा करता रहा पर आपसे भूल न सका। अब आप प्लीज उधर को मुंह कर लीजिए ना, जिससे मैं एक बार आपसे कहकर अपना जी तो हल्का कर लूं।
1: जी बहुत भारी है क्या?
0: शील जी प्लीज, शील जी प्लीज आप उधर देखिए ना। खैर खैर कोई बात नहीं, आप नहीं देखती तो मैं ही इधर देख लेता हूँ और कहता हूँ शील जी मैं मतलब आई मतलब मैं मतलब आई लव यू।
1: लेकिन क्यों
0: क्यों क्यों क्या राजा आपको क्यों लव करता है जी?
1: पता नहीं
0: तो आप उसे क्यों लव करती हैं जी?
1: क्योंकि वो मुझे बहुत लव करता है।
0: तो मैं भी तो आपको बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी मच लव करता हूँ।
1: वो बहुत बहादुर है।
0: आपको मेरी बहादुरी पे शक है क्या?
1: पर वो बहुत वफादार बहुत लॉयल है।
0: और मैं वफादार नहीं, मेरी लॉयल्टी पे शक है आपको, तो इम्तहान ले लीजिए, अपने राजा से एक बार मिलवा तो दीजिए, जरा मैं भी तो देखूं मैं उससे किस बात में कम हूँ।
1: वो मेरा हर हुक्म मानता है।
0: आप मुझे भी कोई हुक्म देकर देखिए।
1: देखो
0: देखिए।
1: अच्छा देखूंगी।
0: शील जी आपके महबूब आपके कमरे में है क्या, मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ?
1: शौक से जाइए, मगर जरा संभल के जाइएगा, बड़े बड़े पहलवान भी उनसे डरते हैं।
0: आप फिक्र न करिए शील जी, वो कट लगाऊंगा कि मेरी गेंद उठाए ना उठेगी। और फिर शील जी अगर मैं मर भी जाऊँ तो क्या, कम से कम आपको मेरी बहादुरी का यकीन तो आ जाएगा।
1: तो जाइए, कमरा खुला है।
0: कमरा खुला है लेकिन लेकिन आप साथ नहीं चलेंगी क्या?
1: हाय राम, आपको मेरे साथ उसने देख लिया तो आपकी जान पर बन आएगी। वो बहुत जेलस है। अच्छा। वैसे मेरी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगी।
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, तो मैं ही जाता हूँ। आपके कमरे में जाने की इजाज़त तो है ना?
1: मेरे कमरे में जाने की इजाज़त तो राजा ही दे सकता है।
0: ये बात है तो हो जाए आज फैसला। मेरी महबूबा के महबूब ने ललकारा है, मौत बेहतर है जिसे जिंदगी ने मारा है। अरे शील जी मैं जाता हूँ।
1: जाइए।
0: ओह माय गॉड, ये राजा इनका महबूब। सच में शील जी ये कुत्ता तो बहुत हैंडसम है, बहुत बहुत ही हैंडसम, मुझसे भी ज्यादा, बहुत बहादुर है, बहुत वफादार है। शील जी आपने एक काम बड़ा अच्छा किया जो इसे चेन में बांध रखा था, नहीं तो ये तो सचमुच मेरे फाड़ गया।
1: राजा राजा बी क्वाइट, चुप हो जा मेरे राजा। हाँ तो आपने देख लिया मेरे राजा को?
0: देख तो आया आपके राजा को, पर शील जी मतलब आप मतलब समझ गई ना?
1: समझ तो गई, पर आप मेरे राजा को मुझसे अलग तो नहीं करेंगे?
0: कभी नहीं कभी नहीं, तुम मेरी महबूबा हो, वो तुम्हारा महबूब सही। खुशी महबूबा की अपनी खुशी बना दूंगा, उनके महबूब के यानी कुत्ते के कदमों पे सर झुका दूंगा।
2: उनके महबूब, अभी आपने विमला रैना की लिखी ये नाटिका सुनी, निर्देशक थे लोचन बख्शी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए सलमान खान श्रेया घोषाल की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है कुमार ने। संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का और फिल्म का नाम है किक।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम

चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान, तरन्नुम मलिक और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार हैं कौसर मुनीर, संगीत है सोहिल सेन का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है पीके।

कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत है AM तुरास का, संगीत है संजय लीला भंसाली का, फिल्म का नाम है पद्मावत। नाम एक बार फिर सुनिए, इस गीत को लिखा है AM तुराज ने।

साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर अंजान ने और फिल्म का नाम है धूम 3।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
2: One key pillar which has brought about a transformation.
3: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की।

0: 49,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल किया सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
4: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवोप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के

0: मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है राजकुमार।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत। गीत है नीरज का, संगीत सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है गैम्बलर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में वो नगमा जिसे लिखा है शिवांद रिजवी ने। तर्ज है ओपी नैयर की, फिल्म का नाम है हम साया।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

अगला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली खां, संगीत है मदन मोहन का, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है रोशन का और फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में, पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागी

में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

0: इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।
1: जरा ठहरो जी।

0: हमको भी तुमसे है प्यार, रुमाल हमें दे के जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहाँ से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ताशी और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

0: प्यार वफा,
1: कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले हिंदी ओजी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि ये बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये गाना मन्ना डी जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या होगा हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से ये गाना सुनूं। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पे बुला लिया तो एक दफे सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में।
2: समझौता गमों से कर लो जिंदगी में, गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? तो बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। बोला गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफी उलझने कम हो जाती है।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं है लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा संग।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलते हुए रात से गुफ्तगू, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

9 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्रोताओं के फरमाइशी कार्यक्रम गीतांजलि।

कार्यक्रम गीतांजलि का पहला फरमाइशी फिल्मी गीत सुनने वाले हमारे साथी हैं सरोचौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, मुश्तवा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और इनके सभी साथी, मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, अनिल पोहरकार, महेंद्र, सुनील, साहिल और सुजाता, पांगरा शिंदे तहसील वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिकू इंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभि, मंजुता गौतम इंगोले, नामदेवराव शिंदे पाटिल, मास्टर विलास शिंदे पाटिल, सुनील अशोकनगर वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से दीपाली राजू, पार्वती सखाराम, रोहित सोनू मोनू, जिजा माता नगर हिंगोली महाराष्ट्र से लक्ष्मी उत्तम, तामसा रोड तहसील हदगांव से श्यामराव पड़गणे बेबी और इनके सभी साथी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर ब्रग, जीतेक ब्रग और मीका ब्रग, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार, शीला गायत्री, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और इनके सभी साथी, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश, पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी, अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, बबीता और इनके सभी साथी, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर, मोहम्मद वकील, राही जतुगा, किशनपुर से आलम दिलकश, जपान अनाज, रिजवान, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदनी नाज, आप सबकी फरमाइश पर पेश है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत।

गीतांजलि कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने वाले हमारे श्रोता हैं अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, बबीता और इनके सभी साथी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्रेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके सभी साथी। यवतमाल से जयराम, दिशांत कुमार और अर्पिता। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन और जीवियम। ग्राम कंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश। पलक, मिष्टी, जूही, रिया, संध्या और रीना। ग्राम नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। आप सबकी फरमाइश पर पेश है लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

गीतांजलि, ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत सुनने वाले हमारे साथी हैं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक परी, स्वाति प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी, लड्डू चौधरी और इनके सभी साथी। जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहादुर हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। पदमा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। गंज रुणवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान और अन्नू खान। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और इनके सभी साथी। समडेल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, अंकुर राघव गुप्ता। गौतमनगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और इनके सभी साथी। आप सबकी फरमाइश पर पेश है शमशाद बेगम और साथियों की आवाजों में ये गीत।

गीतांजलि कार्यक्रम इस वक्त आप सभी सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत सुनने वाले हमारे श्रोता हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि, लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदनगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी देविका चौधरी, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश और इनके सभी साथी, डावर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन और मरियम और बुशरा, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही और मेराज जहां, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमर उल्लाह, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, मुश्तबा खान और शाहिद, पंजूसराय संबल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी, असद अंसारी और इनके सभी साथी, अरूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नावेद खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, आप सबकी फरमाइश पर पेश है ये गीत।

और अब कार्यक्रम गीतांजलि का आखिरी गीत सुनने वाले हमारे साथी हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। हजरत नगर गढ़ी तहसील व जिला संभल से महेंद्र सिंह पासी, डॉक्टर वीर सिंह पासी और सुनील कुमार। ग्राम व पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी और इनके सभी साथी। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत और इनके सभी साथी। जिला इंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, श्रीमती नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और उत्तम जमदाडे। आप सबकी फरमाइश पर पेश है ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen, BG Ramji Act 2025 will come into force across rural India with effect from tomorrow, on the eve of the nationwide rollout of BG Ramji Act 2025. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added that the enhanced guarantee of the 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth shouldn't work only for their own progress but also strive to uplift the weaker section and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president urged a student to become agent of the social transformation, saying education should go beyond securing employment and to strengthen society, culture, tradition and economic progress. The Indian Railways will launch three projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. The Railways has approved the doubling of over 44 kilometer Mansi Saharsa section of East Central Railway at a cost of 499 crore rupees. It will augment line capacity, improve operational efficiency and cater to the growing demand for passenger and freight movement in this important route. The Railways has also sanctioned a project for the replacement of relay-based interlocking with electronic interlocking at 27 station or cabin on the high-density network and highly utilized network route of Asansol Division of Eastern Railway. The special intensive revision of electoral rules has begun in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra today. As part of the exercise in Delhi, over 13,000 booth level officers will visit every household till the 29th of next month to distribute a pre-printed enumeration form in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. The U.S. Supreme Court has struck down President Donald Trump's executive order aimed at ending birthright citizenship, reaffirming the long-standing interpretation that nearly everyone born in the United States is automatically granted U.S. citizenship. In the FIFA World Cup 2026, the match began Ivory Coast and Norway in underway in Texas, United States. And that's the end of the news bulletin.
3: Me मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11:10 हुए हैं। मीडियम वेव और FM पर हमारी आज की दूसरी सभा का प्रसारण यहीं संपन्न होता है। कल सवेरे 5:55 पर हमारी पहली सभा मीडियम वेव और FM पर एक साथ आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

हमारी पहली सभा मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।